लौटने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन।

0: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

0: Yeah.
1: Wheat, barley, gram, lentils, rapeseed, masoor, mustard or safflower, in sab ke liye jo production cost hai, usse kam se kam 50% jyada rakhi gayi hai MSP.
2: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
1: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिन्दी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
1: आयुष्मान भारत पीएम जय
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
4: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
5: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
6: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
5: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्य ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in centenary celebrations of UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Cabinet hikes minimum support prices for Rabi crops for 2027-28 marketing season. Government to launch auction of offshore mineral blocks today to unlock India's offshore mineral potential. Supreme Court rules out total ban on firecrackers ahead of Diwali, favors balanced approach. Saudi authorities arrest Omani co-pilot for stabbing captain and attempting to crash fly Dubai flight travelling from Dubai to Tel Aviv. Prime Minister Modi describes Indian pilot Smith Machar a true hero for saving 174 lives. And in men's cricket, India beat the West Indies by 8 wickets in the second ODI in Guwahati to take an unassailable 2-0 lead.
9: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
10: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
11: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
12: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
13: कहा मेरी कसम?
12: मिस कर दिया तो रीलोड।
14: चाय चाय चाय
15: बिंदास मॉर्निंग।
12: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, एक ब्रांड न्यू तारीख है, 1 अक्टूबर की तारीख हो गई है आज। हंजी, कैसे हालचाल है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कारम आप सभी का, वेलकम बैक है। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद। आप जहाँ भी जा रहे हैं, ऑल द वे बेस्ट। आप बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं या बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं, यार मैंने पहले ही आपको बोल दिया ऑल द बेस्ट। बस लगे रहो पाजी, मैं भी आ गया हूँ आपकी सुबह को और सुपर डुपर और अमेजिंग बनाने से स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अब से लेकर के 10 बजे तक मेरी और आपकी कंपनी चलने वाली है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। ढेर सारी बातें होंगी, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। क्या कुछ खास है आज के पूरे दिन का कुछ आपके साथ शेयर करूंगा जरा सी देर में। पहले ही बताओ यार, कैसे हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में? जिन लोगों ने रेडियो जस्ट अभी ट्यून इन किया है उन सभी का भी वार्म वेलकम है जी। आप जुड़ चुके हैं RJ आनंद के साथ, ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, दिस इज FM मुरादाबाद 89.6।

एक बार फिर से अपने एक अच्छे से विचार की ओर चलेंगे और मैं बस यही कहना चाहता हूँ, देखिए एक तारीख है, एक नई मॉर्निंग स्टार्ट हुई, एक ब्रांड न्यू तारीख है, एक नया मंथ शुरू हो गया है, एक अच्छी एक्सपेक्टेशन के साथ क्रॉस योर फिंगर, कुछ अच्छा सोचिए लाइफ में, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, जो चल रहा है लाइफ में उसको चलने दीजिए। लाइफ में ना सबके डाउनफॉल आते हैं, कोई बताता है कोई नहीं बताता, और हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है ना। तो अक्सर हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई चीज़ें चल रही होती हैं। प्लीज़ आप अपनी प्रॉब्लम को देख कर सोच कर ज़्यादा परेशान मत होइए। कभी कभी जब आपके मन का नहीं होता तो यकीन मानिए वो ईश्वर के मन का होता है, वो उस खुदा के मन का होता है, और जब वो उसके मन का होता है ना तो वो बहुत अच्छा होता है, भले वो चीज उस टाइम आपको समझ ना आए। श्रोताओं 8:20 हो रहे हैं और आज का विचार यही कहता है कि कभी कभी ना जिंदगी में हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें करना चाहते हैं और कभी कभी सच में हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत होती ही नहीं है। अगर अपनी लाइफ में हम छोटी छोटी चीजों को चेंज कर दें, अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल लें, तो यकीन मानिए हम फर्श से अर्श पर पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें ना करके जब हम छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, तो उससे अंदर जो हमें खुशी मिलती है, जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो शायद हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आज की सुबह आप भी कुछ ऐसा ही करिए, जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने का मत प्लान कीजिए, अभी छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उन पे काम करना शुरू कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कीजिए। जब वो छोटी छोटी खुशी आपको एक बड़े मुकाम तक ले जाएगी ना, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि सच में आपने कुछ तो अच्छा और बेहतर कर दिया है। फिलहाल उठाइए अपने कर्मों की किताब और लिख डालिए कुछ बेहतर से बेहतरीन। आप सुन रहे हैं आनंद को, यह एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग, आज ब्यूटीफुल दिन है, गुरुवार का थर्सडे की सुबह है, घड़ी मिला लो 8:21 हो रहे हैं, 1 अक्टूबर 2026। वार्म वेलकम है आप सभी का इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां आनंद कर रहे हैं आपसे ढेर सारी दिल की बात। लौट कर आते हैं नजर आसी देर में।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: क्या बात है। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, ला ला ला।
1: सच में यार कुछ गाने ना मतलब दिल को छू के चले जाते हैं, और सुबह सुबह इतने पॉजिटिव गाने आपको यही मिलते हैं जी। एक बार फिर से वेलकम बैक है। 8:33 का समय हो गया है हमारे स्टेशन क्लॉक में, और देखिए सूर्य देवता नहा धो के प्रकट हो गए हैं। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप भी बिल्कुल भैया इसी एनर्जी के साथ निकलिए आज की सुबह घर से बाहर, और ढेर सारा मोटिवेशन देने आपके रेडियो पर मैं आ गया हूँ आपको मोटिवेट करने। बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम सबकी चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने लाइफ को जीना छोड़ देंगे यार। जिंदगी में बहुत कुछ करना है यार। अभी देखिए जो आपके हाथ में है ना, प्लीज़ उस पर ज़रूर काम कीजिए, और जो आपके हाथ से निकलती जा रही है चीज़ें, मैं चाहूँगा कि उन्हें एक बार कोशिश जरूर करें, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगता है कि उसको गिव अप कर देना चाहिए, है ना। थोड़ा सा ऊपर वाले का नाम लेके, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ के सब चीज़ों को आगे बढ़ जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़िए, एंड लाइफ है तो यार देखिए अच्छी बुरी चीज़ें तो ज़िंदगी में आती रहती हैं, क्योंकि भाई साहब रियल लाइफ मूवी चल रही है, और यहाँ पर जो भी कुछ होता है ना वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। कहते हैं ना उस ऊपर वाले की बिना मर्ज़ी के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता यार। चलिए फिलहाल मौसम की बात करते हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस है अभी करंट टेम्परेचर, 1 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं रहेंगी। आज एयर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है, गर्मी आपको थोड़ी ज़्यादा लगेगी। ये जो वेदर है हमारा आगे चल के 32 डिग्री पहुंच सकता है, मतलब हाईएस्ट की बात करूँ, और अभी मैं बात करूँ लोएस्ट की तो 23 डिग्री, और अभी जो मिनिमम टेम्परेचर है करंट टेम्परेचर 25 डिग्री है, यानी कि सूर्य देवता बहुत तेजी के साथ जो निकल पड़े हैं अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं होले होले। एंड मैं कहता हूँ आप भी आगे बढ़िए और हमें मैसेज करिए यार, अगर आपके पास कुछ अच्छी थॉट है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर विद मी 9837896896 पे। ढेर सारे लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, कुछ लोग ट्रैफिक में है अभी भी, अगर आप कहीं जाम शाम में है तो मुझे बता सकते हैं मैसेज करके 9837896896, बिकॉज सुबह का टाइम बड़ा हेक्टिक होता है यार। कोई बच्चों को छोड़ने जा रहा था, कोई बच्चों को छोड़ के आ रहा था, किसी की मॉर्निंग शिफ्ट होती है मेरी तरह, जो बहुत जल्दी भागते दौड़ते अपने ऑफिस पहुंचना चाहते हैं, और आप कितनी भी जल्दी कर लो कभी कभी लेट हो ही जाता है यार। इवन पता है बहुत बारी तो ऐसा भी होता है कि आप बहुत कुछ रखना चाहते हो अपने बैग में, अपने स्कूल बैग में बच्चों के, या अपने खुद के ऑफिस वाले बैग में, बट हर चीज़ आप नहीं रख पाते हो। आई नो, समझ सकता हूँ यार, हर किसी की ज़िंदगी में जो है प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन कोई बात नहीं यार, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है यार। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक वंडरफुल सॉन्ग आपके रेडियो पर निकाल रहा हूँ जो आपकी सुबह को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देगा आज की मॉर्निंग, और कोशिश होती है कि हर सुबह यू नो कुछ अच्छे गाने लेकर आऊँ आपकी सुबह को थोड़ा फैबुलस बनाने के लिए, बस यही कोशिश होती है, और अपनी प्लेलिस्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का मेरा बड़ा मन होता है कि यार हर दिन कुछ नए गाने हो जो रिपीटेड ना हो, जिनको सुन के आपको मजा आ जाए, आपकी मॉर्निंग थोड़ी झकास हो जाए। और ऐसे ही एक और गाना है जो बहुत ही खूबसूरत है, आई लव दिस ट्रैक, उदित साहब की आवाज है, ऐश्वर्या राय बच्चन, बॉबी देओल पिक्चराइजेशन, गाना बहुत ही अल्टीमेट है, ऑफकोर्स आपने सुना होगा। गाने का म्यूजिक इतना खूबसूरत है, सुबह सुबह ताजगी से भर देगा आपको। हेलो हेलो, अक्टूबर में आप सभी का वेलकम बैक है, 1 अक्टूबर 2026 एक बार फिर से स्वागत है। एक तारीख हो गई जी, आज पहली तारीख है, आज मीठा है खाना, आज पहली तारीख है, आज मुस्कुराना है क्योंकि आज पहली तारीख है, एक बहाना चाहिए होता है ना। उदित साहब के दिल की बात सुनिए जरा, कुछ कह रहे हैं उदित जी, बहुत ही दिल, बहुत ही खूबसूरत गहरी बात दिल से कह रहे हैं, सुनते हैं जरा।

आप गाड़ी ड्राइव कीजिए, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। कुछ कहना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पे व्हाट्सएप के जरिए। इंतजार कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का। लौट कर आते हैं, बात करेंगे आज के दिन के बारे में, क्यों खास है आज की 1 अक्टूबर की तारीख, क्या कुछ स्पेशल सेलिब्रेट किया जाता है, बताता हूँ ना अभी आपको। इसी स्टेशन पे स्टे ट्यून रहिए मेरे साथ, आता हूँ वापस। गुड मॉर्निंग।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
5: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
6: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
7: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
8: एक फरवरी 2026 को श्री साई हॉस्पिटल में होने जा रहा है एक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट समीक्षा कैंप। पिछले 15 वर्षों में डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा किए गए कूल्हे एवं घुटना प्रत्यारोपण के मरीजों से रूबरू अनुभव साझा करने का अवसर। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 9412504190।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हाय गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सब अपने अपने मॉर्निंग ड्राइव पे निकल चुके हैं। कुछ लोग अपने काम की ओर निकल चुके हैं, कुछ लोग अपने खेतों की ओर निकल रहे हैं, कुछ लोग अपने ऑफिसेस की ओर निकल रहे हैं। आप जहां भी जा रहे हैं, ऑल द वे बेस्ट, आनंद के साथ हैं आप। और ये जो मेरा और आपका साथ है वो डेफिनेटली बरकरार रहेगा 10 बजे तक। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास पहुंच रहे हैं, अभी लौट कर आता हूं। आपके नाम के साथ आपके संदेश को शामिल करेंगे विद नेम गेम में।

कॉफी पीने के शौकीन है तो इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को आज की सुबह। इसके अलावा अगर आपके घर में ब्लैक डॉग है, आप ब्लैक डॉग लवर हैं, तो आज ब्लैक डॉग डे भी मनाया जाता है। अभी बहुत सारी और भी चीजें जो आपको बतानी है। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ ढेर सारे आप लोगों ने संदेश किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच इतने अमेजिंग मैसेजेस करने के लिए। हमारे पास श्रुति हेना का मैसेज पहुंचा है, दिल्ली रोड से ये ऑन द वे हैं, अपने ऑफिस के लिए निकल रही हैं। लिखती हैं, आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, आपको सुन के सच में मॉर्निंग बहुत ही लाउडनेस से भरी हो जाती है। थैंक यू सो मच एंड आई रियली होप कि आपको जो हमारी प्ले लिस्ट है वो भी डेफिनेटली अच्छी लगती होगी। एंड कल मैं एक बड़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी से मिला, उनके बारे में डेफिनेटली बात करूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो वेरी मच इतने वंडरफुल मैसेज करने के लिए। एंड बड़ा मजा आता है जब आप लोग हमारे साथ ऐसे कनेक्ट होते हो। डॉक्टर वर्षिका आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारे साथ जुड़ी है। हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर डूइंग, कैसे हाल चाल है? आई होप आप अच्छे होंगे। एंड मुझे पता है अभी आप मॉर्निंग ड्राइव कर रहे हैं, अपने यू नो ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। एंड चलिए बहुत अच्छी बात है, ऑल द वे बेस्ट, आप ऑफिस पहुंचिए। बाकी आपके सफर का साथी है आपका आरजे आनंद। एंड अच्छे अच्छे गाने ऑफकोर्स आपके लिए प्ले करने वाला हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आगे भी वक्त हुआ है 8:52, बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में, स्पेशल है आज की तारीख। उसके बाद आपने जो मैसेज किया है ना वो अभी मैं शामिल करूंगा, डोंट वरी। अभी बस फिलहाल आज की तारीख को जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्या कुछ स्पेशल है आज। वंडरफुल ट्रैक

चलिए फिलहाल बात करते हैं आज के दिन के बारे में। तो आज के दिन सन 1854 को भारत में पहली बार डाक टिकट की शुरुआत हुई थी श्रोताओं, जिसकी कीमत आधा आना थी। इसके अलावा आपको बताते चलें, आज ही के दिन जो है 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर देश का पहला अलग राज्य बनाया गया था श्रोताओं। एंड 1967 में भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC की स्थापना हुई थी श्रोताओं आज ही के दिन। एंड एक और बहुत ही खास चीज जो आज के दिन को थोड़ा सा स्पेशल बना देती है, मिलते रहे। आपको बता दें चीन में कम्युनिस्ट ऑफ पार्टी शासन की शुरुआत हुई थी 1949 में आज ही के दिन। मिलने को मिलते रहे। एंड आज के दिन 1978 में लड़कियों की शादी की उम्र को 14 वर्ष से बढ़ाकर के 18 और लड़कों को जो है 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया था श्रोताओं। देखिए है ना कमाल की चीजें, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेडियो से मिलती है। आपको बता दें सन 2000 में आज के दिन सिडनी में 27वें ओलंपिक खेलों का जो है वो समापन हुआ था श्रोताओं आज के दिन। तो ये आज के दिन से जुड़ी कुछ बेहतरीन जानकारियां जो आपके साथ मैंने इमीडिएटली शेयर करी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बाकी आज के दिन कुछ खास लोगों का जन्मदिन भी आप सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें से पहला नाम आता है मनीष नरवाल जी का, जो भारत के पैरा निशानेबाज हैं। सन 2001 में जन्म हुआ था आज के दिन इनका। एंड वेट लिफ्टर हैं गुरदीप सिंह, 1995 में जन्म हुआ था आज के दिन इनका भी श्रोताओं। और आपको बताते चलें एक और बहुत ही खूबसूरत नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ था और इनके बारे में डेफिनेटली बात करना तो बनता है।

0: आपको बताते चलें, भारत की जो है एक बहुत ही ऐसी ब्यूटीफुल आवाज़ जिसमें फिल्मों से लेकर अपने जो गीत का है, अपना जो कल्चर है, अपना जो एक रिचुअल है, उसको भी मेंटेन किए रखा। 1952 में जन्म हुआ था भारतीय राज्य बिहार की लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा जी का। आज ही के दिन जन्म हुआ था। भले ही आज वो हमारे और आपके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हमारे जहन में गूंजती है।
1: आज ऐसा लगा कोई,
0: आज उनकी जयंती है, हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि।
1: कोई मिल गया।
0: बाकी आज के दिन और भी बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं, इस पर हम डेफिनेटली बात करेंगे। आज बहुत सारे अमेजिंग डेज मनाए जाते हैं। आज इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है, आज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है। मैं फुली वेजिटेरियन, आज इस पर हम बात करने वाले हैं आपके साथ। ढेर सारी वक्त हुआ है, 8:56। अभी बताता हूँ, कल मेरी एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी से बात हुई और क्या मैंने उनसे सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग इतने प्यारे आते हैं ना, जिनसे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बट वो हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, बहुत अच्छा पार्ट पढ़ा करके जाते हैं। मुझे भी कोई मिल गया है भाई, मतलब आप जैसे अच्छे दोस्त मिले हैं तो ऑफ कोर्स और क्या ही चाहिए। फिलहाल आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ। सुबह का ये मॉर्निंग डोज आपको दे रहा हूँ आप ही के स्टेशन ऑफ द नेशन पर।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए। बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
7: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
8: चलिए भाई साहब, तो हम वापस आ गए यार, है ना। और जब हम वापस आते हैं तो ढेर सारी आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैडम को बुलाते हैं।
9: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
0: अरे आनंद इज बैक।
8: चलो भैया, बिंदास मॉर्निंग में आप सभी का एक बार से वेलकम बैक है वंस अगेन। एंड आज 1 अक्टूबर है, बहुत सारे चेंजेस आज के दिन हो रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑफकोर्स जब नई 1 तारीख आती है तो बहुत सारे बड़े बदलाव होते हैं और काफी सारे चेंजेस होते हैं। तो आज क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं फटाफट से मैं इमिडिएटली आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन आज मैंने बताया आपको इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया जाता है। कितने सारे कॉफी लवर हैं, व्हाट्सएप करना मुझे यार, आप चाय के साथ अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करते हो या कॉफी के साथ। कल मैं एक बड़ी डायनेमिक पर्सनालिटी से मिला, यस आई एम टॉकिंग अबाउट अलका जी, एंड शी इज वंडरफुल रेडियो लिसनर, और बहुत ही अच्छा लगा उनसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड मुझे लगता है कि जो जितने बड़े मतलब कहते हैं ना कि अहदे पर होता है जो जितना बड़ा काम कर रहा होता है अपनी लाइफ में, वो उतना हम्बल और उतना ही मतलब उसके अंदर वो कहते हैं कि एक मैं किन शब्दों में बोलूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मतलब कि बहुत ही हम्बलनेस और बहुत ही यू नो जेन्युइन पर्सन होते हैं यार ऐसे लोग, सच में जो जिंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं ना। आप कभी उनसे मिलना, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार वो इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस करके आए हैं और इतनी मतलब उनके अंदर हम्बलनेस है, इतना जेन्युइन है उनके अंदर का एटीट्यूड, इतना पॉजिटिव है कि मतलब आपको मजा आ जाता है। ऐसी कल मेरी भी एक बड़ी अच्छी मतलब मैम से मुलाकात हुई, मैंने नाम भी आपको बताया, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। और कहते हैं ना कि जब कभी आप किसी से दिल से जुड़ते हो तो वो जो दिल वाला कनेक्शन है ना, वो आगे तक लॉन्ग टर्म तक बन जाता है। और कभी कभी ना कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे एकदम आते हैं ठा करके और आपको बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। इसलिए आज मैंने आते ही कहा था कि कभी कभी ना लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ छोटी छोटी चीजों को चेंज करने की जरूरत है। छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन, छोटी छोटी चीजें जब हम करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो हमारी लाइफ हमें कहां से कहां पहुंचा देती है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एवरीबॉडी 9:04 हो गए, ये थर्सडे की सुबह है 1 अक्टूबर 2026। भाई साहब कैसी चल रही है भाई, तैयारियां सब बढ़िया चल रहा है ना। अच्छा, आपके दिन की शुरुआत कॉफी से होती है, चाय से। आप कॉफी लवर हैं या टी लवर हैं, यू कैन टेल अस 9837896896 बताना जरूर मुझे मैसेज करके, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, चाय वाली या कॉफी वाली में, है ना। मुझे बताना आपको अगर एक दिन चाय और कॉफी में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े तो आप चाय को खाना चाहोगे या कॉफी को, जरा ये बताओ मुझे मैसेज करके 9837896। और वैसे आप टी लवर हो या कॉफी लवर हो, बताना ईमानदारी से बताना, मैं बता रहा हूं आपको सच्ची सच्ची, अगर आप सही सही बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा यार। तो व्हाट्सएप करो, देखो मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, कॉफी जब कहीं जाते हैं और कोई और मतलब ऑफर करता है कि कॉफी है तो फिर देखो डिनाई नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, लेकिन चाय वन ऑफ माय फेवरेट यार। मतलब आधी रात में मुझे कोई उठ के बोल देना आनंद आनंद भाई चाय पिएगा, मैं कितनी भी तगड़ी नींद में बता रहा हूं, मैं चाय पीने पीछे नहीं हटूंगा, भरी चाय पी के वापस सो जाऊं। अभी लौट के रहा था, आई विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। आप सुनते रहिए ऐसे ही आपका स्टेशन ऑफ द नेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, ऑल टाइम फेवरेट। क्या बोलती है, अप्पे चप्पे खप्पे सर से पहाड़ जाता है, वापस आ रहा हूं।

0: ए.आर. रहमान का म्यूजिक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, इरशाद कामिल ने लिखा इस गाने को। हाईवे फिल्म से एंजॉय कर रहे थे अभी आप। सच में यार, सुबह सुबह इतने पॉजिटिव गाने सुन के मॉर्निंग डेफिनेटली झकास हो जाती है, और कभी कभी इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है ना इन गानों को सुन के, मजा आ जाता है। मतलब मॉर्निंग एकदम फ्रेश हो जाती है।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
0: चलिए जी, बात कर लेते हैं अभी आज के दिन के बारे में, क्यों स्पेशल चीजें हो रही हैं। मतलब आई मीन टू से कि हर एक महीने की पहली तारीख को कुछ बड़े बदलाव होते हैं हमारे आसपास। अभी अक्टूबर शुरू हो गया है, फेस्टिव सीजन है ना। अभी हम लोग नवरात्रि 11 तारीख से सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें जो है चेंज हुई हैं। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं अक्टूबर में क्या चेंज हुआ है। देखिए भैया, बेसिक सेविंग डिपॉजिट खाता धारकों के लिए महीने में वो 4 बार पैसे निकाल सकेंगे, मतलब ये मुफ्त रहेगा। इसके बाद प्रति एक लेन देन पर 15 रुपए प्लस GST चार्ज लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बता दें आपको, UPI लेने देने जो है, ये जो लोग कहते हैं UPI से पेमेंट करना महंगा हो गया है, मतलब अब हम UPI नहीं करेंगे बॉस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज कटने वाला है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको बता दें 15 अक्टूबर से चुनिंदा UPI ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू होंगे। इसके अलावा 2000 रुपये तक की UPI पेमेंट व्यक्तिगत रूप से जो है भाई साहब, उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। यस, अगर आप किसी व्यक्ति को आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो इसमें आपको कोई चार्ज नहीं रहेगा, 2000 रुपये का जो है निःशुल्क रहेगा। ये पहले भी था, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये अभी भी ऐसे ही है, ठीक है। तो इस पे आपको ज्यादा लूट लेने की नीड है नहीं। हर महीने में 1 लाख के अंदर UPI से जो है लेन देन करने वाले कारोबारियों को भी किसी भी तरह का जो है MDR नहीं चुकाना होगा। ओके जी, समझ आ गया आपको, आई होप अब आपको टेंशन नहीं होगी। और आपको बताते चले भाई साहब, घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए जो है बायोमेट्रिक आधार जो है वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। तो आप प्लीज अपना जो है ये KYC अगर आपने नहीं कराया तो जरूर करा लीजिए। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें अक्सर हम अवॉइड करते हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आप ज़रा ज़रूरी है इन चीज़ों पे ध्यान देना। आपको बता दें 1 अक्टूबर से WhatsApp नहीं रहेगा फ्री, बिजनेस यूजर्स को देने होंगे चार्जेस। यस, यानी कि आज से जो है अगर आप WhatsApp पे बिजनेस पर्पज से WhatsApp यूज़ करते हो है ना, तो भैया आपको बता दें 1 अक्टूबर से WhatsApp बिजनेस यूजर्स को जो है मैसेज भेजने के लिए चार्ज देना होगा। मीटा ने बिजनेस यूजर्स के लिए कुछ फ्री मैसेजिंग सेवाएँ जो है वो ख़त्म करने का फैसला किया है। अगर बिजनेस अकाउंट में पेमेंट मेथड नहीं जोड़ा है तो भैया 30 सितंबर तक जो है आपको जोड़ना था, पर अगर अभी तक आपने नहीं जोड़ा है तो अब आपको चार्ज देना पड़ सकता है। जी हाँ, ये बताना बहुत जरूरी था। वैसे देखो, हर चीज हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होती है ना। सबसे पहली चीज तो हमें ये जाननी चाहिए कि जो हम चीज कह रहे हैं वो किसके लिए है, और उस क्राइटेरिया के अंदर कौन आता है कौन नहीं आता है, ये बहुत जरूरी है। बाकी और क्या स्पेशल है आज की तारीख में, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। ढेर सारे मैसेज आए हैं, मुझे पिंकू का मैसेज आया, इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग आनंद भाई, सुबह ऑफिस जा रहा हूं और मैं तो अपने दिन की शुरुआत चाय से करता हूं। भाई हम देसी लोग हैं, हमें चाय ही पसंद है, कॉफी बहुत रेयरली लेता हूं। सेम ईयर मेरे भाई यार, मुझे भी मतलब कॉफी ऐसा नहीं है कि हमें पसंद नहीं है, कॉफी पीने के बहुत सारे फायदे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यार फिर भी हमें चाय से एक अलग ही प्यार है। जो तलब चाय के लिए ना, वो कॉफी के लिए है नहीं वैसे यार। एंड आई डोंट, मुझे ऐसे लगता है लड़कियों के केस में लड़कियां कॉफी ज्यादा पसंद करती हैं, आई डोंट नो, पर लड़कों को तो चलो भाई गर्मा गर्म कड़क चाय हो जाए, मजा आ जाए। आपको बता दें एलपीजी सिलेंडर जो है थोड़ा सा महंगा हो गया है, 60 रुपए से बढ़कर 71 रुपए हो गया। नाना भाई आपके लिए नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 19 किलो वाला जो सिलेंडर है उसकी बात कर रहा हूँ। फिलहाल दिल्ली की रेट की बात करूँ तो देखो यार, पहले वहां पर जो सिलेंडर का रेट था वो 2747 रुपए था, लेकिन अभी 2810 रुपए हो गया, यानी कि वहां पर जो है चार्ज बढ़ गए हैं। अब यहाँ का क्या चार्ज है मुझे पता करके बताना पड़ेगा। मैं देखते हैं, चलो ये थोड़ी छोटी छोटी छोटी खबरें, थोड़ी थोड़ी अपडेट आपको ऐसी देते रहेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अभी लौट कर आऊंगा, कुछ और गाने आने वाले हैं जिनका इंतजार मुझे पता है आपको भी है, मुझे भी था यार। ऑफ कोर्स यार, बिना गानों के हमारी मॉर्निंग कैसे लाउड होगी।
7: इसी मन चले का तुझ पे आए हुए जो दिल होगी,
0: क्या बात है।

मुश्किलों से नहीं डरना है बॉस, मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। चलो अभी लौट कर आता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। आपको क्या लगता है, आप चाय लवर हो या कॉफी, जरा मुझे मैसेज करके बताओ। आज जो है कॉफी वाला डे मनाया जाता है बॉस, इसके अलावा आज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी मनाया जाता है। बात करता हूँ अभी लौट कर आ रहा हूँ, बताऊंगा आज के दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, किसका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं उस पर बात करेंगे। 9:20 हो रहे हैं, आप घड़ी मिलाइए, आनंद को सुन रहे हैं आप लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे ही सुनते रहिए ना।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।

अगर आप कहीं जाम वगैरह में फंसे हो तो मुझे मैसेज करके बता सकते हो 9837896896। कोई भी ट्रैफिक से जुड़ी अपडेट व्हाट्सएप करो मुझे 9837896896।

0: क्या बात है, बहुत ही वंडरफुल सॉन्ग 928 वेलकम बैक है। सोचिए यार, एक लड़के को इंस्टाग्राम पे एक लड़की ने ब्लॉक कर दिया और वो लड़का उसे मनाने के लिए मुंबई से यूएस पहुंच गया है। भाई साहब, मतलब ये क्या अजीबोगरीब चीजें सुनने को मिलती है भाई। कभी कभी तो मेरे को समझ नहीं आता कुछ काम धाम नहीं होता है क्या भाई। हाय वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। और बड़ी चटपटी अजीबोगरीब खबर है यार ये। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे को लग रहा था भाई मैं हो ही क्या रहा है, ये क्या चल रहा है आजकल की देश दुनिया में, हो क्या रहा है जेंजी को। वैसे मुंबई का रहने वाला 31 ईयर का लड़का है जिसका नाम है प्रतीक पंकज जैन। एंड ये जो भाई साहब सोशल मीडिया पर जो है किसी के प्यार में पड़ गए हैं और उसके बाद जो है इनकी जो मोहतरमा थी उन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद जो है ये सीधा मुंबई से उड़ान भर करके पहुंच गए हैं उनको मनाने के लिए। भैया कहाँ यूएस, कह रहे कि आपने हमको ब्लॉक कैसे किया, हमको अनब्लॉक करो। बताइए, अनब्लॉक कराने के लिए यूएस पहुंच गए पैसा लगा के। भाई क्या ही हो रहा है, मुझे मारो यार। जब मैं सुन रहा था मेरे को लगा यार ये हो क्या रहा है, मतलब और मतलब ये क्या सच्ची दीवानगी है भाई। एनीवेज यार मेरे को लगता है कि भाई ये जो दीवानगी ना इसको इतना भी मत सर पे चढ़ाओ कि बाद में दिक्कत हो जाए। चलो आगे बढ़ते। कॉफ़ी विद करण का जो है आखिरी सीज़न आने वाला है, 22 ईयर के बाद फाइनली जो है सफ़र ख़त्म होगा। यस, 22 सालों के बाद कॉफ़ी विद करण का सीज़न एंड होने वाला है। सीज़न 9 से जो है इसकी एंडिंग होगी। 14 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा। स्ट्रीम जियो स्टार पर आने वाला है। ये जियो हॉट स्टार पर आप इसको देख सकते हैं। एंड 2004 से जो है फाइनली इतने सारे एपिसोड इसके आ चुके हैं। फाइनली अब इसका फाइनल एपिसोड के साथ ही जो है करण जौहर अब लेने वाले हैं सभी लोगों से इजाज़त कि भैया बहुत हमने आपको जो है कॉफ़ी विद करण एंजॉय करा दिया, अब हमारा जाने का समय हो गया है। इन्होंने घोषणा कर दी है 161 एपिसोड के बाद जो है अब फाइनली इसका आखिरी सीजन 9 आने वाला है कॉफी विद करण। अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ जो है अब आपकी करण, आपके फेवरेट करण जौहर जो है वो लेंगे आपसे अनुमति कि अब हमें जाने दो ना। आयुष्मान खुराना जो एक मूवी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और उस मूवी की तारीफ के बाद जो है ना भाई साहब उसके मतलब जो है चाहने वालों की कतार और ज्यादा बढ़ गई है। किस कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ भाई साहब, जरूर जरूर बताऊंगा आपको, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन उससे पहले अगर आप 1 अक्टूबर से यानी कि आज से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं तो जरा ध्यान से सुनो। हाँ जी, आप ही को बता रहा हूँ मैं। देखिए भैया, रेलवे चलाएगा एक विशेष टिकट जांच अभियान। मैंने आपको कल भी बताया था सेंट्रल रेलवे जो है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर सन 2026 तक जो है वो एक टिकट चेकिंग अभियान चलाने जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत होगी और इसी दौरान टिकट नहीं बल्कि आपके साथ आपको एक अपनी आईडी प्रूफ अपने पास रखना होगा। मैंने कल भी आपको बताया था यानी कि अपना कोई भी आपके पास आपको आईडी प्रूफ रखना होगा, चाहे आपका आधार कार्ड हो या आपका पहचान पत्र हो, आई मीन वोटर आईडी कार्ड, आपके पास कुछ भी अपना एक आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई साहब कभी भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ वेरिफिकेशन वाला सिनारी हो रहा है तो आपके पास अपना आईडी होना बहुत ज़रूरी। तो जब भी आप ट्रैवल करें, आप कहीं भी जा रहे हो, अपने घर जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो भैया टिकट के साथ साथ अपनी आईडी ज़रूर अपने पास रखेंगे क्योंकि आपको अब जो है टीटी भैया को सिर्फ टिकट नहीं आईडी प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए, मेरे पास तन्विका का मैसेज आया, उन्होंने लिखा आनंद जी मैं तो कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कॉफ़ी पीने से मेरी एनर्जी थोड़ी सुपर डुपर अमेजिंग हो जाती है। अरे वाह क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। एक मैसेज मेरे पास और पहुंचा है, गुड मॉर्निंग हाय मेरा नाम शुभम है, आनंद क्या हाल चाल है भाई, बहुत ही बढ़िया गाने बजाते हो, मज़ा आता है सुन करके। अरे वाह क्या बात है, मौज कर दी बाबा। आगे बढ़ते हैं, एक मैसेज और आया है, गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू डूइंग, आई एम एब्सोल्युटली फाइन यार। ये लिखते हैं यार आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, उधार ले ले भाई तू मेरे से, बता रहा हूँ मैं फिर वापस ले लूँगा। लेकिन गुड मॉर्निंग जी, कश्मीर से मेरे पास मैसेज पहुँचा है, हाय हाउ यू कैसे हाल है। मेरे पास इटली से मैसेज आया है, हाय आनंद हाउ आर यू डूइंग, टाइम थोड़ा चेंज है ब्रो यहाँ पर। ओ माय गॉड यार, आप इटली से मैसेज कर रहे हैं मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है आज की सुबह। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग यू लव। नहीं नहीं ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ यार, ये आयुष जी बोल रहे हैं। रूप दियो रानी तू परांदे नु संभालनी, आप अपनी गाड़ी संभालो और बाकी आपकी प्लेलिस्ट मैं संभाल रहा हूँ ना। अरे ओए होए, होगी बड़ी मुश्किल, मैं बता रहा हूँ लाइफ में काम ऐसा करो कि भैया हर काम जो है बार बार आपसे कराया जाए, मतलब हर नहीं जो आप करते हो वो तो इटली आपसे कराया ही जाए यार। कुछ काम को आप नहीं चुनते ना, आपको वो काम चुनता है और अगर आपको उस काम ने चुना है तो यकीन मानना उस काम में आप रॉक स्टार होने वाले हो भाई। चलो जी, इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं, मैं लौट कर आता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। गाना आप तक पहुंचेगा पति पत्नी और वो दो कौन है मैं पता करके आ रहा हूँ।
1: FM Muradabad 89.6 FM। शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
4: अरे आनंद इज बैक।

0: घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी।
1: अरे तो छोटू, ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
2: कौन है ये?
1: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 3 से 5 मंडे टू सैटरडे करती है आपसे दिल की बात।
3: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਮੋਰਨੀ ਦੀ ਕੂਕ ਸੋਹਣਿਆ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰੇ।
1: हेलो जी, हेलो। हाँ जी, तुम सो तो नहीं गए हो ना? मैं कह रहा हूँ सोना मत। अरे यार, इतने बढ़िया गाने चल रहे हैं, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, आपने इतने अच्छे मैसेज पहुंचाए हैं, मैं अभी पढ़ता हूँ उनको। और कुछ कड़क अपडेट, लोकल इन्फॉर्मेशन आप पहुंचानी है मुरादाबाद से जुड़ी। वापस आ रहा हूँ। आप ऐसे चुन रहे हो आनंद को, ट्रैफिक व्राफिक है तो बता दो मुझे यार।
2: बता दो ना यार, ट्रैफिक है तो मुझे मैसेज करो।

क्या बात है यार, इन पाजी की आवाज़ सुन के ना मैं सच बता रहा हूँ बड़ा मज़ा आता है मेरे को यार। कभी कभी ना कुछ आवाज़ें इतनी अच्छी होती हैं जिनको सुन के सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मैं आपको सही में बता रहा हूँ, आज इंटरनेशनल म्यूज़िक डे भी मनाया जाता है, 1 अक्टूबर है आज। और मैं आपसे कह रहा हूँ पाजी, म्यूज़िक से देखो हमें बड़ा प्यार है और मुझे पता है आपको भी बड़ा प्यार है, इसीलिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहते हो। हैं जी, म्यूज़िक जो है ज़िंदगी में मतलब सब कुछ अच्छा कर देता है यार। 9:44 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आनंद के साथ आपने ट्यूनिंग किया है FM मुरादाबाद, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। जी ढेर सारे हमारे साथ लिसनर्स जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वर्षिका मुझे मैसेज करके पहुंचाती हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सर मैं तो शाम हो या सुबह मतलब दोनों ही टाइम मतलब मेरी तो कॉफ़ी से स्टार्ट होती है एंड आई लव कॉफ़ी। मुझे लगता है ये कॉफ़ी की काफ़ी बड़ी क्रेजी फैन है आई थिंक। चलो जी अच्छी बात है, आप कॉफ़ी से प्यार करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम तो जो ऐसे ही प्यार करते हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। वेल आगे बढ़ते हैं, एक और मैसेज हमारे पास पहुँचा है, ये मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक कली महराज अंसारी, बाबू अंसारी, ये लिखते हैं आप जो जानकारियां लेकर आते हैं वो काफी बढ़िया लगती हैं। एक मैसेज हमारे पास आ गया है, उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं जिसके पास शक्ति के साथ सहन शक्ति भी हो। क्या बात है, इसी विचार के साथ आपको प्रणाम, गुड वाली मॉर्निंग। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मित्रपाल साहब, ये रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं हमारे विक्की भाई। हमारे पास एक मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, इस वक्त मैं गुजरात अहमदाबाद में आपको सुन रहा हूँ, सनेरो सनेरो। अरे यार सनेरो तो हम डेफिनेटली करेंगे। हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, अमित वर्मा फ्रॉम हरथला का ये मुझे मैसेज करते हैं, आनंद भाई आपने बिल्कुल ठीक बोला है, कभी कभी ना कुछ फैसले आपके हित में नहीं होते हैं, बट समय आने पर उन फैसलों को जो है उन फैसलों का आपके हित में वो हो जाते हैं और आपको पता भी चल जाता है कि वो क्यों हुए थे। एग्जैक्टली आई एग्री विद यू, कभी कभी सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चलती है बॉस, आपको सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है। हाय गुड मॉर्निंग अयूब अली फ्रॉम रामपुर, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल हैं आप? क्या बात है जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। रिहाना हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती है फूलों की वादियों में हो सवेरा आपका, अजी वाह वाह क्या बात है, फूलों की वादियों में हो सवेरा आपका, सितारों के आंगन में हो घर आपका, दुआ है खुदा से बस इतनी सी कि खूबसूरत सवेरा हो आपका। अरे वाह, आपने मैसेज कर दिया तो खूबसूरत ही हो गया जी, क्या बात है, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया यार, इतने बढ़िया बढ़िया बातें आप लोग पहुंचाते हो, बड़ा ही मजा आता है मेरे को। हाय जी गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, इन्होंने

0: अपना नाम नहीं लिखा है, बस ये लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आपके स्टेशन में बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। ये स्टेशन म्यूजिकल है ना मेरे दोस्तों, यहाँ पर डेफिनेटली आपको मजा आना तो बनता है। वेल, जो लोग अपने ऑफिस पहुंच चुके हैं उनको ऑल द बेस्ट आज के दिन के लिए, और जो पहुंचने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ऐसे ही हमारे साथ ट्यून इन रहिए, मंडे टू सैटरडे फुल ऑन डोज आपको मिलता है। आज तो थर्सडे है, पता नहीं चल रहा है कैसे अक्टूबर आ गया है यार। कोई बात नहीं है, बस जो टाइम चल रहा है उसको सेलिब्रेट करते रहो। और बाकी आज का दिन बहुत सारी चीज़ों के लिए खास है, मैंने आपको बताया आज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है। और मुझे तो यार आलू पराठा, पनीर पराठा, दाल चावल, छोले चावल सब कुछ पसंद है, वेज बिरयानी एंड छोले भटूरे, आई लव दिस यार। मतलब सुबह सुबह आप कहोगे आनंद कर क्या रहा है सुबह सुबह रेडियो में बैठ के। हाँ, आप इमेजिन करो मूंग की दाल, उस पर बढ़िया सी चटनी हो, साथ में उसमें जलेबी हो, मजा आ जाता है। वैसे मूंग की दाल और जलेबी का कॉम्बिनेशन मैंने यहीं पर देखा है, इनफैक्ट मुरादाबादी दाल के साथ समोसे का भी कॉम्बो बनाया जाता है यार, बट मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। नहीं, मूंग की दाल के बिना नहीं करता सर मेरा दिन। मैं आपको शॉपिंग मॉल नहीं, मैं आपको एक स्टॉल पर लेके जाऊंगा, बहुत ही फेमस स्टॉल है मूंग की दाल की, आपको मजा आ जाएगा। चलो जी, एक सवाल के साथ वापस आ रहा हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, और कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ वो भी आपके काम से जुड़ी। हमारे पास कश्मीर से मैसेज आ गया है मेहराजुद्दीन साहब का, लिखते हैं आनंद साहब क्या हाल चाल है, गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, आपको भी मेरा सलाम। लेकिन इस गाने से पहले एक एड ब्रेक का टाइम हो गया है जी। देखिए, फेस्टिव सीजन है तो ऐसे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या है बाबूजी, सुनो जरा।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: 1 फरवरी 2026 को श्री साई हॉस्पिटल में होने जा रहा है एक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट समीक्षा कैंप। पिछले 15 वर्षों में डॉक्टर अंकुर कुवैल द्वारा किए गए कूल्हे एवं घुटना प्रत्यारोपण के मरीजों से रूबरू अनुभव साझा करने का अवसर। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 9412504190।
5: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

चलो जी, वेलकम बैक यू वंस अगेन। देखो भाई, घड़ी मिलाओ यार, 9:54 हो गए हैं, आप लोग पहुंच चुके हैं अपने ऑफिसेज में। बहुत ही अच्छी बात है, इंटरनेशनल म्यूजिक डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 अक्टूबर को, और यार म्यूजिक हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा भी था, है ना, एंड आपकी मॉर्निंग को खूबसूरत बनाता है ये म्यूजिक। और म्यूजिक वो एहसास है, वो फील है यार, अगर आप उसको दिल में उतार लो, अगर आप उसे दिल से सुनो तो मजा आ जाता है, कनेक्शन दिल से दिल तक वाला हो जाता है। एक बार फिर से आपका वार्म वेलकम है, और अभी मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूँ अपने शहर से जुड़ी फटाफट से इमीडिएटली। लेकिन उससे पहले आज का एक कड़क सवाल है जिसको सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे, एंड इसका जवाब आपने मुझे मैसेज करके देना है 9837896896 पे। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आज के मेरे क्वेश्चन को सुनने के बाद, ठीक है जी। तो आज का मेरा कड़क सवाल क्या होने वाला है, चलिए आपसे फटाफट से मैं पूछ लेता हूँ, मैडम को बुलाते हैं। हाँ जी, तो बहुत ही सिंपल है आज का मेरा कड़क क्वेश्चन। 3, 2, 1 गो स्टार्ट। एक गाना प्ले करूंगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, बहुत ही अच्छा गाना है, कौन सा है ये? बहुत ही प्यारा गाना है यार, यू थिंक अबाउट, नहीं नहीं नाम नहीं बताऊंगा मैं। व्हाट्सएप करो आप मुझे 9837896896। बहुत ही ब्यूटीफुल गाने का इंट्रो म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: चलो जी, अभी इतना पैसा में इतना ही मिलेगा हुजूर, मेरे को मैसेज करने का जी। ओ मेरे यार बड़े प्रो, मैसेज करो भाई, क्या कर रहे हो, फोन उठा के अपना फटाफट आंसर टाइप कर दो यार। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मैसेज बॉक्स में जाने का ब्रो, टाइप करने का अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करने का मेरे नंबर पे 9837896896 पे आपको मेरे को फटाक से मैसेज करने का। अगर आपने मेरे को सही सही सही सही वाला मैसेज किया तो मैं आपको फोन करेगा अभी के अभी करेगा।
1: हॉस्पिटल मुरादाबाद में रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण, क्यूबीएस रोबोट एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पाए बेहतर संतुलन, सटीक सर्जरी और प्राकृतिक मूवमेंट का अनुभव। 15 वर्षों का अनुभव, वरिष्ठ ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा रोबोट से नी रिप्लेसमेंट की सुविधा। पहले 10 रजिस्ट्रेशन पर रोबोटिक चार्ज बिल्कुल फ्री। अब अपने घुटनों के इलाज को दे रोबोटिक अपग्रेड। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल करें 7060507666।
0: चलो जी, अभी फिलहाल ही छोटा सा ब्रेक था, उसके बाद हम वापस आ गए हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आज हमने पूछा आपसे सवाल, कौन सा गाना है

0: वेरी वेरी मोस्ट पॉपुलर एंड वेरी वेरी रोमांटिक नंबर एंड आई थिंक अभी इससे ज्यादा मैं आपको कुछ हिंट नहीं दे सकता. काफी हिंट दे दिए मैंने आज की सुबह. इमीडिएटली मेरे को मैसेज करने का अभी आपने 9837896896 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है जी, अपने नाम के साथ और अपने शहर के नाम के साथ. प्लीज अपना शहर का नाम जरूर लिखना है ताकि मेरे को पता लगे ना विच सिटी कहाँ से आप मुझे सुन रहे हैं, तभी तो मजा आएगा. चलो फिलहाल एक बढ़िया से गाना बजा रहा हूँ आपके लिए एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम ये गाना सुन रहे हैं. बहुत से लोगों का फेवरेट है गाना, ऑफकोर्स आपको सुन के बड़ा मजा आने वाला है. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. सच में यार, भूल चुक माफ का ट्रैक एंजॉय करते हैं. वॉल्यूम बढ़ा लो यार.
1: सच्ची.

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
3: एग्जैक्टली बिंदास मॉर्निंग आप सुन रहे हैं। सुबह के 10:01 हो गए हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जुड़ चुके हैं आनंद के साथ। आपने ट्यून इन किया है FM मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ, सुन रहे हैं आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी लौट कर आता हूँ कुछ कड़क बातों के साथ।

मैं समझ सकता हूँ आपको जो जो बोला गया है, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ यार। हाय वेलकम बैक है वंस अगेन, एक बार फिर से 10:05 हो रहे हैं स्टेशन, आप सुन रहे हैं आनंद को, जहाँ पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। मतलब ये आपका फेवरेट मॉर्निंग मैगजीन जो है, यही स्टेशन ऑफ द नेशन है 89.6, जहाँ पर मैं होता हूँ आप होते हैं और ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स जहाँ पर आप हैं वहाँ पर हमें और जहाँ पर हमें वहाँ पर आप हैं। जी बहुत ही मज़ेदार बात है। चलो जी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखो भाई, इस महीने फेस्टिव सीजन में जो है थोड़ी सी महंगे हो सकते हैं आपके ये चीज़ें, एक बार बता देता हूँ। जैसे टीवी, फ्रिज और एसी हो सकते हैं महंगे। एग्जैक्टली मतलब बताया जा रहा है कि भैया फेस्टिव सीज़न है, तो ऐसे में इन उत्पादों पर थोड़ा सा जो है बढ़ सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है, तो थोड़े से महंगे हो सकते हैं ये चीज़ें। अगर आप घर में कुछ टीवी वगैरह फेस्टिव सीजन पर प्लान कर रहे हो लाने का, तो भैया एक बार ज़रूर चेक कर लेना। सेल वेल के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना बॉस, कभी बाद में फिर से आप पे हो जाए ना। एंड आपको बताते चले, एलपीजी सिलेंडर अगर आपके घर आता है, तो ऐसे में जो डिलीवरी बॉय आपके घर पे सिलेंडर लेकर आने वाले हैं, उनको मतलब अभी ओटीपी वाला जो सेक्शन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है कि एलपीजी से जुड़े बड़े बदलाव में डिलीवरी के दौरान मोबाइल पर आने वाले ओटीपी से वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी शामिल है। एंड इससे जो है सिलेंडर डिलीवरी की प्रक्रिया और भी गहरी और ग्राहकों की पुष्टि इससे की जाएगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। तो अगर आपके घर पर सिलेंडर आ रहा है तो उसका ओटीपी का जो वेरिफिकेशन है वो ज़रूर करा लें। चलो भाई अभी एक और आपको इमीडिएटली खास बात बता देता हूँ, मतलब लोकल फॉर वोकल में बात कर लेते हैं मुरादाबाद से जुड़ी इमीडिएटली एक और इन्फॉर्मेशन की है ना। कुछ बातें मैं आपको ऑफकोर्स बताता हूँ। देखिए, बाढ़ के नुकसान की सूचना कंट्रोल रूम में आप दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आसपास में कहीं पर कुछ भी ऐसा हुआ है, तो उसकी अपडेट आप कंट्रोल रूम पर दे सकते हैं। कैसे भैया, देखिए आपको बता दें, बाढ़ बारिश में जो है जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में वो जो है इस नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नंबर आपको दे रहा हूँ फटाफट से। सबसे पहले टोल फ्री नंबर आप नोट कर सकते हैं 1077, इस नंबर पे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर 0591241728 इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और अगर बात करें मोबाइल नंबर की, तो 9454416867 इस नंबर पे भी आप कॉल करके जो भी आपकी शिकायतें हैं वो आप दर्ज करा सकते हैं। बाढ़ में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके लिए ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल डेफिनेटली करके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो साझा कर सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टोल फ्री नंबर रहेगा 1077 1077, फोन नंबर रहेगा 9454416867। चलो जी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आपसे मैंने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था आज की मॉर्निंग, एंड ढेर सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, थैंक यू सो मच इन वंडरफुल मैसेज के लिए। मैं दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। बताता हूँ अभी लौट कर आऊंगा तो कौन है आज का विनर। ये आज का सवाल कौन सा गाना है ये आपने आइडेंटिफाई करना था लेडीज एंड जेंटलमैन।

चलो मैसेज करो अगर आपको समझ में आ गया है कौन सा गाना है, बहुत ही पॉपुलर नंबर है, अगर आप समझ चुके हैं आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो व्हाट्सएप करो। आनंद के साथ ऐसे ही सुनते रहो, बस अभी लौट कर आता हूँ। बट अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो अगेन कह रहा हूँ पाजी, आप जो है प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज फोन के करीब आ जाओ, क्योंकि बाद में बड़ी दिक्कत होती है भाई। मैं किसी लकी वन को कॉल करता हूँ तो फिर वो कॉल नहीं रिसीव कर पाते हैं। तो अगर आपने पार्टिसिपेट किया था तो आप ऐसे ही कनेक्टेड रहो ना हमारे साथ, आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, ऐसे ही ट्यून इन रहो आरजे आनंद के साथ, सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6 और रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, कहीं मत जाओ बाजी। लौट कर आ रहा हूँ अभी इसी स्टेशन पर, लूंगा आपसे फिर जाने की इजाजत, एक लकी कॉलर के साथ वापस कम बैक कर रहा हूँ। फिलहाल एक अच्छा गाना

0: 10:12 हो रहे हैं, सुबह का टाइम है, आज 1 अक्टूबर है, आज पहली तारीख है भैया, बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, अक्टूबर का फेस्टिविटी का टाइम जो है शुरू हो गया है बॉस।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
0: हाँ जी, फिलहाल मैं यहाँ पर अब जो है एक बंदे को शॉर्टलिस्ट करने वाला हूँ, देखते हैं भाई साहब बहुत सारे जवाब आ गए, लेकिन एक एडवेक
2: श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण क्यूबीएस रोबोट एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पाए बेहतर संतुलन, सटीक सर्जरी और प्राकृतिक मूवमेंट का अनुभव। 15 वर्षों का अनुभव, वरिष्ठ ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा रोबोट से नी रिप्लेसमेंट की सुविधा, पहले 10 रजिस्ट्रेशन पर रोबोटिक चार्ज बिल्कुल फ्री। अब अपने घुटनों के इलाज को दे रोबोटिक अपग्रेड, आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल करें 7060507666।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
0: चलिए दोस्तों, जाने का समय हो गया है, फिलहाल लेते हैं आपसे अब जाने की इजाजत। 1 अक्टूबर की सुबह साइनिंग ऑफ से यही कहना चाहता हूँ, मस्ट रहो, झकास रहो, लेकिन ऐसे कैसे चले जाएंगे यार, आपके मैसेज को तो पढ़ के जाएंगे ना। आज की सुबह मैंने इतना अच्छा सवाल आपसे पूछा था, इतना बढ़िया मोस्ट पॉपुलर गाना था ये। ये दिल में जगह मांग रहे थे भैया, और आपने जो है अपना आंसर देके जगह ले ली है। बहुत ही प्यारा ट्रैक,
4: जरा सी दिल में दे जगह तू।
0: एग्जैक्टली, दिस इज राइट आंसर। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया आज की सुबह, कंग्रेचुलेशन। बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कोई एक लकी वन होता है हमारे साथ शॉर्टलिस्ट, और आज की सुबह हमने शॉर्टलिस्ट किया है एक खास बंदे को। इनका सबसे पहले आया वॉइस नोट, तो आइए जरा सुनते हैं इनके दिल की बात।
5: गुड मॉर्निंग आनंद सर, कैसे हैं आप? मैं शेरपुर माफी से सालिम अंसारी, ये सॉन्ग है जरा सी दिल में दे जगह, इमरान हाशमी का, के आवाज में।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। ब्यूटीफुल गाना, केके साहब ने क्या खूबसूरती से इस गाने को गाया है, और आप सभी ने भी बहुत सारे सही जवाब दिए हैं, थैंक यू सो मच। एक बार कंग्रेचुलेशन हो जाए। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच। चलिए, होगी कल मेरी आपकी मुलाकात और कुछ नई बातों के साथ, फिलहाल नेक्स्ट कंपनी एंजॉय कीजिए खुशी के साथ। लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, फिर होगी मेरी आपकी मुलाकात इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, एंड आप ऐसे ही मस्त रहिए, झकास रहिए, और ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। एक ब्यूटीफुल ट्रैक छोड़ के जा रहा हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, 10:15 हो गए, आपने ढेर सारे मैसेज किए उसके लिए थैंक यू। हरे कृष्णा जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? राम गोपाल जी ने सही जवाब दिया था मुझे, एंड ये विभोर मेरे साथ जुड़े थे आज की सुबह राइट आंसर के साथ, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। कोमल राइट आंसर से आज की सुबह मेरे साथ कनेक्ट हुई थी राइट आंसर के साथ, इनफैक्ट मेरे पास मैसेज पहुँच रहा था, हाई गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? सना एंड नाजिया तुर्क ये मुझे लिखती है, सर हम तो चाय लवर हैं, क्या बात है, हमारी फैमिली में भी मतलब कॉफ़ी तो बनती है, बट हम लोग चाय ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। बिल्कुल जी, आज इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। गौरव फीलर जी जुड़े हैं मेरे साथ आज की सुबह नवीन नगर से। इसके अलावा हमारे पास व्हाट्सएप पहुंचा था गुड मॉर्निंग श्रुति का, एंड एक मैसेज पहुंचा था कश्मीर से, एक मैसेज सहारनपुर से मेरे प्यारे लिसनर ने ये गुड मॉर्निंग का मैसेज पहुंचाया, थैंक यू जोन रोजी पलविली जी, बहुत ही खूबसूरत लाइनें आप लिखते हैं हमेशा, आपने जो है हमारा दिल जीत लिया है। जय श्री राम, बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हैं आज की सुबह, एंड ये मेरे पास मैसेज आया है सलमान जी का, साथ में लिखते हैं चौधरी मुमताज आलम जी गुड मॉर्निंग, राकेश वर्मा इनके दोस्त हैं। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? ये कल्याणपुर से हमारे साथ जुड़े हैं दुर्गेश जी, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं आज की सुबह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक टेक्स्ट मैसेज आया है मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग जी, सीमा अंसारी हमारे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग सही जवाब के साथ, एंड इसके अलावा हमारे पास रूबल का सही मैसेज पहुंचा है, थैंक यू वेरी मच। चलिए गाइस, कल मिलता हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, फ्राइडे की सुबह, वीकेंड आ गया है, अच्छी फीलिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, और अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा हैव अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल डे, मस्त रहिए, झकास रहिए, पूरे दिन में कोई एक बढ़िया काम जरूर कीजिए, और बाकी अच्छी वाइब्स के लिए ट्यून इन रहिए ऐसे ही हमारे स्टेशन पर, अभी के लिए

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। पहले अक्टूबर की तारीख है आज और फर्स्ट अक्टूबर है एवरीवन। बहुत ही ब्यूटीफुल दिन है आज थर्सडे का एंड वक्त हुआ है 10:25। मैं आपके साथ 10:22 हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा देखिए वक्त तो मैंने आपको बता ही दिया है। दिन भी बहुत ही प्यारा है थर्सडे का एंड एक अक्टूबर की तारीख है और मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी लेकर आई हूँ आपका अपना फेवरेट शो मॉर्निंग मसाला। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 अपने शहर की आवाज और आपकी सुबह को खुशनुमा बनाने के लिए खुशी यहाँ पर पहुंच चुकी है। वैसे एवरीवन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए जैसे एक तारीख आती है ना तो हमारा जो दिल है ना वो खुशियों से उछलने लगता है। क्यों? फर्स्ट जैसे तारीख आती है ना तो मतलब ऐसा लगता है कि ओहो हम कितने अमीर हो गए हैं ना। मतलब एक तारीख सैलरी आने का इंतजार फाइनली कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही पैसे आते हैं ना बस पूछिए मत, फिर तो ऐसा वाइब आती है ना कि सबसे अमीर तो हम ही हैं और वो पैसा आते ही कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन हाँ सैलरी का बेसब्री से सभी को इंतजार होता है और फाइनली वो दिन वो घड़ी आ ही गई है। मैं तो एवरीवन पहले ही लिस्ट बना लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ कि मुझे इस मंथ क्या क्या शॉपिंग करनी है, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। बेफजूल पैसा बिल्कुल भी नहीं खर्च करना है भाई, पैसा बहुत मेहनत से आता है। तो मैं भी यही आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी शॉपिंग करने के शौकीन है ना, कुछ अपने ऊपर भी उड़ाने के शौकीन है पैसा वैसा खर्च करने की, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए जो ज़रूरत का सामान है वो ही खरीदें, अन्यथा ना खरीदें। मैं यही कहूँगी पैसे को सेव करके रखिए, बहुत जरूरी है क्योंकि पैसा आने में टाइम लगता है उड़ाने में टाइम नहीं लगता है। इसीलिए पैसे को सेव करके रखो, बाकी खुश रहो और मुझे अपने मैसेज भी पहुंचाते रहो। मोबाइल नंबर हमारा है 8989823। ओहो नंबर मैं आज तो अपना ही नंबर बता रही हूँ, क्या हो रहा है भाई। सुबह सुबह लगता है कि आज मैंने ना एक कॉफी एक्स्ट्रा पी ली है तो इसलिए ना माइंड भी एक्स्ट्रा चल रहा है। हा? हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। इस ऑफिशियल नंबर पर आप अपना मैसेज पहुंचा दीजिएगा और मैं आप तक पहुंचाती हूँ एक अमेजिंग ट्रैक आज की सुबह जो आपकी मॉर्निंग को बनाएगा सुपर डुपर लाउड। आरजे खुशी के साथ सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, संगीत सिर्फ कुछ सुरों और धुनों का नाम नहीं है। संगीत वो एहसास है जो बिना कुछ कहे भी दिल की बातें कह देता है। एवरीवन, आज 1 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजिक डे। और इस दिन की शुरुआत इंटरनेशनल म्यूजिक काउंसिलर की पहल से 1975 में हुई थी। इसका मकसद था संगीत को हर इंसान तक पहुंचाना और अलग अलग कल्चर के बीच पीस, फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना। और सच कहूँ, संगीत की ये तो यही तो खूबसूरती है ना। भाषाएं अलग हो सकती हैं, पसंद अलग हो सकती है, लेकिन एक अच्छी धुन पर दिल अक्सर एक जैसा ही धड़कता है। कभी कोई सॉन्ग हमें हमारे चाइल्ड मेमोरीज में ले जाता है, तो कभी कोई धुन किसी खास इंसान की याद दिलाता है, और कभी कभी तो एक गाना हमारे पूरे मूड को ही बदल देता है। तो आज इंटरनेशनल म्यूजिक डे पर मैं भी आपसे एक छोटा सा म्यूजिकल सवाल भी पूछूंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीवन, हैप्पी इंटरनेशनल म्यूजिक डे। एंड हमारे सभी लिसनर्स को, देखिए, म्यूजिक सुनने का तो हर किसी को शौक है। और कुछ ऐसे भी हमारे लिसनर हैं जो गुनगुनाते बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत गाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर ना एक अलग ही मतलब एहसास होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और वो कौन है बताएंगे हम आपको। लेकिन यहाँ पर ना आपके खूबसूरत संदेश भी आ गए हैं, उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज पहुँचाते हैं मधुबनी बिहार से मोहम्मद शाबिर परवाना जी। आज की सुबह हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। इतने प्यार से, इतने दूर दूर से हमारे पास मैसेज आते हैं ना, एवरीवन दिल खुश हो जाता है। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। और हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया है ताज मोहम्मद अंसारी जी का। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और गुड मॉर्निंग विश करते हैं ये भी आज की सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से सना एंड नाजिया तुर्क हमारे साथ सुबह सुबह कनेक्ट हो गई है। और अगला मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का। आरजी जी, आपको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए, खुशी जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आज की सुबह अविनाश सतनागर जी। एंड दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे कुछ ऐसे भी लिसनर हैं जो बहुत ही प्यारा गाते हैं, उनकी आवाज़ जब हम सुनते हैं ना, ओए होए होए, क्या ही कहने, जितनी तारीफ करें कम है। तो वो जनाब यही है एंड बहुत ही खूबसूरत सर गाते हैं। इनकी आवाज जब हम सुनते हैं ना, तो सच में दिल को सुकून मिल जाता है। और जब भोजपुरी में ये गाते हैं ना, भोजपुरी लैंग्वेज में, तो अलग ही मजा आ जाता है। एंड आज सर एक गाना सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी साहब जी और साथ में लता जी की आवाज में, सिमटी हुई ये घड़ियां, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, आरजी खुशी जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत ही अच्छी हूँ मैं। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे राइट नाउ। ऑलवेज हैप्पी रहिए एंड फिट एंड फाइन रहिए। ये विकी जी हमें मैसेज पहुँचाते हैं मुरादाबाद से। तो एवरीवन, आप भी मुझे आज की सुबह अपना मैसेज पहुंचा दीजिएगा बिना किसी देरी के। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। देखिए, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। माना कि आप काम में व्यस्त हैं, थोड़ा सा फ्री होकर हमारे लिए भी टाइम निकाल लीजिएगा। और अभी फिलहाल सुनिएगा एक अमेजिंग ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। और देखिए, आज 1 अक्टूबर है एंड क्या कुछ बदलाव आए हैं वो सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पर आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुन को बिल्कुल भी मत घुमाइए और दिल से मुस्कुराइए।

0: अरे
1: खाता है फिर भी अकुल नहीं है।
0: हमारा बीवी सुंदरी भी है और

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और जब खुशी आती है तो ढेर सारी खुशियां आपके लिए लेकर आती है। और दोस्तों, आज इंटरनेशनल म्यूजिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए वो एक ट्रैक जिसे आप सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। देखिए, गाने तो सभी बहुत अच्छे होते हैं, है ना, एंड लेकिन एक वो ट्रैक जिसे आप सुनकर ना बहुत खुशी फील करते हैं, बताइएगा कौन सा वो गाना है जो आपकी प्लेलिस्ट में से कभी गायब नहीं होता है, वो हमेशा रहता ही है, एक वो ट्रैक। तो मुझे अपने नाम के साथ ज़रूर बताइएगा वो कौन सा गाना है जिसे सुनकर आप बहुत हैप्पी फील करते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक तेरे नाल चली हसीन कोयना, और इस पंजाबी गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी हरनूर की आवाज में विकी सागर जी ने। तो चलिए एवरीवन, अभी शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे संदेश भी आए हैं, उनको भी मैं शामिल करना चाहूंगी। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए, हाय खुशी दी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ डियर, आप बताइएगा कैसी हैं? देखिए, नाम तो आपने लिखा नहीं है, लेकिन हाँ, गुड मॉर्निंग मुझे विश कर दिया है, थैंक यू उसके लिए, एंड वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ओहो, ये निशा जी का मैसेज आया है, नाम इनका मिल गया, चलो मैंने फाइनली ढूंढ लिया है निशा जी आपका नाम। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है शानू जी का, मुरादाबाद से। ये कहते हैं, शानू जी हाय खुशी मैम, कैसे हैं आप और बताइएगा आपकी फैमिली में सब ठीक है? हाँ जी, ऑल गुड, आपकी दुआएं हैं, बहुत ही अच्छे हैं सब लोग। थैंक यू सो मच। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हेलो खुशी जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जय श्री राम, जय श्री राम आपको भी। अनुज कश्यप जी का मैसेज हमारे पास आया है, और उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। जनाब, आपने गुड मॉर्निंग तो पहुंचा दिया है, लेकिन अपना नाम नहीं बताया है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आपको हमारी आवाज से पता चल गया होगा कि खुशी कैसी है। और ये जय श्री राम हमें पहुंचाते हैं कपिल कश्यप जी मुरादाबाद से। तो चलिए एवरीवन, अभी लौटकर मैं आती हूँ कुछ खूबसूरत गानों की इस पार, एंड बताने वाली हूँ अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप तक डिलीवर करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम, मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, तो बिना किसी देरी के हम उनको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ म्यूजिकल ब्रेक सुनिएगा, ये प्यारा सा ट्रैक। एंड इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है गौरव टेलर जी ने नवीन नगर मुरादाबाद से आज की सुबह।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

हेलो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 खुशी के साथ। और दोस्तों, मैंने प्रॉमिस किया था ना आपसे कि मैं जल्दी वापस आऊंगी। देखिए, तो ये गाने के बाद हम रिटर्न आपसे बातचीत करने के लिए आ गए हैं। दोस्तों, आज 1 अक्टूबर से बदल गए हैं कुछ ज़रूरी नियम और मुझे लगता है कि आप तक अपडेट मिलनी भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप LPG, ATM और UPI का इस्तेमाल करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला बदलाव, LPG गैस सिलेंडर 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाली घरेलू LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यानी EKYC जरूरी है। अगर EKYC पूरी नहीं हुई तो सब्सिडी वाली रिफिल पाने के लिए पहले वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। एवरीवन, तो आप वेरिफिकेशन करवाने के लिए अपने नियर बाय जो गैस एजेंसी है वहां पर जाकर करा सकते हैं। और दूसरा बदलाव, SBI ATM की सैलरी पैकेज खाता धारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM से भी फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट अब 10 से घटकर 5 हो गई है। वही BSBD अकाउंट में महीने में 4 कैश विड्रॉल फ्री रहेंगे।

और दोस्तों UPI जो पेमेंट करते हैं उनके लिए भी 15 अक्टूबर से चुनिंदा 2000 से ज्यादा के मर्चेंडेड UPI ट्रांजेक्शन पर 0.4% MDR लागू होगा, लेकिन आम ग्राहकों के लिए यूपी

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिंदगी में बात तो बन जाती है जब अपनी फेवरेट सब्जी घर में बन जाती है ना। अब आप सोच रहे होंगे, खुशी जी ये सब्जियों की बातें क्यों कर रही हैं? बताती हूँ आपको, थोड़ा इंतजार कीजिए। दोस्तों, आज सेलिब्रेट किया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। जी हाँ, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी थाली सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि हमारी सेहत और प्रकृति से भी जुड़ी हुई है। हरी भरी सब्जियां, फल, दालें और पौष्टिक अनाज हमारी डेली डाइट में, इनका छोटा सा बदलाव भी हमें हेल्दी हैबिट्स की तरफ ले जाता है। तो आज अपनी प्लेट में ना थोड़ा और हरा भरा खूब सारी सब्जियां खाइए और प्रकृति के लिए भी एक प्यारा सा थैंक यू कहिए एवरीवन, क्योंकि अच्छी सेहत की शुरुआत हमारी थाली भी होती है। क्योंकि देखिए, जब थाली में ग्रीन ग्रीन हेल्दी वेजिटेबल्स होती है ना, तो हम भी हेल्दी होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं जो हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, बहुत नखरे दिखाते हैं, बट खाया करो, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और दोस्तों, मुझे आप बताइए, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में ना आपकी फेवरेट कौन सी वेजिटेबल है जो आपको खाने में आप नखरे नहीं दिखाते हैं, इजीली उसको खा लेते हैं, बहुत शौक से खाते हैं? बताइए आपकी फेवरेट ग्रीन वेजिटेबल्स कौन सी है, कौन सी सब्जी है ग्रीन जो आप खाने में नखरे बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, और जब वो बनती है ना तो आप शौक से खाते हैं। इतनी सारी सब्जियां हैं, बताओ आपका फेवरेट क्या है। मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तो बिना किसी देरी के ना आप मुझे मैसेज पहुंचा दीजिएगा एवरीवन। और यहाँ पर खूबसूरत बैक टू बैक आपके मैसेज आ रहे हैं, तो मैं उनको जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। ये हमें मैसेज पहुंचाते हैं मोहम्मद उस्मान फ्रॉम रामपुर से, रामपुर दोराहा से मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। आई होप आप अच्छी होंगी। बिल्कुल सर, कहते हैं कि आपका रेडियो एफएम मुरादाबाद हम सुनते हैं। सर, ये आपका भी है एंड डेली आपका प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत ही पसंद आता है हमें, थैंक यू सो मच। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दुर्गेश सैनी जी का, ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं आज की सुबह। कल्याणपुर मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुँचाते हैं आज की मॉर्निंग, और ये कहते हैं कि खुशी जी, आज हम रेडियो पूरे 9 दिन की बात सुन रहे हैं। एक्चुअली हम बीमार हो गए थे और अस्पताल में थे, तो इसलिए रेडियो नहीं सुन पाए थे। सर, आप पहले बताइएगा, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है आप प्रॉपरली? अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये भी अपने परिवार के साथ इस समय कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, लदावली जिला मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहां पर आया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, मोहम्मद नवी जी अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। और ये कहते हैं, मैम हम कल मुरादाबाद आए थे, आपकी वॉइस सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। ओ, गोभी आलू आपको पसंद है? अरे वाह, क्या बात है, गोभी आलू का तो सीजन अब स्टार्ट हो गया है। एंड वैसे तो सब्जियां 12 महीने आजकल मिलती हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन एक सीजन की जो सब्जियां होती है ना, उसका खाने का एक अलग ही टेस्ट होता है, अलग ही आनंद आता है। जैसे अब विंटर्स आ रहे हैं, तो गोभी आलू, मटर आलू, पालक एंड मेथी के पराठे, मेथी की सब्जी और भी बहुत सारी सब्जियां हैं। लेकिन घर में मोस्टली क्या बनता है, गोभी आलू, गाजर आलू एंड मटर आलू, बहुत सारी ऐसी सब्जियां ना जो मतलब घर में बनती ही बनती हैं विंटर्स आते ही। वैसे भिंडी की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है ना, भिंडी की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे, वो भी देसी ही के बने हुए, ओ हो।
चलो अब खाने पीने की बातें हम कर रहे हैं, मुझे पता है कि बहुत सारी जो हमारी सुपर वुमनियां है ना, वो इस समय खाने की तैयारी कर रही है, मतलब खाना बनाने की तैयारियां कर रही हैं, और कुछ तो अभी डिसाइड ही कर रही हैं कि क्या बनाया आज समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए तो मैंने सब्जी का टॉपिक छेड़ा है ताकि आपको भी कुछ याद आ जाए और आप भी फटाक से मार्केट से सब्जी लेकर आए। चलिए अभी आप सब्जियां डिसाइड कीजिए कि क्या बनने वाला है आज। मैंने आपसे जानना चाहता है कि आप मुझे बताइए एवरीवन, आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स फेवरेट कौन सी है जिसे आप शौक से खाते हैं, एंड घर में बनी होती है तो आप मुंह नहीं बनाते हैं कि नहीं नहीं नहीं मैं ये सब्जी बिल्कुल नहीं खाऊंगा, अब इजीली प्यार से खा लेते हैं, अरे वाह आज तो मेरी फेवरेट सब्जी बनी है। तो चलिए आप ना अभी डिसाइड कीजिएगा खाने पीने की बातें, एंड मैं यहाँ पर एक अमेजिंग ट्रैक प्ले कर रही हूँ, और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है गणेश प्रसाद जी ने उजदार काठमांडू से। आज की सुबह में नमस्कार पहुँचाते हैं और ये खूबसूरत गाने की रिक्वेस्ट भेजी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं शानदार गाना।

सिर दर्द, लकवा, रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, जब ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी ना, एंड अभी भी रहते हैं ज्वाइंट फैमिली, ऐसा नहीं, लेकिन अभी बहुत कम रहते हैं साथ में, क्योंकि नौकरी की वजह से एंड स्टडी की वजह से फैमिलीज बहुत अलग अलग सिटीज में रहते हैं। अब अकेले अकेले रहते हैं। और पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, जब पूरा परिवार साथ हुआ करता था ना, तो अगर जैसे पेरेंट्स ने, मम्मा पापा ने कभी बच्चे को डांट दिया, तो वो तुरंत रोते रोते दादी जी के पास जाया करते थे, दादाजी के पास जाया करते थे। और वो उस समय दादी उनको कहते थे ना प्यार से कि बेटा आप रो मत, मैं आपकी मम्मा को डांटूंगी, उन्होंने क्यों आपको डांटा है। तो बच्चा वहाँ पर चुप हो जाता था और खुश हो जाता था। एंड कोई कहानी हमें सुननी होती थी तो हम दादा दादी नाना नानी के पास जाया करते थे। जब छुट्टियाँ होती थी तो नानी के घर जाया करते थे। एंड कुछ पेरेंट्स जो फैमिली दूर होती हैं, तो वो छुट्टियों में अपने घर पर भी आया करते थे दादा दादी जी के पास। और आज मैं दादा दादी नाना नानी की क्यों बात कर रही हूँ, बताती हूँ आपको एवरीवन। आज बहुत खूबसूरत सा डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस। और आज की ये बात उन प्यारे दादा दादी नाना नानी और हमारे घर के हर सीनियर सिटीजन के नाम, जिनकी जिनका अनुभव हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी है। उनके पास सिर्फ उम्र नहीं होती है, उनके पास कहानियाँ होती हैं, अनुभव होते हैं, और ज़िंदगी को समझने की वो सीख होती है जो किसी किताब में नहीं मिलती। तो आज थोड़ा टाइम निकालिए, उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनका हाल पूछिए, और अगर मौका मिले तो उनके साथ एक प्यारी सी फोटो भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उनके चेहरे की स्माइल घर की सबसे प्यारी खुशी होती है। और दोस्तों, रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी केयर कीजिए, और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम, यही तो उन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। देखिए, बड़े जो हमारे घर के सीनियर सिटीजन होते हैं ना, उनको ज़्यादा कुछ हमसे नहीं चाहिए होता है। बस आप उनके पास 10 मिनट्स भी बैठ जाएंगे ना, उनसे बात करेंगे, प्यार से उनका हाल चाल जानेंगे, वो उसी में खुश हो जाएंगे। तो मैं आपसे कहती हूँ कि पूरे दिन में आप थोड़ा सा वक्त उनके लिए भी निकालिएगा। मेरी ओर से सभी सीनियर सिटीजन को दिल से हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। एंड जितने भी मुझे बड़े सीनियर सिटीजन सुन रहे हैं, उन सभी को हर्जी खुशी का नमस्कार। और आप यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास खूबसूरत मैसेज भी आए, मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ, क्योंकि वक्त हो गया है 11:35। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है आसिफ जी का इटली से, एंड गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाते हैं आज की सुबह। खुशी जी, क्या हाल है आपका, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगी। आज 1 अक्टूबर है, तो मेरी तरफ से आपको, पूरी एफएम की टीम और सभी श्रोताओं को नए महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। दुआ है ये नया महीना सभी के लिए खुशियां, अच्छी सेहत और सुकून लेकर आए। अपना ख्याल रखिए और इसी तरह मुस्कुराते हुए अपना शो करती रहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर रानी नांगल से, रिहाना जी गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। नेक्स्ट मैसेज कोमल शर्मा जी का हमारे पास आए हैं, और ये कहती हैं मैम मुझे तो भिंडी बहुत पसंद है। ओहो कोमल जी, क्या बात है, ग्रीन वेजिटेबल्स। वैसे लड़कियां तो इतने नखरे नहीं दिखाती है ना, ये दिखाती हैं, मुझे पता नहीं। वैसे मैं तो घर में जो भी ग्रीन सब्जियां बनी होती हैं ना, मैं चुपचाप खा लेती हूँ। एंड कभी कभी तो मुझे खुद भी बनाना पड़ता है, तो फिर मैं नखरे नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कुकिंग करने में। और हमारे पास यहाँ पर निशा जी का मैसेज आया है, निशा कहती हैं, ये कहती हैं कि मुझे बगड़ की रोटी, मेथी पालक आलू की भुजी बहुत पसंद है। अरे वाह, क्या बात है भाई, आपने तो पूरी सर्दियों की याद दिला दी है निशा जी। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी
बस इन्होंने खुशी जी गुड मॉर्निंग लिखा है और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए। खुशी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सर। अरे वाह सर, भिंडी की सब्जी लेकर आए हैं आज लंच में और इन्होंने मुझे टिफिन खोल कर भी फोटो क्लिक करके भेज दिए है यहाँ पर। ये मैसेज हमें आज की सुबह पहुंचाते हैं मुरादाबाद सील गुप्ता से सलीम अंसारी जी, साथ में इनाया सनाया एंड चमन जी हैं और एक गाने की रिक्वेस्ट सनी भेजी आज की सुबह। आज सर हमारी पसंद का ट्रैक सुनना चाहते हैं। ओके बिल्कुल सुनवाएंगे। अगला मैसेज हमारे पास शमा जी का रामपुर से आया है और ये भी गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग डियर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया खुशी जी, हमारे घर में भी सब्जी बनती है, हम तो प्रेम से खा लेते हैं एंड एक बैंगन और पत्ता गोभी की सब्जी हमें पसंद नहीं है। ओ हो हो, हमने कहा था ना कि देखो लड़कों के नखरे होते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं कुछ और अमेजिंग ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, आप नहीं मचाएं यूं ही मुस्कुराइए। और हाँ, ये जो क्यूट सा आपका फेस है ना, इस पर स्माइल बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसका कोई पैसा खर्च नहीं होता है, तो मुस्कुराया करो ना खुलकर, क्यों इतनी कंजूसी करते हो आप? अच्छा क्या कह रहे हैं आप, कंजूसी नहीं करेंगे, खुलकर मुस्कुराएंगे? चलिए वेरी गुड, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 खुशी के साथ।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। और देखिए ना, वक्त हुआ है 11:48, कितनी जल्दी वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। जब हम अपनों के साथ होते हैं ना तो ऐसा ही होता है। हाँ, और आप सब हमारे अपने ही हैं। जब आपके साथ होती हूँ ना मैं, तो कैसे वक्त गुजरता है पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि अभी तो मैं आई थी।

दोस्तों, आज 1 अक्टूबर को एक और खूबसूरत सा दिन मनाया जाता है। आज सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय सर्वेक्षिक रक्तदान दिवस। रक्तदान दिवस एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि किसी के लिए आपका छोटा सा योगदान किसी की जिंदगी में बहुत बड़ी उम्मीद बन सकता है। रक्तदान सिर्फ एक डोनेशन नहीं, ये इंसानियत, केयर और जिम्मेदारी का खूबसूरत एहसास है। लेकिन हाँ, रक्तदान हमेशा अपनी पात्रता और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। तो आज एक अच्छी बात जरूर याद रखिए एवरीवन, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और जिंदगी बचाने का मौका मिले तो उससे खूबसूरत नेक काम और क्या होगा। तो अगर आपको भी ये अवसर मिलता है तो जरूर आप अपना ब्लड डोनेट कीजिएगा, लेकिन हाँ, डॉक्टर की सलाह से ही। और दोस्तों, राष्ट्रीय सर्वेक्षिक रक्तदान दिवस भारत में हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हमारे श्रोताओं ने इतने सारे ग्रीन ग्रीन सब्जियों के नाम लिखकर बताए हैं ना मुझे, मेरा तो दिल कर रहा है कि सभी सब्जियों को ना मिक्स करके मिक्स वेज बनाया जाए आज। वैसे मिक्स वेज भी बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है ना, उसमें बहुत सारी सब्जियां मिक्स करके उसको बनाया जाता है, वो स्वाद ही अलग आता है भाई। और हमारे पास यहाँ पर कुछ और खूबसूरत संदेश भी आए, मैं उनको भी शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर काफी लॉन्ग टाइम के बाद मैसेज आया है करोला इस्लाम नगर से कासिम अलवी जी का, और साथ में इनके दोस्त भी हैं सलीम अंसारी जी। खुशी जी, गुड मॉर्निंग, और खैरियत से हैं आप? हाँ जी सर, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। मैंने तो कहा कि आज काफी समय के बाद आपने मैसेज किया है हमें। ओके, थोड़ा काम की वजह से बिजी थे, बट कोई बात नहीं सर, देर से आए दुरुस्त आए आप, हमें अच्छा लगा आपका संदेश यहाँ पर आया है। अरे भाई, गाना सुनना चाहते मेरे दोस्त के लिए, याराना यार का ना कभी टूटेगा। आपकी दोनों की जोड़ी तो कभी टूटेगी नहीं, एंड आप हमेशा साथ में रहते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है दोस्त कम आप भाई ज्यादा लगते हैं दोनों। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड भी हैं इरशाद अंसारी जी, शहीद शारिक अली जी इरशाद जी की फ्रेंड हैं, और ये गुड मॉर्निंग विश करते हैं आज की सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, दिल से थैंक यू। और हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आया है, एंड ये मैसेज हमें पहुँचाती है आज की सुबह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नेहा जी मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाती हैं। ओह माय गॉड, रियली आज आपका बर्थडे है नेहा?

नेहा, हैप्पी बर्थडे डियर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक है। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए और आप जो भी लाइफ में चाहती हैं वो सब आपको मिल जाए। आरजी खुशी की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, अब इतना प्यारा सा आज नेहा ने क्यूट सा मैसेज भेजा है और आज उनका बर्थडे भी है, तो क्यों ना एक बर्थडे सॉन्ग हो जाए। तो चलिए एक अमेजिंग ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद लौटकर खुशी आती है। आप कहीं मत जाइए, यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6।

0: Congrats.
1: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप कैफे मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी को आपने अभी सुना, मतलब सुन रहे हैं, और ये गाना अभी आपने एंजॉय किया, हरियाणवी ट्रैक। एंड देखिए, जिस पर्सन का बर्थडे होता है ना, उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, बट मुझे लगता है कि ब्लेसिंग से ब्यूटीफुल कोई गिफ्ट नहीं होता है। एंड अनमोल विशेष जब हमें मिल जाती है ना, जब दुआएं हमें मिल जाती हैं, तो समझो सब कुछ हमें मिल गया है। और जो मतलब फरमाइशें होती हैं, जो चाहते होती हैं ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। अगर आज हमें आईफोन चाहिए तो वो मिल जाएगा, फिर कल और ख्वाहिशें हो जाएंगी। तो ये तो चलता ही रहता है ज़िंदगी में। बाकी बड़ों का प्यार और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा लाइफ में मिलती रहे ना, तो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। बाकी अपनी मेहनत भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। और अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, लेकिन जाने से पहले एक और यहाँ पर संदेश हमारे पास आए हैं, और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं दौलत बाग मुरादाबाद से अंसार हुसैन जी। एंड आज की सुबह गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं। एंड इन्होंने लिखा है, इन्होंने सब्जियों के नाम लिखे हैं कि मैम मुझे तो ये वाली सब्जियां बहुत पसंद है, लौकी, करेला। एंड इन्होंने और क्या लिखा है, अच्छा कटहल की सब्जी भी लिखी है। ओके, काशी फल, हाँ मुझे काशी फल भी बहुत पसंद है सर। और कहते हैं खुशी जी, हमें ना आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने आज की सुबह पार्टिसिपेट किया। आई होप आपने शो को एंजॉय किया होगा। और अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, लेकिन मैं आपसे मिलूंगी सी यू सून 3 से 5। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग।

0: उन्हें हर संभव मदद पहुंचा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता में सुधार करना है, साथ ही आम जनता में स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: भारत एशियाई खेल 2026 के 12वें दिन पदक तालिका को बढ़ने की उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होनी हैं। भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखुयांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
7: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो पर उपस्थित हैं डॉक्टर एके सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक चंबल फर्टिलाइजर। सर नमस्कार।
2: नमस्कार जो दिव्या जी, और आज के कार्यक्रम में कुछ आपसे खेती बाड़ी की जो बातें करेंगे।
1: आज के कार्यक्रम का विषय भी हम आप श्रोता साथियों तक पहुँचा रहे हैं। आज हम कार्यक्रम में फसल के अवशेष प्रबंधन के बारे में बहुत सी जानकारी और बहुत सी चर्चा करने वाले। आज हम जब अपने आसपास देखते

0: हैं और पर्यावरण के दृष्टि से जब हम देखते हैं तो खेती किसानी के बाद जब फसल के अवशेष के प्रबंधन की बात आती है तो उसका सीधा असर कहीं ना कहीं से हम देखें तो पर्यावरण पर पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: और अभी जिस तरीके से हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं या फिर जैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए भी ये मुद्दा एक जरूरी पहलू बनकर निकलता है।
1: जी
0: तो इसलिए मुझे लगता है कि आज की चर्चा में हम सर आपसे बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें ले पाएंगे।
1: जी जी
0: तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम के पहले विषय से, जो कि यह है कि हमारा जो भारतीय सरकार है वो अलग अलग तरह से योजनाएं लेकर आता है, पॉलिसीज लेकर आता है हमारे किसानों के लिए। भारत सरकार व उर्वरक मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम केयर्स पॉलिसी के बारे में बहुत ही जानकारी ऐसी है जो बहुत से हमारे किसानों तक नहीं पहुंच पाई, हम उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
1: जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ। भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रिया है, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आपको ऐसे समझे पीएम केयर्स के तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, एनपीके है और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं, इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे, वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे तो उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दे जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं जो पीएम केयर्स के है, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाए। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे, अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हरेक उत्पाद का जो उपयोग है उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है कि सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है। ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है, उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं हो, सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय है अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है या अन्य पोषक तत्व हैं, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है, तो वह तालिका है अब पीएम की एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं।
0: इस पॉलिसी के बारे में सर ने हमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद ही हम हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे भी हम कुछ जरूरी जानकारी लेना चाहेंगे। उर्वरक उपयोग के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें हमें बताई है, हम उसके बारे में।
1: असल में जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है उसको एक नुकसान पहुंचता है, तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च ना हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है देखी देखा हमको, जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया है तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व तो चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो अंडा भी खा सकते हैं और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीद के उसके अंदर जो जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें
0: जी।
1: क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
0: जी बिल्कुल।
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें, तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार जगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
0: कार्यक्रम में अभी अभी हमने प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुना और इसी के साथ हम कार्यक्रम के आज के विषय की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे। सर, कार्यक्रम की शुरुआत में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से फसल अवशेष का प्रबंधन सही तरीके से होना जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: आमतौर पर नागरिक जो खेती किसानी से नहीं जुड़े हैं या उन्हें पर्यावरण संरक्षण के बारे में बहुत आइडिया नहीं है तो उन्हें ये नहीं पता होगा कि फसल अवशेष प्रबंधन होता क्या है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: फसल अवशेष प्रबंधन क्या है, ये आपका सवाल है। तो इसके बारे में हम ये समझे कि जब जो भी हम फसल उगाते हैं तो उसमें एक फल होता है या उसमें अनाज होता है, वो उसका उत्पादन है। तो वो हम उसको अपने घर ले आते हैं, उसकी हमने फसल की कटाई करी तो वो हम उसका थ्रेसर के द्वारा निकालना है या हाथ से तोड़ना है तो वो हम ले आते हैं, तो वो हमारी उपज होगी, हम एक तरह से कह देते हैं। लेकिन वो उपज जिस पौधे पर लगी है वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है फसल, उसको बोलते हैं फसल अवशेष, क्योंकि जो हमने उपज ले ली उसके बाद जो शेष रहा वो फसल अवशेष है, तो उस शेष का हमें प्रबंधन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसी वैज्ञानिक मान्यता है कि अगर हम ये देखें कि कोई फसल हमने ली वो 4 महीने या 3 महीने या 5 महीने खेत में रहती है तो वो बहुत सारा पोषण खेत से लेती है और बहुत सारा पोषण वो खुद तैयार करती है जो कि सूरज की रोशनी से होता है और ऊपर की जो आबो हवा है उससे वो तैयार करते हैं। तो पौधा अगर एक तरह से हम देखें कि जो उसने पूरे अपने जीवन काल में पोषण लिया है तो उससे दो चीजों का निर्माण होता है, एक तो फसल का जो पूरा हिस्सा जो पौधा है और दूसरा जो उससे हमें उपज मिले, तो एक तो उपज और दूसरा फसल अवशेष, ये दो चीजें उसी से तैयार हुई है।
0: अच्छा।
1: तो हम ये मान के चले कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो आबोहवा के अंदर जो आबोहवा से उन्होंने पोषक तत्व लिए या जो खेत से पोषक तत्व लिए उसका ये हिस्सा है। तो फसल अवशेष को हम इस तरह से उसको संभालें या उसका इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो फिर हमारे खेत की मिट्टी में जाए और उसके साथ संगलित होकर फिर उसको और ऊर्जावान बनाए, उसको और ताकत दे, क्योंकि जो अवशेष है वो अवशेष ये हम ये ना कहते कि ये बेकार की चीज है, नहीं, के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व और उसके अंदर वो सारी जो है जो मतलब जो है एक तरह से पोषकों की खान है जो उसने ली है, और अगर वह हमने सही ढंग से उसका जो प्रबंधन किया तो वो हमारे खेत में जो मिल जाती है। अब क्या है कि हमने एक शब्द तो कह दिया प्रबंधन, प्रबंधन क्या है, प्रबंधन एक तरह से जो फसल अवशेष है हम उनको बेकार न समझकर हम उनका सही ढंग से हम अपने ही खेत में उपयोग कर ले तो वह उसका सही प्रबंधन है। अगर हम उसका सही ढंग से उपयोग न करके उसको बाहर फेंक देते हैं या उसमें कहीं हम आग लगा देते हैं तो वह प्रबंधन नहीं है, वो कुप्रबंधन है, उससे जो उसकी जो अंदर शक्ति थी जो
0: वो
1: वेस्ट होगी, जिसका हम लाभ ले सकते थे उसका लाभ न लेके हमने उसको वैसे ही हटा दिया, हटाया तो सही लेकिन जहां हम उसको फेंक रहे हैं या जहां पर हम आग लगा रहे हैं उसके साथ साथ वहां जो आसपास के जीव जंतु है या जो आसपास का जो अवशेष थे या जो पर्यावरण था उसको भी उस तापमान से नुकसान होता है। तो आवश्यक यही है कि हम जो भी फसल अवशेष है उनको अच्छे से उपयोग में लाएं, उनका सही से प्रबंधन करें। प्रबंधन कहीं कहीं पर भी ऐसा भी होता है कि जैसे हम चावल ही लें, चावल की हम फसल करते हैं तो चावल का जो अवशेष है उसका पैकिंग में इस्तेमाल होता है।
0: ओके।
1: है जी, उससे बहुत सारी चीजें भी आजकल तैयार की जाने लगी है।
0: अच्छा।
1: है जी, दूसरा ये है कि अगर हम उसको अपने खेत में मिलाए तो एक तरह से खाद के रूप में काम कर देता है। अलग अलग स्थितियां आगे के समय में आ रही है तो प्रबंधन हम इस तरह से करें जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल हो, जिससे कोई पर्यावरण को जो है लाभ ही मिले, दूसरा हम अपने खेत की जो जो मतलब उर्वरक क्षमता है उसमें भी उसका विकास कर सकते, तो फसल अवशेष प्रबंधन को हम इस तरह से समझ सकते।
0: तो फसल अवशेष प्रबंधन आपने जिस तरीके से बताया उसे सुनकर ऐसा लगा कि जैसे हमारे खेत में से जो भी वेस्ट निकल रहा है उसके सही मैनेजमेंट के साथ ही हम उससे बेटर चीजें बना सकते हैं,
1: चीजें बना सकते हैं या फिर उसका हम अपने खेत में इस्तेमाल करके अपने खेत की ताकत को अच्छा कर सकते।
0: तो सर कर कैसे सकते, मतलब यही जो है फसल अवशेष प्रबंधन जो है कैसे किया जाए,
1: कैसे किया जाए? अब वो अगर हम कोई चीज फेंक देते हैं तो इसका हम उल्टा कर देंगे, हम उसे न फेंके है। कोई चीज में हम आग लगा देते हैं तो हम इसका उल्टा कर दें, आग न लगाएं। अब आग लगाए तो क्या करें हम उसको, जैसे सपोज हमने धान काटा तो धान का काफी हिस्सा हम अपने बाहर ले आए लेकिन फिर भी उसके नीचे का हिस्सा काफी रह गया, तो हम क्या करें, हमें अगली फसल लेनी है तो धान की कटाई के बाद हम अच्छे से उस खेत में हल चलाएं और जो अवशेष है उनको एक तरह से मिट्टी में मिला दें।
0: अच्छा।
1: जब वो मिट्टी में जो मिल जाएंगे तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे हमारे हितैषी जीव होते हैं, उनका वो भोजन होता है, उसको खाएंगे और जो उन्होंने उसमें से पोषण लिया वो लिया, लेकिन बाकी जो है वो वेस्ट के रूप में खेत में ही उसको भी मिला देते हैं, उसमें और ज्यादा पोषण होता है, तो वो अच्छे तरह से खेत में मिक्स हो जाते हैं और मिट्टी का ही एक रूप हो जाते हैं, हम उसको एक भाषा में बोल देते हैं एक तरह से सड़ जाते हैं।
0: अच्छा।
1: है ना, तो वो एक तरह से मिक्स हो गया, मिट्टी का ही हिस्सा बन गया, मिट्टी थी मिट्टी में मिल गई है ना, तो उससे जो हमारे खेत की उर्वरकता है उसमें विकास होता है। अब अगर हमने ऐसा नहीं किया, खेत में वो रहे, हमने देखा यार इससे अगर मैं अगली फसल लगाऊंगा तो नुकसान होगा, तो हम उसमें कहीं की सोचते हैं चलो आग लगा देते, वह बहुत घातक है। एक तो क्या है कि जो फसल अवशेष थे वो बेकार हो गए, उनका हमारे खेत में उपयोग नहीं हो पाया। दूसरा यह है कि जब हम आग लगाते तो बहुत जो मतलब तेजी से खेत का तापमान जो बढ़ता है, और खेत का तापमान जब ऊपर उठता है तो जो खेत की मिट्टी है उसका तापमान भी ऊपर उठता है, तो उसके अंदर जो ऐसे पोषक तत्व है जो कि तापमान से उनका ह्रास हो जाता है या वो एक तरह से नष्ट हो जाते हैं, वो नष्ट होते हैं। दूसरा जो खेत के अंदर लाभदायक जीव है हमारे, जो हमारे खेती में काम आते हैं, वो भी बेचारे मर जाते हैं और धीरे धीरे खेती सख्त हो जाती है, तो उस खेत में अगले बार जब हम खेत की क्रियाएं करेंगे तो वो उतनी आसानी से नहीं होंगी, खेत कमजोर हो जाएगा। और जो हमारे पास, हम ये मान के चले कि अगर हमारे पास कोई चीज थी तो हमने उसमें आग लगा दी जो हमारे काम की, तो वो काम की चीज को हमने एक तरह से वेस्ट कर दिया। अब इसका उल्टा हम करें, जैसा मैंने बताया कि उसे अच्छे से खेत में मिलाए, अच्छे से हल चलाए, थोड़ा समय दे दे, खेत में नमी होनी चाहिए,
0: तरह से बड़ी तादाद पर कंपोस्ट पिट बनाने चाहिए।
1: हाँ, कंपोस्ट पिट आप अलग से बनाते हैं लेकिन ये खेत में ही कंपोस्ट बन गया।
0: अच्छा।
1: आपको कहीं अलग से नहीं किया। अब बात ये आती है कि जो अवशेष आप काट के ले गए और आपके घर पे इकट्ठे हो गए उनका क्या था? उनका आप ऐसे कर सकते हैं जैसा आपने अभी कहा, उसका कंपोस्ट बनाया जा सकता है, उसके कुछ आप गड्ढे जैसे बनाइए, आपके घर के आसपास जगह नहीं तो खेत के आसपास कोई एक छोटा सा टुकड़ा आप ले ले, उसमें कुछ आप जो गड्ढा बनाए उसमें वो अवशेष डाले, फिर उसमें पानी छींटे, फिर उसमें सपोज अगर आपके आसपास कहीं गोबर की खाद है तो वो आप डाल सकते हैं, या अपने खेत की जो मिट्टी उसकी एक थोड़ी हल्की लेयर डाल सकते हैं, फिर अगली लेयर फसल अवशेषों की कर दे, ऐसे करते करते उस पूरे गड्ढे को आप जो भर दे और फिर उसमें थोड़ा पानी छिटक दे, जिससे कि जैव क्रिया अच्छे से उनको नमी मिले और वो उसमें अच्छे से उनका विकास हो जाए, और फिर इसे आप बंद कर दीजिए 3-4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, और ये सड़के एक अच्छी कंपोस्ट बन जाए। अब इसमें अगर आपको लगता है कि गोबर की खाद आपके पास है उसकी आप लेयर लगा सकते हैं, वो भी उसके साथ एक बहुत अच्छी खाद बन जाएगी, तो ये दूसरा प्रबंधन हो गया, जो फसल अवशेष जो आपके खेत से बाहर ले आए थे उसके आप कंपोस्ट बना सकते। तीसरा प्रबंधन है, अगर आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जहाँ पैकिंग के लिए सामान चाहिए, वहां पर भी ये काम आती है, पैकिंग में काम आ जाती है, तो उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको चारे के रूप में भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता है।
0: अच्छा।
1: चारे के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं फसल अवशेषों को, जैसे गेहूं के हो, चने के हो, उसको भूसा होता है, चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जो खेत में छूट रहा है उसको हम खेत में ही मिला दें, और चारे से अगर ज्यादा है तो हम उसका कंपोस्ट बनाए। तो ये कुछ ऐसे है अब जो मतलब फसल अवशेष का जो करना है प्रबंधन, और इससे उल्टा क्या नहीं करना है कि हमें
0: चलाना नहीं,
1: आग नहीं लगाना है, हमने उनको हमने ऐसी जगह बेकार नहीं फेंक देना है जहां उनका कोई प्रयोग नहीं है, जहां फसल नहीं होती है वहां नहीं फेंकना है, अपने खेत का खेत में ही रख के उसको अच्छे से

0: उसका प्रबंधन करना है, जिससे कि वो खेत का ही हिस्सा एक तरह से बन जाए। ऐसा कहा जाता है कि जो फसल अवशेष है उनके अंदर भी पोषक तत्वों की, जैसे हमने फसल ली उसने अगर 100 यूनिट पोषक तत्व लिए जो आपके एक पौधे ने, तो उसमें समझ के मान के चलो अगर 25 यूनिट उसके अनाज में या फल में परिवर्तित हो गया भोजन, तो 60 से 75 यूनिट तक उस पौधे में ही रह जाता है, फसल अवशेष में रह जाता है।
1: अच्छा
0: तो आप ये समझिए उसके अंदर कितनी ज्यादा जो पौष्टिकता होती है जो हमारे खेत के काम आ सकती है, खेत की मिट्टी के काम आ सकती है, और खेत की मिट्टी अगर वो जाएगा तो वो आगे भी काम आ।
1: पर उसे जलाने से ही वो पूरा जो यूनिट है वो वेस्ट हो जाता
0: हाँ
1: है
0: बेस्ट हो
1: एनर्जी की
0: जाता
1: तरह
0: है।
1: से। बहुत ही जानकारी दी सर आपने फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी हुई। लेकिन एक बात ऐसी है जो मेरे मन में भी आ रही है और मैं जानती हूँ कि हमारे श्रोताओं के मन में भी वो
0: जी
1: बात
0: जी
1: आएगी
0: जी
1: कि हम प्रबंधन की बात करते हैं या मैनेजमेंट की बात करते हैं, तय समय होगा शायद, या तो हम खेती करने के जैसे ही फसल की कटाई हो जाती है तो
0: हाँ
1: उसके तुरंत बाद अवशेष को लेकर फिर उसका प्रबंधन करना
0: जी
1: शुरू
0: जी
1: करें, या फिर कोई दूसरा प्रोसीजर ऐसा जो हम एक सही टाइम फ्रेम के हिसाब से करें। क्योंकि जैसा आपने कहा कि उस पौधे के अवशेष में एनर्जी स्टोर है, तो वो एनर्जी हो सकता है कि उससे अगर हम सही समय पर उसे नहीं कर पाए
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: वो वेस्ट हो जाए।
0: हाँ। तो जब भी जैसे फसल अवशेष आपके यहाँ से निकल आ रहे हैं उसी समय ही उनका प्रबंधन करना चाहिए, ज्यादा लंबे समय तक उनको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि मान के चलो हमने छोड़ दिया और उसके बाद जो है धूप निकल रही है, तो धूप से भी उनके अंदर जो पोषक तत्व तो उनका ह्रास होता है, वो नष्ट होते हैं। इसके अलावा अगर रेन्स बहुत होने लगी तो वो उसका पानी उस पर पड़ेगा और वो उसके साथ जो बह के बहुत सारे पोषक तत्व चले जाएंगे। तो साथ के साथ ही प्रबंधन, चाहे उसको खेत में मिलाना है, चाहे उसकी कंपोस्ट बनानी है,
1: जी
0: जो भी करना है वो साथ के साथ ही करें, उसको ज्यादा लंबा समय न दें। अब जैसे खरीफ के हैं तो अभी तापमान भी है, ह्यूमिडिटी भी है, नमी भी है, तो उसके सड़ने में आसानी होती है। उसके बाद जैसे रबी की फसलें हैं उनमें भी जैसे कि फसल की आपने कटाई की, अगर खेत के अंदर नमी है और उसी समय आपने हल चला के उसको अंदर कर दिया तो
1: जी
0: वो ज्यादा बेहतर होगा। शर्त, और बहुत से लोग कभी कभी ऐसे करते हैं कि उसको काटा और खेत छोड़ दिया
1: अच्छा
0: और फिर जाके जब करते हैं, जब अगली बार खेत में कोई फसल है तब जाके छेदते हैं, तो वो लेट हो जाता है। उसे एक तो क्या है कि उसके फसल अवशेष है वो सूखने लगते हैं और उनके अंदर नमक की मात्रा कम होती है, और फिर जब उनको खेत में आप हल चला के वो करते मिक्स तो वो सड़ नहीं पाते अच्छे से।
1: जी
0: लेकिन अगर साथ के साथ ही करते जाते हो तो उसका अच्छा लाभ होता है। अब उसको सड़ाने के लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या करें, तो कोई भी आप जो उर्वरक आपको जो आगे चल के देना उसकी थोड़ी मात्रा आप दे सकते हैं, वो उसको सड़ाने में काम आएगा। इसके अलावा हमारा एक उत्पाद आता है सुपर राइजा के नाम से, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, वो उसके
1: जी
0: साथ डालें तो वो उसको अच्छी तरह से मिक्स करने में काम आएगा, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी और उस खेत में फसल बहुत अच्छी होगी। जी
1: सर, ये जितनी बातें आपने हमें सही समय के बारे में भी बताई, अब हमारे बहुत से ऐसे श्रोता होंगे किसान भाई हमारे जो इस बारे में जानकार हैं या उनको जागरूकता है इस बारे में, लेकिन जो आने वाले समय में नए हमारे खेती किसानी से जुड़ने वाले
0: जी
1: लोग हो
0: जी
1: या उनके परिवार के और लोग हो जिन्हें खेती किसानी के बारे में उतनी बातें नहीं पता, तो हम
0: जी
1: उन्हें किस तरीके से बता सकते हैं कि इस फसल अवशेष प्रबंधन का लाभ क्या है, तो हम
0: हाँ
1: उन्हें किस
0: बिल्कुल
1: तरीके से उससे जोड़ पाएंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो पुराने लोग हैं वो जो करते आए थे और उन्होंने उसका लाभ भी लिया। अगर हम देखें तो लंबे समय से हमारे खेतों में फसलें हो रही थी और उस समय उतनी सघन खेती नहीं होती थी, लेकिन फिर भी खेती तो होती थी,
1: जी
0: फसल उत्पादन लेते थे और अच्छा उत्पादन होता था, और बहुत सारे साधन भी हम इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसे बहुत ज्यादा उर्वरक भी प्रयोग नहीं करते थे, दवाइयां वगैरह भी ज्यादा हम प्रयोग नहीं करते, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी फसलें होती थी और जो उसमें अनाज उगता था वो काफी स्वादिष्ट होता था, उसमें ताकत होती थी,
1: पौष्टिक
0: स्वास्थ्यवर्धक
1: होता
0: होता
1: था।
0: था, पौष्टिक होता
1: जी
0: था। तो अब यह है कि लाभ क्या है इसका, लाभ यही है कि अगर पोषक तत्व तो जो फसल अवशेष में थे वो खेत में ही मिलते जाएंगे, तो वो धीरे धीरे हमारे खेत की जो ताकत कम हो रही है उसमें कमी नहीं आएगी,
1: जी
0: आएगी तो बहुत कम आएगी, और उसकी पूर्ति हम उर्वरक के द्वारा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो हमारे खेत की ताकत है वह ठीक बनी रहेगी। ताकत के साथ साथ एक और चीज होती है कि अगर आपके यहाँ पर कोई मेहमान है ना, जो आपके काम का है,
1: जी
0: जो आपके साथ हाथ बटाता है और भी सारी आपकी हेल्प करता है, तो आप उसको भूखा रखोगे क्या?
1: नहीं
0: खाना खिलाओगे आप उसको,
1: जी
0: आप उसको रुकने के लिए अच्छी जगह दोगे, उसको पूरा पर्यावरण दोगे जिससे कि वो पुष्ट रह सके,
1: हाँ
0: उसका मन अच्छा रहे और वो आपके साथ हाथ बटा सके। इसी तरह हमारे खेत में असंख्य ऐसे जीव होते हैं जो कि आंखों से नहीं दिखाई देते,
1: जी
0: लेकिन अगर वो न हो तो हम हमारे हमारे लिए खेती करना असंभव है। तो वो पुष्ट रहे तो उनको भोजन देना भी तो जरूरी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उनको वो उस तरह का पर्यावरण वहां पे होना खेत की मिट्टी के अंदर बहुत आवश्यक है जिससे कि वो जीवित रहे
1: जी
0: और उनकी संख्या में जो वृद्धि हो, वृद्धि के अलावा वृद्धि अगर बहुत ज्यादा नहीं भी होती तो उनकी संख्या उतनी बनी रहे, क्योंकि
1: हाँ
0: उनका जीवन काल होता है, वो पैदा होते हैं मरते हैं फिर पैदा होते हैं। तो वहां अगर ये फसल अवशेष ही ढंग से जाते रहे हमारे खेत में, इस्तेमाल होते रहे, खेत की मिट्टी में मिलते रहे, तो ये जो हमारे खेती के लाभकारी जीव है इनका जीवन काल अच्छे से चलेगा। जब इनका जीवन काल अच्छा रहेगा तो ये हमें खेती की जो भी क्रिया है उनमें हमें सहयोग करेंगे और हम आसानी से फसलें ले पाएंगे।
1: जी
0: इसमें मुख्य रूप से अगर आप देखें तो एक तो ये कि पोषक तत्वों की मात्रा ठीक बनी रहती है, दूसरा जो भी फसल हम रहते हैं तो वो पोषक तत्व के आधार पर नहीं रहती, उसको नमी भी चाहिए, तो नमी को रोकने की क्षमता खेत की मिट्टी के अंदर होनी चाहिए और वो जब ही होगी जब खेत के अंदर जीव होंगे और वो जो ये फसल अवशेष है या बहुत सारी चीजें हैं जो जो खेत का जैव तत्व है उसको बनाए रखेंगे। इसके अलावा खेत के अंदर हवा का संचार भी होना बहुत जरूरी है, अगर ऑक्सीजन का संचार नहीं होगा तो भी पौधों का विकास नहीं होगा, तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो आप ये देखें कि खेती का या खेत का जो खेती के अनुकूल पूरा पर्यावरण होना चाहिए उसको तैयार करने में इन जीवों का बहुत बड़ा योगदान होता है, और इस योगदान के लिए फसल अवशेष अगर खेत में ही समाहित होते रहे और अच्छे से हमने उनका प्रबंधन किया तो यह एक बहुत बड़ा लाभ हमारी खेती को होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कभी कभी हमें नहीं लगता, जैसे कि हम मान के चले कि अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा शरीर पूरा स्वस्थ है, तो हमें यही नहीं मालूम पड़ेगा कि हमारा सिर है कि नहीं है,
1: जी
0: हमारे कान है कि नहीं है,
1: जी
0: लेकिन अगर किसी कान में हमारे पेन हो जाए तो हमें हमारा पूरा ध्यान उसी कान पर
1: जी
0: रहता है,
1: बिल्कुल
0: रहता है ना।
1: हाँ
0: इसीलिए सिर दर्द हो जाए तो सिर दर्द हमें भारी लगता है, लगता है कि हमें हमारे सिर भी है ना।
1: जी
0: तो इसी तरह से जब तक खेती आसानी से हो रही है तभी हमें लगता है, लेकिन आप अगर सूक्ष्म रूप से इसका जो है अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हम पीछे हटते जा रहे हैं, और उसके लिए फसल अवशेष प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण काम होगा अगर हम इसको ढंग से करते रहे तो। खेती की जो सामान्य क्रिया है, खेत की मिट्टी के अंदर जो सामान्य क्रिया जो फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है, वो हमारी अच्छे से चलती रहे।
1: फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में आपने बहुत सी बातें बताई, बहुत
0: जी
1: अच्छी चर्चा हमारी हुई अभी तक तो। आपने लाभ के बारे में भी बताया, आपने ये बात भी बहुत अच्छी बताई कि किस तरीके से हमारा ध्यान तभी जाता है जब वो चीज हमें जरूरी लगे, मतलब खेत की तरफ भी
0: हाँ
1: अगर हम वो बात करते हैं तो। एक जरूरी बात ऐसी है कि खेती किसानी जब हमारे किसान भाई करते हैं तो फिर वो ये देखना उनको जरूरी होता है कि उनको किस चीज में फायदा हो रहा है,
0: जी
1: इकोनॉमिकली जो भी फीसिबल हो वो
0: हाँ
1: काम पहले करते हैं। लेकिन इस कारण से जब वो ये जो अवशेष है इन्हें जला देते हैं तो एक तरह से उन्हें मैनेजमेंट में उतना टाइम उतना एफर्ट लगाना नहीं
0: नहीं
1: पड़ता,
0: पड़ता है।
1: 5-10 मिनट में वो काम खत्म हो
0: जी
1: जाता है।
0: जी जी
1: लेकिन लॉन्ग टर्म में देखे तो उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ सकता है,
0: पड़ सकता है।
1: तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए।
0: हाँ बिल्कुल, देखिए आप ऐसे मान के चले कि आपने जैसे कहा 8-10 मिनट में काम तमाम और बड़ी आसानी से काम हो गया, लाभ हमने देख लिया, लेकिन आप एक चीज देखिए कि उसके लंबे समय में कितने हानिकारक परिणाम आपको मिलने वाले, और अगर ये 8-10 मिनट का काम आप भूल जाए और इसका अच्छे से प्रबंधन कर ले तो आगे के लिए आपके कितने काम सुगम होने वाले, यह आप अगर अनुमान लगा लेंगे तो मैं ये कहता हूं कि आप कभी भी फसल अवशेष प्रबंधन को पीछे नहीं रखेंगे, उसको सबसे आगे रखेंगे। इसके बारे में साथियों मैं आपको बता दूं, मैं भारतवर्ष के अनेक राज्यों में मेरा आना जाना होता है, पंजाब राज्य में भी गया, वहाँ एक बड़े अच्छे किसान है, वहाँ तो बहुत प्रगति अंशील किसान है, धान की खेती होती है और अक्सर वहाँ आग लगाते हैं लोग, तो कुछ लोग हैं उन्होंने इसमें संज्ञान लिया, उन्होंने अवशेष प्रबंधन किया, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी फसलें ली, ये उनका अपना अनुभव था, मैंने उनसे ऐसे अपनी बात उनके मुंह में नहीं रखी, उन्होंने खुद बताया कि नहीं साहब बहुत फर्क पड़ता है, हम आगे से इसको करेंगे। तो ये मेरा अनुरोध है कि इसको शॉर्ट टर्म में न लें, लघु अवधि में न लें, दीर्घ अवधि में लें। अब आप अगर हम देखें बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं, कभी कभी होते हैं, अब जैसे रात होती है तो आप कहो कि रात के 1 बजे सूरज निकल आए, नहीं, समय पे निकलता है, सारा चक्र ठीक से चलता रहता है। तो खेती कोई इंडस्ट्री उद्योग नहीं है कि जिसमें एक मशीन आपने चलाई और काम हो गया। ये जीवंत है पूरा, यह अनेक जीव है और उनके द्वारा ही संचालित होती है, प्रकृति इसको देखती है। तो आप अगर उनको समझ के उनके हिसाब से खेती करेंगे तो जीवन और खेती हमारी सुखद होगी,
1: जी
0: लंबे समय के लिए लाभकारी होगी और हम अगली पीढ़ियों को एक स्वस्थ खेती दे जाएंगे। और इसके अलावा साथियों, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम जो भी अनाज उगाते हैं वो कहीं ना कहीं कोई इसका उपयोग करता है।
1: जी
0: आपने जैसे 100 क्विंटल धान उगाया या गेहूं उगाया, आप कितना खाएंगे? 8 8 क्विंटल रख लेंगे घर के लिए, 5 क्विंटल रख लेंगे, बाकी क्या होगा? बिकेगा। बिकने के बाद कोई ना कोई उसको खाता है। अगर उसको पौष्टिक भोजन आपने नहीं दिया, आपको पैसा मिल गया, कहीं कहीं आपका रोल है उस, और आप अगर उस रोल को देखेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूरे हम एक दूसरे से जुड़े हुए, पूरी मानवता जुड़ी हुई। तो हमारी ओर से प्रयास ये हो कि हम ऐसी फसलें या ऐसा अनाज उगा के लोगों को दें जिसका कि हमें पैसा मिलता है, जो पौष्टिक हो, पुष्ट करने वाला हो। और वो तभी होगा जबकि हमारी खेती, हमारे खेत जो ताकतवर होंगे, उसका पर्यावरण अच्छा होगा, और वो जब ही होगा जब हम फसल अवशेषों का अच्छे से प्रबंधन करें।
1: सर, खेती किसानी के साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में भी आपने हमारे किसान भाइयों पर एक बहुत ही जरूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। इसी के साथ ही आप जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से ये करना कितना जरूरी है, वो आज के समय में वर्तमान
0: हाँ, आज के समय में देखो साथियों, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी खेती का आकार, जो खेत की जो साइज था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आबादी हमारी अधिक हो रही है, शहरीकरण भी हो रहा है, मकान भी बन रहे हैं, गांव भी फैल रहे हैं आजकल। तो
1: जी
0: क्षेत्रफल कम हो रहा है, लेकिन हमें ज्यादा अनाज उत्पादन की जरूरत है। तो ज्यादा अनाज उत्पादन लेने के लिए हमें अपने खेतों को स्वस्थ रखना पड़ेगा।
1: हाँ
0: अगर वो नहीं होंगे तो हमें उतना उत्पादन नहीं मिलेगा। आजकल जो हम फसलें उगा रहे हैं उनके जो बीज है, हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, अधिक उत्पादन वाले आ रहे हैं, उनको ज्यादा पोषण की जरूरत है। और अगर हमारा खेत कमजोर है तो वो पोषण हम कहाँ से देंगे? स्वाभाविक है हम देखेंगे दुकान की तरफ कि उर्वरक ले आए। अब उर्वरक के बारे में हमें देखना है कि ये रासायनिक चीजें हैं, और बहुत से उर्वरक हमें बाहर से आयातित करने होते हैं और देशों से लाते, काफी महंगे मिलते हैं, उसमें आपका पैसा बहुत खर्च होता है। तो आवश्यक यही है कि हम अपने संसाधनों को न बिगाड़ें, उनका समुचित उपयोग करें। अगर हम उनका उपयोग करेंगे तो आज की जो खेती में हमें ज्यादा पोषक तत्वों की जो मांग है, हम उसकी पूर्ति कर पाएंगे
1: जी,
0: और एक अच्छा उत्पादन आने वाले समय में भी लेते रहेंगे।
1: तो ये कुछ खास बातें थी फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी हुई जो हमारे किसान भाइयों तक हम पहुंचाने के लिए सफल रहे हैं हमारे सर के साथ। आपकी बात हो रही थी दिव्या और चंबल फर्टिलाइजर्स के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर AK सिंह सर के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के
0: आपका भी
1: लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, आपने मुझे ये मौका दिया अपनी बात कहने का। और मैं आशा करता हूं कि सभी किसान भाई इसको थोड़ा समझ के इससे उपयोग में लाएंगे और
1: जी,
0: लाभ लेंगे।
1: कार्यक्रम सुनने के लिए हमारे सभी किसान भाई और श्रोता साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत से लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूं। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना?
1: बिल्कुल। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप संवर जाता है।
0: बात तो सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी?
1: अरे मतलब बच्चों का भविष्य स्कूल से भी पहले शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए।
1: अच्छा तो क्या जन्म के बाद?
0: नहीं, उससे भी पहले।
1: उससे भी पहले? अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रही हैं। आखिर कब से?
0: विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चों को भी जीवन की मजबूत शुरुआत मिलती है।
1: यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं बल्कि माँ के स्वस्थ और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की ओर ले जाती है। हम उस मजबूत

0: मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं, जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है। और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर इतना जोर दिया जा रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा। हाल ही में समापन हुआ पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर से नहीं बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।
0: यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है।
1: बिल्कुल। और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने सिहतिया सिंह और हमारी साथी टीकन देवी जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आरजे रीना जी। आप सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम।
1: सिहतिया जी, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण है?
2: बिल्कुल महत्वपूर्ण है आर्चरीना, और यह केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोज संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है और वह बीमार भी कम पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना नहीं रहता, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसी के शरीर से पहुँचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी ही बेहतर होगी।
0: यानी माँ जो खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुँचता है।
2: बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसके शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसका मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वस्थ और पोषण पर ही निर्भर करता है।
0: यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
2: बिल्कुल सही कहा टीकन जी।
1: सिहतिया जी, आपने पोषण तत्वों की बात की। आजकल एक और शब्द बहुत सुनने को मिलता है, अनीमिया, यानी खून की कमी। आखिर यह समस्या कितनी गंभीर है?
2: आर्चरीना, ये समस्या बहुत गंभीर है। सबसे बड़ी चिंता है इस बात की है कि यह महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता है कि उनमें खून की कमी है। वे कमजोरी, थकान या चक्कर आने को सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता और इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।
0: इसीलिए उन्हें हमेशा थकान रहती है।
2: बिल्कुल आरजे, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिलाओं में हो तो जोखिम और भी बढ़ जाता है।
0: किस तरह का जोखिम?
2: बिल्कुल आर्जेरीना, समय से पहले प्रसव हो सकता है, कम वजन वाले बच्चों का जन्म हो सकता है और प्रसव के समय अगर ज्यादा रक्त स्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
1: अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोर महसूस करना।
0: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरनाक बन सकता है। अगर माँ अनीमिक है तो बच्चे में भी आयरन की कमी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
1: यानी इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं बच्चा भी चुकाता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियां, नियमित जांच और पोषण संबंधित जानकारियां पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
1: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए, क्या तैयारी उससे पहले भी जरूरी है?
2: बिल्कुल, स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है, उसे आयरन की कमी नहीं है तो भविष्य में गर्भावस्था में अधिक सुरक्षित रहती है।
0: यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है।
2: बिल्कुल आपने सही कहा।
1: हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था। क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध है?
2: बिल्कुल, बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फॉलिक एसिड, आयोडीन और DH जैसे पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले हजार दिन। आखिर इसका मतलब क्या है?
0: पहले हजार दिन यानी गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल का होने तक का समय। विशेषज्ञ इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौरा मानते हैं। इस दौरान बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेज विकास होता है। अगर इस समय पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले, बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है।
2: टीकन जी, अब हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
0: बच्चे के जन्म से पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना। बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, बच्चे के लिए पहले प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है। ये उसे कई संक्रमण से बचाने में मदद करता है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, गुट्टी या कोई दूसरा भोजन देने की जरूरत नहीं होती।
1: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए,
2: बिल्कुल आरजे, तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, फल, अंडे और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चे के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए,
2: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू कर देना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जी, मौसमी फल, अंडा, जहाँ परिवार खाता हो, दही और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में करें, धीरे धीरे बच्चे की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता को बढ़ाया जाए।
1: यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं। अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिलता है।
0: बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खाना, जबकि सच ये है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही और अंडे जैसे खाद्य पदार्थ भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात यह है कि भोजन संतुलित हो और समय पर दिया जाए।
1: सेहतिया जी, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ हो और पोषित हो।
2: बिल्कुल, अक्सर हम बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह याद रखना हमें चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं।
1: और शायद इसी वजह से कहा जाता है, अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बना रहे होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों को सबसे अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है हम ये सोच बदलें। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वह अपने बच्चे, परिवार और समाज की बेहतर देखभाल कर पाएगी।
1: और इसमें परिवार की बाकी सदस्यों की भी बराबरी जिम्मेदारी है। पति, सास, ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें, तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है।
2: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती है।
1: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे रीना। जब सही जानकारी और सही व्यवहार के साथ आते हैं तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं।
0: श्रोताओं, आज की चर्चा से हमने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों का अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन फॉलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए बहुत जरूरी है।
1: हमने ये भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।
0: और मैं सभी बहनों और परिवार से यही कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत को कभी नजरअंदाज ना करें, समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
2: अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता, A&M, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है।
1: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से बस इतना ही याद रहे, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा।
0: इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ।
2: धन्यवाद RJ। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें।
0: धन्यवाद, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पर समाप्त होता है और जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो लाभ सही।
1: तो श्रोताओं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बने रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
2: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, अपना टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ खराब कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त हैं और एक और दोस्त हैं, तो मतलब कुल मिला के 4 लोगों के टॉपिक पे 4 लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
7: मैं बहुत बढ़िया हूँ RJ, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
2: क्या बात है, बहुत बढ़िया। नया जब हम आप लोग FM पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, मतलब कुछ नया है।
7: कुछ नया है
2: बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को।
7: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल
8: जी
7: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणवश, और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं।
8: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो, जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट। और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी थोड़ा हेलो हाय करो इस प्रोग्राम में, हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है।
9: थैंक यू सो मच आरजी आनंद
8: जी,
9: मैं कुमकुम आप सबकी प्यारी दोस्त फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में
8: जिसका नाम है सोच बदलो,
9: जिसका नाम है सोच बदलो।
8: रीना जी आप कुछ बोलेंगी?
10: हेलो एवरीवन, मैं आरजी रीना, आप सभी मुझे जानते हैं, और हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर।
8: बिल्कुल जी, तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले?
7: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और चार लोग क्या कहेंगे ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। चार लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है,
8: करेक्ट।
7: वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है, वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है, वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाए, वो चार लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं, वो चार लोग तभी क्यों आते हैं, तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं। उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
8: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन चार लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जब जब ये चीजें होती हैं तो ये चार लोग गायब होते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग।
7: उन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो चार लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को घर नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप चार लोगों की मत सुनिए। चार लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके
8: एडवाइस
7: कर रहे हैं कि, तब सुनिए आप उनकी। हमारे हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की। हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसे रोजगार दिला रहे हैं तब सुनिए आप उनकी।
8: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं, और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है। मुझे भी ऐसे लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खुद की खुद ही भूल जाते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांग अड़ाते हैं, है ना। बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं, मुद्दे की बात यह है। क्यों कुमकुम, कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
9: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
8: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चार लोगों के बारे में?
10: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोगों की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
8: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे लोग? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कई बार लोगों के चक्कर में हम जो चीज हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, और इसी पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो शाली जी, क्या मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है ऐसा कि लोगों को सोच बदलने की जरूरत है, आपको क्या लगता है, क्या हमें इन चालों के बारे में सोचना चाहिए या अपना फ्यूचर अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए?
1: मेरा क्या सभी का मानना यही होना चाहिए कि चार लोगों को साइड करो, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करो। क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा, पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
1: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है कुछ।

0: कहेंगे।
1: ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलों में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है? चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं, हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता। तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है, लेकिन जब आप परेशान होंगे आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा।
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना हम ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते हैं जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
2: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना, बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पे लोगों के क्या कमेंट। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगी?
2: मैं तो इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
2: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके, फेस
2: मतलब जब से मेरी जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब इसका
2: और मैं जब सुनी ही नहीं हूँ तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी। और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलो का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ। जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम? जरूरी है ना?
1: मैं एक बात कहती हूँ,
0: सुनो प्लीज।
1: तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं, जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
0: करेक्ट करेक्ट,
3: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे, बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
0: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा आगे बोलो
3: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: करेक्ट, सही कहा है।
1: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
2: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा, चार लोग
1: अच्छे भी होते हैं,
2: चार लोग केवल निगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होते हैं।
0: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
1: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: वो आसमान छूती हैं। तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए, जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
1: रीना,
2: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। मोटिवेट करो आप उनको, ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
1: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी। मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा। जो डर गए लोगों की सोच से, उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं, तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव भी चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं हम जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू कुमकुम, थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुनते रहिए
3: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
1: क्या बात है,
2: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
1: चलिए गाइस, बाय बाय।

0: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और मेरे साथ आरजे खुशी है। और आज हम आप सभी के लिए एक बेहद खास इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, यानी कि ट्रैफिक नियम के बारे में। यानी कि डीपली हमें पता होना चाहिए, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो हर चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं पूरे डिटेल में। तो जरा सोचिए, लाल बत्ती हुई, आपने ब्रेक लगाया लेकिन गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से भी आगे निकाल दी। आपको लग सकता है कि भाई मैंने तो लाल बत्ती पर ही गाड़ी रोक दी, लेकिन असली सवाल है कहाँ रोक। सड़क पर बनी सफेद लाइन यानी स्टॉप लाइन सिर्फ सड़क की सजावट नहीं होती, सिग्नल पर गाड़ी को उस लाइन के पीछे रोकना होता है। लाइन के आगे निकाल कर रोकने से पैदल चलने वालों को रास्ते में भी परेशानी हो सकती है और ट्रैफिक का अनुशासन भी बिगड़ सकता है। अगर अगली बार आप गाड़ी रोके तो सिर्फ लाल बत्ती मत देखिए, अपने आगे की सड़क पर बनी सफेद लाइन जरूर देखिए, क्योंकि उसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और याद रखिए, सिग्नल का सम्मान सिर्फ रुकने में नहीं है, सही जगह रोकने में होती है। हाँ भैया, तुम किस ख्याल में खो रही हो?
3: नहीं, मैं किसी ख्यालों में नहीं खोई हुई हूँ। एक्चुअली आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, तो मुझे लगा कि हाँ ये बहुत अहम है, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। और सड़क पर बनी पीली लाइन देखकर क्या आप कभी सोचते हैं कि ये आखिर बनाई क्यों गई है? दरअसल रोड मार्केटिंग का हर निशान अपने अंदर एक संदेश रखता है। पीली लाइन कई जगहों पर इस बात का संकेत होती है कि वहाँ रुकना, पार करना या लाइन को पार करना प्रतिबंध हो सकता है, और इसका मतलब उस सड़क की स्थानीय व्यवस्था और लगे हुए संकेतों के हिसाब से समझाना जरूरी है। हम अक्सर ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं लेकिन सड़क पर बनी लाइनों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ड्राइविंग नियमों में रोड मार्किंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो अगली बार सड़क पर पीली लाइन दिखे तो उसे सिर्फ रंग की लाइन समझकर आगे मत बढ़ जाइएगा। सड़क बोलती है, बस हमें उसकी भाषा समझ आनी चाहिए।
2: तो अब हम बात करेंगे, मोबाइल हाथ में है तो ध्यान सड़क से हट चुका है, यानी कि गाड़ी चलाते समय एक कॉल, एक मैसेज, एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और बस 2 सेकंड के लिए नजर मोबाइल पर गई। लेकिन सड़क पर 2 सेकंड भी बहुत होते हैं। ड्राइविंग के समय मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ बात करने तक सीमित नहीं है। मैसेज पढ़ना, वीडियो देखना, स्क्रीन पर कुछ ढूंढना या मोबाइल की वजह से सड़क से ध्यान हटाना, ये सब आपकी प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। कई लोग कहते हैं, मैं तो फोन नीचे रखकर चला रहा था, लेकिन अगर ध्यान फोन पर है तो ध्यान सड़क पर पूरा कहाँ है? इसीलिए गाड़ी चलाते समय फोन को हाथ से दूर रखिए। जरूरी कॉल है तो सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकिए। देखिए, अगर फोन का कोई नोटिफिकेशन है तो उसे बाद में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन सड़क पर लिया गया गलत फैसला कभी वापस नहीं आता है, तो इस चीज का भी आपने पूरा ध्यान रखना है।
3: और हाँ दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि हेलमेट पहन लिया अब हमारा काम खत्म? लेकिन हेलमेट सिर्फ रखना और हेलमेट को सही तरीके से पहनना 2 अलग बात होती है। अगर हेलमेट का स्ट्रैप खुला है या ठीक से बंधा नहीं है तो दुर्घटना के समय हेलमेट अपनी जगह से हट सकता है। आपने हेलमेट पहना जरूर है लेकिन उसका सुरक्षा फायदा कम हो सकता है। और एक बात, सिर्फ दिखाने के लिए हेलमेट पहनना और सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना अलग बात है। बाइक या स्कूटी पर बैठने से पहले 3 चीजें चेक करें, हेलमेट सही से सर पर सही फिट है और स्ट्रैप लॉक है। हेलमेट सिर्फ सिर पर नहीं, जिम्मेदारी के साथ पहनना जाता है एवरीवन, उसके ये मत सोचे कि बस इसे अब कुछ देर के लिए तो हमें जाना है तो पहन लेते हैं, सर पे लगा लेते हैं, लेकिन नहीं एवरीवन, ये हमारी बहुत सुरक्षा करता है। तो कभी भी कहीं भी जाएं हेलमेट जरूर पहने, और जब आपके पीछे भी बैठे हैं उनको भी हेलमेट दीजिए।
2: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, और साथ ही साथ एक बात भी तुमने देखी होगी कि जब पास में जाना होता है तो बोलते हैं कि यार यार पास में जाना है, चल आ जाओ एक ही बाइक पर, तीन तीन चल लेते हैं, लेकिन
3: लोग जाते भी हैं ऐसे लोग, मैं हमने बहुत लोग देखे हैं।
2: बिल्कुल, अरे वो तो अभी भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत में दो पहिए वाहन पर ट्रिपल राइडिंग सिर्फ एक छोटी सी आदत नहीं है, अतिरिक्त व्यक्ति बैठने से बाइक का संतुलन, मोड़ लेने की क्षमता और अचानक ब्रेक लगने की स्थिति प्रभावित हो सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर तीन लोग बाइक पर बैठे हैं और रास्ता छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दुर्घटना दूरी देखकर नहीं आती। इसीलिए बाइक हो या स्कूटर, जितनी सवारी के लिए वाहन बना है उतनी ही सवारी रखे, और माता पिता अपने बच्चों को भी यही समझाइए, दो मिनट बचने के चक्कर में तीन लोगों की जिंदगी खतरे में मत डालिए। देखिए पता तो हर किसी को होता है, लेकिन इस चीज को फॉलो हम नहीं करते हैं। हम बाइक हो स्कूटी हो तीन तीन चार चार बैठकर चले जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी एकदम ब्रेक भी नहीं लगता है और इस गाड़ी को आप एकदम मोड़ भी नहीं पाते हो। इसीलिए सिर्फ दो ही बैठे और तभी अपनी यात्रा को सुरक्षित रखें।
3: अब कार में बैठे ही ना सबसे पहले कौन सीट बेल्ट लगाता है? अक्सर ड्राइवर। लेकिन क्या पीछे बैठे व्यक्ति को सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है? सड़क दुर्घटना में चोट सिर्फ ड्राइवर को नहीं लगती, पीछे बैठे यात्रियों को भी अचानक झटका लग सकता है। इसीलिए कार में सफर करते समय सुरक्षा सिर्फ आगे बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, परिवार के साथ जा रहे हो तो बच्चों और पीछे बैठे यात्रियों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अगली बार कार में बैठें तो एक छोटा सा नियम बना लीजिएगा, गाड़ी चलेगी तभी जब सभी अपनी सुरक्षा जांच लेंगे। सीट बेल्ट कोई सिर्फ चालान से बचाने की चीज नहीं है, ये सफर को सुरक्षित बनाने की आदत है। तो एवरीवन इस हैबिट को, इस गुड हैबिट को जरूर फॉलो कीजिए।
2: क्योंकि जब भी आप गाड़ी में बैठते हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाना होता है, जो पीछे बैठे हुए हैं उनको भी जरूर लगाना चाहिए, और साथ ही साथ एम्बुलेंस पीछे से आ रही हो तो उसको रास्ता कैसे दे, क्योंकि उसको रास्ता देना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले घबराना नहीं है और अचानक ब्रेक भी नहीं लगाना है, अपनी स्थिति देखकर सुरक्षित तरीके से रास्ता देना है। कई बार हम एम्बुलेंस को रास्ता देने की कोशिश में दूसरी गाड़ियों के बीच फंस जाते हैं, इसीलिए जरूरी है कि ड्राइवर आसपास की गाड़ियों को देखकर सुरक्षित तरीके से जगह बनाए। याद रखिए एम्बुलेंस में बैठा व्यक्ति किसी का अपना है, किसी का पिता है, माँ, बच्चा या भाई हो सकता है। कभी कभी हमारे लिए सड़क पर सिर्फ एक वाहन होता है, लेकिन उनके लिए वही रास्ता जिंदगी और मौत के बीच का रास्ता हो सकता है। इसीलिए रास्ता दीजिए और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़िए। घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एक अच्छे से ड्राइविंग करना है और आसपास आपने देखना है तभी गाड़ी पार करना है। बीच में ये नहीं कि आपने जाके एकदम लगा दिया फिर आपको बाद में दिक्कत आए, तो वो चीज भी देखना होता है।
3: दोस्तों रात में गाड़ी चलाते समय सामने से अचानक तेज सफेद रोशनी आई और कुछ सेकंड के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, ये हाई बीम की रोशनी हो सकती है। हाई बीम का गलत इस्तेमाल सामने से आने वाले ड्राइवर की आंखों पर तीर चमक डाल सकता है और उसे सड़क देखने में परेशानी हो सकती है। खासकर रात में सामने से वाहन आ रहा हो तो ड्राइवर को अपनी लाइट का इस्तेमाल परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। याद रखिए एवरीवन, सड़क पर सबसे तेज रोशनी दिखाना मकसद नहीं है, सही रोशनी में सुरक्षित चलना मकसद है। इसीलिए रात में अपनी हेडलाइट को सिर्फ ज्यादा उजाला समझकर नहीं, जिम्मेदारी समझकर इस्तेमाल करें।
2: तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट है इसी में, यानी कि छोटी सी चीज है। कुछ लोग गाड़ी के अंदर जगह बनाने या सजावट के लिए मिरर को ऐसे दिशा में मोड़ देते हैं कि पीछे का रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता है। अब सोचिए पीछे से कौन आ रहा है, किस वाहन की स्पीड क्या है और कब लेन बदलना सुरक्षित है। अगर पीछे का दृश्य ही साफ नहीं दिखाई देता तो फैसला कैसे लेंगे? रियर व्यू मिरर का उद्देश्य पीछे की स्थिति को देखने में मदद करता है, इसीलिए गाड़ी चलाने से पहले मिरर को सही पोजीशन में सेट करें। सामने सड़क देखना जरूरी है, लेकिन सुरक्षित ड्राइविंग में पीछे भी खबर रखना उतना ही जरूरी होता है। तो इस चीज का भी आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और फिर कनेक्ट होते हैं आप सभी से और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना है, रेडियो की जो सुई है वो बिल्कुल भी नहीं आपने घुमानी है, वरना बहुत सी चीजें आप मिस कर जाएंगे क्योंकि बातें यहाँ पर होती है। और अभी ट्रैफिक के बारे में, जो कि हमें अक्सर पता होते हुए भी हम गलतियां कर जाते हैं और कभी कभी हमें पता नहीं होता है, तो ये चीजें आपको यही मिलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड रहिए, ढेर सारी बातों के साथ एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

0: गाड़ी लगाई है। यही 2 मिनट कभी कभी ना पूरी रास्ते का ट्रैफिक रोक देता है। सड़क के किनारे ऐसी जगह गाड़ी खड़ी कर देना जहां दूसरे वाहनों या पैदल लोगों का रास्ता बाधित हो रहा हो, सिर्फ आपकी सुविधा का मामला नहीं है। इससे एम्बुलेंस, स्कूल वाहन और दूसरे वाहन भी प्रभावित हो सकते हैं। पार्किंग करते समय सिर्फ ये मत देखिएगा कि आपकी गाड़ी फिट हो रही है या नहीं, ये भी देखिए कि आपकी गाड़ी से सड़क पर चल रहे बाकी लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। आपकी गाड़ी की जगह जरूरी है लेकिन सड़क सबकी है, तो सबके बारे में सोचिए, सबका ख्याल रखिए और सही जगह गाड़ी को पार्क कीजिए।
1: और देखिए, आपने सड़क पर देखा भी होगा सफेद पट्टियां दिखाई देती है हर किसी को और हम सोचते हैं बस ये जेब्रा क्रॉसिंग है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं? क्या एक्चुअल में हमें इसके बारे में पता है? नहीं पता है तो अब पता लग जाएगा आपको। आराम से बस आप सुनते रहिए हमारा रेडियो। जेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए निर्धारित स्थानों में से एक है। ड्राइविंग

0: हिस्सा है और उनका भी हमें ध्यान रखना होता है।
1: रेलवे क्रॉसिंग पर जल्दी किस बात की है? रेलवे क्रॉसिंग पर गेट बंद है और ट्रेन आने वाली है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं बस बाइक निकाल लेते हैं, यही जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है। साथियों, जहां रेलवे क्रॉसिंग पर गेट, सिग्नल या सुरक्षा व्यवस्था हो, वहां उसके निर्देशों का पालन करना जरूरी है। और हाँ, जहां अनग्रांडेड रेलवे क्रॉसिंग हो, वहां ड्राइवर की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ट्रैक पार करने से पहले पूरी तरह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई ट्रेन नहीं आ रही है। याद रखें, ट्रेन आपके वाहन के मुकाबले बहुत भारी और तेज होती है। एक गलत अनुमान का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। रेलवे क्रॉसिंग पर एक मिनट रुकना बेहतर है, जिंदगी भर का पछतावे से ज्यादा अच्छा है।
0: और बहुत सी जगह और आप देखते भी हैं, जब बाहर जाते हैं ट्रैफिक में होते हैं, यानी कि ओवरटेक करना है, तो सिर्फ हॉर्न काफी नहीं होता है। सामने वाली गाड़ी धीमी है और आपको जल्दी है, आपने हॉर्न बजाया और निकल गए। लेकिन ओवरट्रैकिंग सिर्फ हॉर्न बजाने का नाम नहीं है। ओवरट्रैक करने से पहले सामने का रास्ता, पीछे का ट्रैफिक, सड़क स्थिति और सामने से आने वाले वाहन को देखना जरूरी है। ऐसी जगहों पर ओवरटेक करना खास तौर पर खतरनाक हो सकता है, जहां दृश्य साफ ना हो। और सबसे जरूरी बात, दूसरे वाहन को अचानक काटकर अपनी लेन में वापस आना चाहिए। कुछ सेकंड के जल्दबाजी आपको आगे तो पहुंचा सकती है, लेकिन सुरक्षित तरीके से पहुंचना ज्यादा जरूरी होता है। इस किस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। और कभी कभी सब ओवरटेक करने की बहुत कोशिश करते हैं, कभी कभी क्या बहुत से तो करते ही हैं, तो इसीलिए इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, अपने और अपने पीछे वालों का भी, गाड़ियों का भी ध्यान रखना होता है।
1: अब आपने बात की, ये ओवरटेक की बात की थी ना आपने, आप अपनी लाइन में चल रहे हैं और अचानक से दूसरी लाइन में चले गए। आपको रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन पीछे वाला ड्राइवर आपके मन की बात कैसे जानेगा? यही वजह है कि लाइन बदलते समय इंडिकेटर का इस्तेमाल करना जरूरी है। इंडिकेटर दूसरे ड्राइवर को आपके इरादे का संकेत देता है, लेकिन सिर्फ इंडिकेटर लगाना ही काफी नहीं है। मिनर देखकर और आसपास के ट्रैफिक सिचुएशन समझकर ही लाइन क्रॉस करें, क्योंकि इंडिकेटर ये नहीं कहता कि अब मैं बिना देखे मुड़ जाऊं। वो सिर्फ कहता है कि मैं दिशा बदलने वाला हूँ, कृपया ध्यान दीजिए। इसीलिए इंडिकेटर लगाइए, मिनर देखिए और फिर सुरक्षित तरीके से लाइन चेंज कीजिएगा।
0: और कभी कभी हम इतने जल्दबाजी में होते हैं, इतने जल्दी में होते हैं ना, कि शॉर्टकट कर लेते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट नहीं होता है, खतरा भी हो सकता है। इस चीज का भी पूरा पूरा अपने ध्यान रखना है। सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा है और आगे तंदूरी है, और किसी ने बाइक गलत दिशा में निकाल दी, उसे लगा कि दो मिनट बच गए, लेकिन रॉन्ग साइड ड्राइविंग में सामने से आने वाले वाहन के साथ आमने सामने टकराने का खतरा बढ़ सकता है। खासकर रात या मोड़ वाली सड़क पर सामने से आने वाला वाहन आपको समय पर देख भी ना पाए। गलत दिशा में चलाना सिर्फ ट्रैफिक नियम तोड़ना नहीं है, दूसरे लोगों को भी अचानक खतरे में डालना होता है। इसीलिए चाहे रास्ता थोड़ा लंबा हो जाए, सही दिशा में चलाइए। शॉर्टकट अगर सुरक्षित नहीं है तो वो शॉर्टकट नहीं ले, क्योंकि वो रिक्सी हो सकता है आपके लिए। बहुत से करते भी इस काम को भैया कि चलो शॉर्टकट करना है, कर लेते हैं यहीं से, लेकिन इस ये चीज नहीं करना है आपने, इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है।
1: आगे वाली गाड़ी से दूरी क्यों जरूरी है, मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। आगे वाली गाड़ी से आपकी दूरी सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आपको उसका नंबर प्लेट दिखाई देता रहे। असल में सड़क पर अचानक कुछ भी हो सकता है। आगे वाली गाड़ी अचानक ब्रेक लगा सकती है, कोई पैदल व्यक्ति सामने आ सकता है, या सड़क पर कोई बाधा आ सकती है। अगर आपने बिल्कुल पीछे चिपकाकर गाड़ी चला रखी है तो आपके पास रिटेक का समय बहुत कम होगा। इसीलिए ट्रैफिक चाहे कम हो या ज्यादा, आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त सुरक्षित दूरियां रखना समझदारी है। गाड़ी चलाना सिर्फ आगे देखना नहीं है, आगे क्या अचानक हो सकता है उसके लिए तैयार रहना भी जरूरी है।
0: और हाँ, स्पीड लिमिट को सलाह समझना भारी पड़ सकता है। सड़क खाली है, मौसम अच्छा है और ड्राइवर सोचता है आज थोड़ा तेज चला लेता हूँ, क्या ही जा रहा है, क्योंकि सड़क भी खाली है। लेकिन सड़क खाली होने का मतलब ये नहीं कि स्पीड लिमिट खत्म हो जाए। गति सीमा सड़क ट्रैफिक आसपास के क्षेत्र और सुरक्षा को ध्यान में रखकर तय की जाती है। स्कूल, बाजार, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मोड़ वाली सड़क पर खासकर सावधानी

0: रखनी बहुत जरूरी है। तो गाड़ी चलाने से रिएक्शन टाइम कम हो सकता है और अचानक सामने आई स्थिति में वाहन रोकना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए स्पीड का मजा लेना है तो सुरक्षित तरीके से ले। सड़क रेसिंग ट्रैक नहीं है, यहाँ आपके साथ दूसरे लोगों की जिंदगी भी चल रही है, इसीलिए अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना है।
1: हमारे शहरों में हॉर्न की आवाज इतनी आम है कि कई बार लोग बिना जरूरत के भी हॉर्न बजाते रहते हैं, लेकिन हॉर्न का इस्तेमाल दूसरी रोड यूजर को सावधान करने के लिए होना चाहिए, गुस्सा निकालने के लिए नहीं। एवरीवन, खासकर साइलेंस जोन या अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आसपास अनावश्यक हॉर्न दूसरों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आगे गाड़ी चल रही है तो हर 2 सेकंड में हॉर्न बजाने से सड़क खाली नहीं हो जाएगी। हॉर्न आपकी आवाज है, गुस्सा नहीं। जरूरत हो तभी इस्तेमाल करें और सड़क पर दूसरों की शांति का भी सम्मान करें। मैंने देखा है कि कुछ लोग ट्रैफिक में बार बार हॉर्न बजाए जाते हैं, खुद तो वो होते ही इरिटेट, लेकिन सामने वाले पर्सन को भी कर देते हैं।
0: कुछ को मजा भी आता,
1: लेकिन मुझे
0: मजे के चक्कर में बजाते हैं वो।
1: ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है। एंड प्लीज एवरीवन, अगर आप हमें सुन रहे हैं ना, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा और बाकी मुस्कुराते रहिए, केयरफुली ड्राइविंग कीजिए।
0: मुझे लगता है कि वो हॉर्न नहीं बजाते हैं, शादी में ढोलक बजाते हैं ना, उसका काम करते हैं। और अब देखिए, मौसम जैसे खराब होए तो उस समय कैसे स्पीड रखनी चाहिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। यानी कि बारिश शुरू होते ही सड़क का रंग बदल जाता है, लेकिन क्या हम अपनी ड्राइविंग कभी बदलते हैं? बारिश में सड़क फिसलन भारी हो सकती है और विजिबिलिटी कम हो सकती है। ऐसे में सामान्य मौसम वाली स्पीड और डिस्टेंस हमेशा सुरक्षित नहीं होता। आगे वाली गाड़ी से दूरी बढ़ाना, अचानक ब्रेक या तेज टर्न से बचना और सड़क की स्थिति देखकर गति कम करना समझदारी है। और अगर पानी सड़क पर जमा है तो सिर्फ इसलिए आगे ना बढ़े कि सामने वाली गाड़ी निकल गई। याद रखिए, बारिश में सड़क वही होती है, लेकिन उसके ग्रिप और विजिबिलिटी बदल जाती है। इसीलिए मौसम बदले तो ड्राइविंग स्टाइल भी बदल लेना चाहिए। ये नहीं कि मौसम अच्छा हुआ, छपा छप वाले पानी के फुहारे बौछारे मारते हुए भैया निकल लो, चाहे किसी के कपड़े गंदे हो जाए। इससे इसका जरा सा हमें ध्यान रखना है श्रोताओं। लेकिन फिलहाल म्यूजिकल ब्रेक। देखिए, बातों के साथ साथ गाना भी हम आपको सुनवाएंगे। ये मत सोचिए कि हम सिर्फ बातें ही करते रहते हैं, हम गाना भी सुनवाते हैं। तो मिलते हैं एक प्यारे से गाने के बाद। तब तक के लिए बने रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: प्रभावित कर सकता है। ब्रेक लगाने, मोड़ लेने और वाहन को नियंत्रण करने में परेशानी हो सकती है। खासकर सामान ढोने वाले वाहनों में तेज क्षमता से ज्यादा वजन रखना सड़क सुरक्षा का गंभीर मुद्दा है। वाहन जितना वजन सुरक्षित रूप से संभालने के लिए बनाया गया है उसी के अनुसार सामान रखना चाहिए। गाड़ी में जगह बची है इसका मतलब ये नहीं है कि वजन की भी कोई सीमा नहीं है। तो जब भी आप गाड़ी में कोई सामान रख रहे हैं तो उतना ही रखें जितना सामान्य है। अगर आपको लग रहा है कि स्पेस है तो और भर देते हैं, ये नहीं कीजिएगा। छोटी सी गलती बहुत बड़ी मुश्किल ला सकती है, तो इन चीजों का ख्याल रखें।
1: हाँ, और सबसे जरूरी बात ये है कि नंबर प्लेट भी ट्रैफिक सुरक्षा का हिस्सा है। कई लोग गाड़ी खरीदने के बाद उसके लुक पर बहुत ध्यान देते हैं, स्टिकर, डिजाइनिंग, मॉडिफिकेशन, लेकिन नंबर प्लेट पर कम। जबकि नंबर प्लेट वाहन की पहचान का जरूरी हिस्सा है। अगर नंबर प्लेट गलत तरीके से लगी है तो पढ़ने में मुश्किल है, तो ये सिर्फ अपीयरेंस का मामला नहीं रह जाता। सड़क पर वाहन की पहचान साफ दिखाई देना जरूरी है, इसीलिए नंबर प्लेट को छेड़छाड़ करके फैंसी बनाने से पहले नियम जरूर समझे। गाड़ी आपकी हो सकती है लेकिन सड़क पर उसकी पहचान नियमों के अनुसार होनी चाहिए।
0: गाड़ी चलाते समय लोग पेट्रोल देखते हैं, टायर देखते हैं, मोबाइल की बैटरी देखते हैं, लेकिन जरूरी डॉक्यूमेंट्स वो भूल जाते हैं। कई बारी ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और वाहन से जुड़े जरूरी प्रमाणों की वैधता का ध्यान रखना भी ड्राइवर की जिम्मेदारी है। आज कई सेवाएं डिजिटल भी हैं और परिवहन जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, लेकिन हर ड्राइवर को अपनी डॉक्यूमेंट्स की स्थिति और लागू नियमों की जानकारी रखनी चाहिए। इसीलिए गाड़ी सड़क पर निकालने से पहले सिर्फ चाबी उठाना काफी नहीं है, गाड़ी की तैयारी में डॉक्यूमेंट्स भी शामिल होने चाहिए।
1: आपकी गाड़ी बाहर से चमक रही है लेकिन ब्रेक ठीक नहीं है, टायर और हवा सही नहीं है, लाइट काम कर रही है, इंडिकेटर चल रहे हैं। रोड सेफ्टी में व्हीकल की कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी सेफ्टी गाइडनेस और ब्रेक्स, टायर, लाइट्स और सिग्नल की नियम जांच पर जोर देती है। कई बार हम गाड़ी में छोटी खराबी को नजरअंदाज कर रहे हैं, अगली सर्विस में देख लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, अभी चलने देते जैसा चल रहा है। लेकिन सड़क पर छोटी खराबी भी बड़ी परेशानी बन सकती, इसीलिए महीने में कम से कम एक बार बेसिक सेफ्टी चेक की आदत जरूर रखें। जैसे आपको भूख लगती है, इनको भी भैया ठीक करवाना आपकी ही जिम्मेदारी है, तभी आपका ये साथ निभा सकती है गाड़ी। क्योंकि सुरक्षित ड्राइविंग सिर्फ अच्छे ड्राइवर से नहीं बल्कि अच्छी हालत वाले वाहन से भी होती है, इसीलिए इन चीज का भी आपने ध्यान रखना।
0: और दोस्तों, ट्रैफिक नियम सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बनाए गए हैं। सड़क पर हमारे साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग लोग हैं, पैदल यात्री हैं, साइकिल चलाने वाले हैं और दोपहिया वाहन चालक भी हैं। हर व्यक्ति की स्पीड और डायरेक्शन अलग होते हैं, इसीलिए ड्राइविंग में सिर्फ अपने रास्ते के बारे में सोचना काफी नहीं है। अगर सामने कोई बुजुर्ग धीरे सड़क पार कर रहा है तो हॉर्न बजाने की बजाय उस व्यक्ति को आप सुरक्षित तरीके से रास्ता देना ज्यादा अहम है। एवरीवन, इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाइए और सड़क पर अधिकार सिर्फ आपका नहीं है, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा समझदारी और थोड़ी इंसानियत, ये भी रोड सेफ्टी के जरूरी हिस्से हैं।
1: देखिए श्रोताओ, अब हमें आप सभी से ब्रेक लेते हैं क्योंकि अब हमारा यहाँ से छानी का टाइम हो गया है। हम आपको मिलेंगे कल, करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन जाते जाते चालान आए तो फर्जी लिंक से बचना भी जरूरी है। आजकल ट्रैफिक चैलेंज भी डिजिटल तरीके से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मोबाइल पर चालान के नंबर से मैसेज देखकर लोग तुरंत घबरा जाते हैं, लेकिन यही सावधानी जरूरी है। सड़क ई चालान व्यवस्था खुद लोगों को फर्जी वेबसाइट और ऐप से सावधान रखने की सलाह देती है। किसी अनजान लिंक पर जाकर पासवर्ड, ओटीपी या पेमेंट डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर चालान को लेकर कोई मैसेज आए तो उसकी जानकारी ऑफिशियल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से वेरीफाई करें। और याद रखिए, ट्रैफिक रूल तोड़ने से बचना जरूरी है, लेकिन फर्जी चालान के नाम पर ठगी से बचना भी उतना ही जरूरी है। सड़क पर सेफ्टी हेलमेट हेलमेट से शुरू होती है और ऑनलाइन सेफ्टी सही वेरिफिकेशन से शुरू होती है। इसीलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और सही जानकारी लीजिए, तभी आप कोई भी लिंक पर प्रेस करिए, अदरवाइज नहीं। बाकी जो ट्रैफिक नियम है उसका फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सुरक्षित अपने घर पहुंचते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ आपके घर वाले भी इंतजार करते रहते हैं कि आप ऑफिस से निकल चुके हैं तो सही सुरक्षित आप अपने घर पहुंचे। मिलते हैं हम आपको अगले एपिसोड में, अभी के लिए नमस्कार।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
6: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जिसपे हम कुछ न कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद है, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी बातें करती है और बहुत ही अल्टीमेट सी वाइब आ रही है मुझे इनके साथ बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
7: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
6: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
7: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्क्ड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
6: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था ना मैम, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी उनकी, आपको अल्टीमेटली वो एक फील आएगी बातों में। और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम, आपको स्टेशन आके कैसा लगा, हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
7: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट, मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
6: एब्सोल्युटली।
7: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं, नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कंप्लीट।
6: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's great, ma'am. Thank you so much. क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? So guys, I hope आपको definitely मजा आएगा इस conversation में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली। और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
7: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानती
6: है।
7: एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जैसे पुराने जमाने
6: दाई जी, बिल्कुल बिल्कुल,
7: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीजें, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप आ सकते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स. आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 ईयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज. ठीक है, देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड. तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है. तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर. एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेस, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल.
6: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए. अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है. सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है. इनफैक्ट एवरीबडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है.
7: Exactly.
6: सब लोग बहुत भाग रहे हैं, बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती है. उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभाल दी है, पर उन्हें खुद को नहीं देखना है. बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है. तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा.
7: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली. कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
6: बच्चे को दिखा लाते हैं.
7: आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स. अभी कल की कहानी बताती हूँ. देयर वर टू पीपल. ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस. ठीक है, अब द मदर वॉज देयर. तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो. तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है. शी डिनाइड, बोली नहीं मैम, घर में मेरे सब बीमार है. मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती. अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड. तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट, ताकि हम इंटरवीन कर लें. तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ. एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं, हम जो पैप स्मियर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो. डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें, बट एक स्क्रीन करके. क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी, तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे. अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे. आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे. तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ. अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है, तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकते. और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है.
6: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं. तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज, स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें. क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैम ने कहा. आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर. और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं. आज वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं. अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच. आजकल का लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
7: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर.
6: ठीक है.
7: अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो बी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर. ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, हर 3 साल पे कराना है. कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपके सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है. इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर. आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे. करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है. इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रहे हैं. अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले. पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है. कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए.
6: करेक्ट करेक्ट.
7: गवर्नमेंट इज रनिंग
6: कि एब्सोल्युटली
7: अब पोलियो इराडिकेट हो गया हमारे. ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवेंट तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए. अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3,000 से 4,000 रुपए की है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट.
6: फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल.
7: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को. अब एक इसमें दो तीन तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती है. डोजिंग का भी है कि 9 to 15 ईयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे. और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर है तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन. ठीक है, और ये लगवानी चाहिए. इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन. आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है. सब अपनी बच्चियों को लगवाएं और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स, आप प्लीज इसे लगवाएं. दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट. तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप ईयरली, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली बाय ईयरली आप मेमोग्राफी करा लें. प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती.
6: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच. आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया. यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो HPV वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है. पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है. आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
7: I would say कि प्लीज लगवाइए. ठीक है, इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन. कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है. कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही. कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए.
6: Absolutely.
7: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा.
6: करेक्ट मैम, बिल्कुल.
7: और पहले जब पैसे दे के लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है. नो, इट इज नॉट अ स्कैम. इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को. प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें.
6: एब्सोल्युटली. और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एवी का वैक्सीन आप जरूर कराएं. ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें. मैम थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारी यू नो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स यू नो लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में. अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग. उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेके बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं? यू नो पैड्स मत यूज करो, ये मत करो.
7: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है. आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते.
6: Absolutely.
7: गंदा खून होता है. ठीक है, अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है. इफ यू सी सनातन धर्म, दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल. क्यों क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन. है ना, जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है. द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी. उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच. तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन. अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी.
6: Correct.
7: मंदिर ऊपर हुआ करते थे.
6: Right.
7: तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे.
6: बिल्कुल बिल्कुल.
7: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था. तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं. दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा. ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था. इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है. हाउ कैन अ बेबी भी गंदा? नहीं हो सकता ना. सो अभी भी, अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस. उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे. द थिंग इज, जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू. आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग, एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो. ठीक है, मेरी बेटी होने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माय मदर. ठीक है, मम्मी जब होती हैं तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स की. ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माय होम आई फॉलो माय रिचुअल्स. तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते. थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी. जब इतना लास्ट पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता. थिंग्स आर चेंजिंग. व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग, व्हाई कांट वी अपडेट ना.
6: करेक्ट. अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं.
7: एग्जैक्टली.
6: तो उसके विषय में थोड़ा सा यू नो आप बताएं.
7: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज. आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज. ठीक है, अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमेनोरिया यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज. तो ये सब बीमारियां हैं. अब पीरियड नहीं आए, एक दो दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है, बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास तीन पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32 एंड 3 साल से एमिनोरिक है, यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा. हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम.
6: ओके, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. सो आई होप जो भी वुमेन्स, जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे. आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं. एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीजों को यू नो एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज से कहीं ना कहीं. यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता.
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए.
8: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना. पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर. 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर. किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी. 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस. उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक. आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद. कॉल करें 7055070552.
9: समझौते की समीक्षा की. पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है. आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है.
10: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है.
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है.
10: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है. 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है. 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है. 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है.
9: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने ये पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
11: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
9: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
12: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
9: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
13: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
9: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
10: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
9: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
14: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
10: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
14: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्र नाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
9: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसेर जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
15: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता।

0: जापान में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07052।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। कैसे हैं आप मेरे प्यारे श्रोताओं, उम्मीद है बारिश की इन खूबसूरत बूंदों के बीच आप भी बिल्कुल मस्त होंगे। बारिश का मौसम है दोस्तों, कहीं खिड़की के पास बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ ली जा रही है, कहीं अदरक वाली चाय के साथ पकौड़ों की प्लेट सज चुकी है, तो कहीं बच्चे बारिश देखकर बस यही सोच रहे हैं आज स्कूल जाना ना पड़े या बस आज तो छुट्टी मिल जाए। लेकिन इस सुहाने मौसम के साथ एक छोटी सी जिम्मेदारी भी आती है अपना ख्याल रखने की, क्योंकि मानसून जितना रोमांटिक लगता है ना उतना ही थोड़ा सावधान रहने वाला मौसम भी है। कभी अचानक बारिश, कभी जल भराव, कभी उमस और फिर मच्छरों की अपनी अलग ही मेहमान नवाजी होती है। तो आज की महिला मंच में हम बात करेंगे बिल्कुल आपकी और आपके परिवार की। बात होगी बारिश के मौसम में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से थोड़ा परहेज करना चाहिए, बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, हमारे घर के सीनियर सिटीजन का कैसे ख्याल रखें और महिलाएं खुद को सबसे आखिर में रखने की आदत को थोड़ा बदल कर अपने लिए भी वक्त कैसे निकालें, क्योंकि अक्सर घर की महिलाएं सबकी चिंता करती हैं, बच्चों ने खाना खाया या नहीं, पति ने छाता लिया या नहीं, सास ससुर ने दवा ली या नहीं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो कहती है अरे मेरा क्या है, मैं तो ठीक हूँ। बस अब महिला मंच में इतना ही कहना है, आप भी इम्पोर्टेंट हैं, आपका स्वास्थ्य भी जरूरी है। और हाँ, मानसून में सिर्फ अपने घर का ही नहीं अपने आसपास के माहौल का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं पानी जमा ना हो, घर के आसपास साफ सफाई रखें और मच्छरों को अपना परमानेंट एड्रेस बनाने का मौका बिल्कुल भी ना दें। और इस बारिश में प्रकृति के लिए भी एक छोटा सा काम कीजिए, अगर जगह है तो एक पौधा जरूर लगाइए, लेकिन सिर्फ फोटो खिंचवाकर छोड़ मत दीजिए, उसे पानी दीजिए, उसकी देखभाल कीजिए और उसे बड़ा होते हुए देखिए। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खास महिला मंच, क्या और इसमें इंटरेस्टिंग होने वाला है उसे सुनने के लिए आप बने रहिए खुशी के साथ। एंड मेरे साथ में यहाँ पर रीना भी है, जो कि करने वाले हैं हम कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें, कुछ मजेदार, बस आप बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
3: हां जी, की हाल चाल है, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और महिला मंच शो में कनेक्ट हो गए हैं आप सभी के बीच। और मेरा नाम आप सभी को पता ही है कि मैं आरजे रीना हूँ खुशी के साथ, मतलब हम दोनों आ जाते हैं महिला मंच शो में आप सभी के लिए कुछ अटपटे चटपटे लेकर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मानसून के बारे में। मानसून के फुहारे भला किसको अच्छी नहीं लगती, आसमान में बादल, मिट्टी की सौंधी खुशबू, खिड़की से आती ठंडी हवा और बाहर गिरती बारिश, मौसम अपने आप में खूबसूरत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बारिश के इस सुहाने मौसम के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, खासकर अपनी और अपने परिवार की सेहत को लेकर। मानसून में मौसम बदलता रहता है, कभी तेज बारिश, कभी उमस और कभी अचानक धूप। ऐसे में हमें अपनी दिनचर्या और खान पान का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आज महिला मंच में इसी खूबसूरत मौसम की बात करेंगे, कैसे मौसम का पूरा मजा ले, कैसे मौसम का पूरा मजा ले, लेकिन अपनी सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि खुशहाल परिवार की शुरुआत होती है एक स्वस्थ इंसान से, और अक्सर उस स्वस्थ परिवार की जिम्मेदारी घर की महिला अपने कंधों पर उठाती है। इसीलिए आज सबसे पहले खुद का ख्याल रखना, कैसे हम खुद का ख्याल रख सकते हैं बात करेंगे।
2: हाँ रीना, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। एक्चुअली मैं बात करने वाली हूँ, पता है आपको, साफ और सुरक्षित पानी की, क्योंकि मानसून में ना पानी का बहुत ज्यादा रोल होता है और बारिश के मौसम में सबसे जरूरी चीजों में बारिश के मौसम में सबसे जरूरी चीजों में से एक है पानी। पानी जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसका साफ और सुरक्षित होना। मानसून में पानी दूषित होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, इसीलिए पीने के पानी को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। कोशिश करें कि घर में साफ फिल्टर किया हुआ पानी या जरूरत के अनुसार उबला हुआ पानी ही इस्तेमाल हो। बाहर कहीं जा रहे हों तो अपनी पानी की बॉटल साथ रखें। और एक छोटी सी बात, सिर्फ पीने का पानी ही नहीं बल्कि पानी से जुड़े बर्तनों की साफ सफाई भी ध्यान रखें। पानी की बोतल, गिलास और फिल्टर को समय समय पर साफ करना जरूरी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए पानी की स्वच्छता पर ध्यान दें। तो बारिश कितनी भी हो, बादल कितने भी घने हो, पानी के मामले में हमारी सावधानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
3: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि पानी से ही जीवन है, जल है तभी जीवन है। और जल को हम साफ सफाई रखेंगे, बल्कि बहुत से ये कहते हैं कि फिल्टर का पानी, जो आरओ का पानी है, वो पी नहीं पाते, तो आप अपने घर पानी बॉईल करके रख सकते हैं, वो ठंडा होने के बाद पी सकते हो, वो तो फिल्टर से भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसी के साथ साथ हम खाने का भी ध्यान रखेंगे, बाहर के खाने से थोड़ी दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। आज बात आती है उस चीज की जिसे देखकर मानसून में दिल कहता है बस आज तो खा ही लेता हूँ, गर्मा गर्म समोसा, पकौड़े, चाट, गोलगप्पे। बारिश और स्ट्रीट फूड की दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन दोस्तों इस मौसम में बाहर का खुला और लंबे समय तक रखा हुआ खाना खाने से बचना बेहतर है। खासकर कटा हुआ फल, खुले में रखी चटनी या ऐसी चीजें जिनकी साफ सफाई को लेकर हमें भरोसा ना हो। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बारिश में स्वादिष्ट खाना बंद कर दीजिए। घर पर ही गर्मा गर्म पकौड़े बना लीजिए, साथ में अदरक वाली चाय, और परिवार के साथ बैठकर बारिश का आनंद लीजिए। स्वाद भी रहेगा और हाइजीन भी। तो अगली बार बारिश देखकर स्ट्रीट फूड खाने का मन करे तो खुद से पूछिए, मजा 2 घंटे का है या मौसम पूरे मौसम के? फैसला अब आपके हाथ में है कि आप कैसे मैनेज करते हैं।
2: रीना, पकौड़े की बात की है तो यार मेरा भी बहुत मन कर रहा है क्योंकि देखो ना बाहर का मौसम कितना सुहाना है और इस सुहाने से मौसम में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पकौड़े, आए हाय हाय, मुझे तो मतलब मेरा दिन तो बन जाएगा भाई। पर ये पकौड़े हमें खिलाएगा कौन, लेकर आएगा ये बताओ आप? आप तो बनाने जाओगी? नहीं, मैं भी नहीं जा सकती हूँ।
3: नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत अवॉइड किया है, मतलब तली हुई चीजें खाने को।
2: अच्छा,
3: अभी मैं रक्षाबंधन पे भी घर गई थी तो हमारे घर में भैया पकौड़े सकौड़े बनने थे, लेकिन मैंने अपने आत्मा के ऊपर कंट्रोल करा है।
2: दिल को संभाले इन्होंने, दिल संभल जा जरा।
3: और मतलब अब तक के सफर में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मैं घर गई हूँ और घर से आई हूँ, बाहर का मैंने कुछ भी नहीं।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया है रीना। इसके लिए हम आपको एक चॉकलेट देते हैं, ये लीजिए।
3: जल्दी दे दो।
2: तो देखिए, लड़की ने बहुत अच्छा काम किया है, ये ट्रैवल करती है एंड इन्होंने कहा है कि इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने इतना लंबा सफर तय किया है मुरादाबाद टू हरियाणा, लेकिन मैंने बाहर की एक भी चीज नहीं खाई है, मैं अपने घर से ही बनाकर लेके गई थी अपने लिए फूड।
3: इनफैक्ट मैंने पानी तक नहीं पिया है बाहर का।
2: अरे वाह, कमाल कर दिया, लड़की ने धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। चलो दोस्तों, अब हम करते हैं मानसून का पौष्टिक खान पान। ठीक है, बारिश के मौसम में हमारा खान पान थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। घर के खाने में दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से वॉश करें, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा ऑयली और हैवी खाना रोज रोज खाने से बचें। कोशिश करें कि ताज़ा और अच्छी तरह पका हुआ खाना ही खाएं। अगर सुबह जल्दी आपको काम पर जाना है तो रात में थोड़ा प्लानिंग कर लें। सुबह का नाश्ता स्किप ना करें, पोहा, उपमा, दलिया, बेसन का चीला या घर का साधारण पौष्टिक नाश्ता लीजिए। और हाँ, बारिश के मौसम में पानी पीना कम मत कीजिएगा। कई बार ठंडे मौसम में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की उतनी ही जरूरत होती है, इसीलिए अपनी वाटर बॉटल को अपने साथ रखना ना भूलिए, उसको अपने साथ हमेशा रखिएगा,
3: एक अपने साथी बनाकर।
2: हाँ, वो बहुत जरूरी, जैसे हमारी साथी हमारे साथ रहती है, देखो कितनी क्यूट बॉटल है हमारी तरह। चलो अभी गाना सुन लेते हैं यार, इतने सारी हमने बारिश की बातें की है, बारिश का गाना भी तो हो जाए।
3: अच्छा, कौन सा गाना सुनोगी तुम?
2: ओ, गाने तो बहुत सारे हैं। एक बारिश का गाना है बहुत ही प्यारा सा, मैं नाचू आज छम छम छम।
3: ओ चलो, अच्छी बात है, ये गाना
2: थोड़ा सा अच्छा। इस बहाने थोड़ा डांस भी कर लेंगे और हमारे श्रोताओं को भी डांस करने का मौका मिल जाएगा।
3: अरे वो तो ऑलरेडी डांस कर रहे होंगे।
2: नहीं, वो डांस करने के लिए तैयारी रहते हैं कि खुशी जी बस एक बार गाना चला दो। तो चलो अभी लौट कर आते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के इस पर।

0: बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय है कि नाचू मैं आज छम छम छम। देखिए छम छम नाचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बरसात के मौसम में ज्यादा देर तक गीले कपड़ों में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि ईचिंग शुरू हो जाती है। फिर कुछ नहीं पता, हम बाहर जाते हैं तो पानी इकट्ठा तो हो ही जाता है, तो हमें नहीं पता वो पानी कितना साफ है कितना साफ नहीं है। उससे हमें कीटाणु भी लग जाते हैं हमारे अंदर, और फंगल्स फिर शुरू वहीं से होता है। इसीलिए ज्यादा देर तक गीले कपड़े में, गीले जूतों में बिल्कुल ना रहे। कोशिश करें कि आप घर पहुंचते हैं तो जल्दी से जल्दी जो भी आपने पहन रखा है उसको चेंज करें। बारिश में सबसे आम परेशानी होती है गीले कपड़े और गीले जूते। कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ी देर तो पहन ही लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसीलिए जैसे ही घर पहुंचे गीले कपड़े बदले और पैरों को अच्छी तरह सुखाए। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी यही आदत अपनानी चाहिए। जूते को भी पूरी तरह सुखा दे। अगर घर में कई लोग बाहर से भी कराते हैं तो एंट्री के पास एक छोटा सा स्पेस रखें जहां अम्ब्रेला रेनकोट और वेट वाटर फूड व्यवस्थित तरीके से रखे जा सके। इससे घर भी साफ रहेगा और फर्श पर पानी फैलने से फिसलने का खतरा भी कम रहेगा। ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट
1: हाँ
0: है।
1: हाँ यार, कई बार होते हैं ना कि हम जल्दी जल्दी आते हैं गीले कपड़ों में गीले शूज पहनकर और फिर हमारा पैर भी स्लिप हो जाता है।
0: हाँ। और वैसे भी पहले के टाइम में मतलब घरों में इतना फर्श नहीं होता था, मिट्टी का होता था, थोड़ा बहुत सूख भी जाता थोड़ी देर में। लेकिन जब फर्श पे अगर पानी गिर जाए तो एक तो वो दिखता कम है और उस पे जिसकी पैर पड़ गई भैया वो गिर ही जाता है। तो इसीलिए ये पैर जो था ये पैतरा अपनाना बहुत जरूरी है।
1: और बच्चों का भी खास ख्याल रखें इस बारिश के मौसम में। बारिश शुरू होते ही ना बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है दोस्तों। पानी देखकर मन करता है कि बस छपाछप उसमें कूद जाएं, लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सुरक्षित रखें। कोशिश करें कि बच्चे गंदे या जमे हुए पानी में ना खेलें। बाहर से घर लौटने के बाद उनके हाथ पैर अच्छी तरह धुलवाएं। गीले कपड़े और जूते ज्यादा देर तक पहने ना रहने। स्कूल जाने वाले बच्चों के बैग में जरूरत के अनुसार एक्स्ट्रा कपड़े या छोटा टॉवल रखना भी उपयोगी हो सकता है। और बच्चों को प्यार से समझाइए कि बारिश का मजा लेना है लेकिन सेफ्टी के साथ। उन्हें ये भी सिखाइए कि सड़क पर जमा पानी में उतरना या खुले बिजली के तारों के आसपास जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। क्यों रीना, कई बार छोटे बच्चे इस तरह की गलतियां कर देते हैं ना।
0: खुशी, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों को नहीं पता होता है कि कौन सा तार मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। और बारिश के मौसम में वैसे भी चाहे घर में भी कोई प्लग हो, बच्चे बड़े मतलब मासूम होते हैं, उनको नहीं पता, वो बार बार फिंगर भी डालते बोर्ड के अंदर, तो उनसे
1: कभी वो वायर छू रहे हैं, कभी वो स्विच को ऑन कर रहे हैं ऑफ कर रहे हैं गीले हाथों से,
0: और उनको नहीं पता होता है। कुछ तारे भी घर में होती है जिसको लापरवाही की वजह से हम छोड़ देते हैं
1: जी,
0: तो उसका भी ध्यान रखें। और बच्चे छत पर जाते हैं, छत पर भी बिजली के तारे होती हैं, तो वो भी मतलब मोस्टली ये है कि बच्चों की देखरेख बहुत जरूरी है बरसात के मौसम में। साथ ही साथ बुजुर्गों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: बुजुर्गों का ध्यान बिल्कुल। अब आपने सीनियर सिटीजन की बात ही की है तो अब बात हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की। बारिश के मौसम में सीनियर सिटीजन का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। फर्श गीले होने पर फिसलने का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए घर का फ्लोर जितना हो सके सूखा रखें एंड बाथरूम में भी विशेष सावधानी रखें। और अगर घर में बुजुर्ग अकेले चलते हैं तो रास्ते में सामान या पानी जमा ना रहने दें। उनकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें ऐसी जगह रखें जहां उन्हें बार बार झुकना या ऊंचाई पर हाथ ना लगाना पड़े। मौसम के अनुसार हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन दें और पानी पीने की याद दिलाते रहें। और सबसे जरूरी, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। कभी उनके पास बैठकर चाय पी लीजिए, पुरानी बातें सुन लीजिए। बुजुर्गों को दवा जितनी जरूरत होती है ना, उतना ही अपनापन भी जरूरी होता है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अच्छा लगता है ना जब हम अपने सीनियर सिटीजन के पास बैठते हैं, उनसे उनकी पुरानी बातें सुनते हैं और उनसे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को भी मिलती हैं। क्यों रीना, देखो अब आप भी मुझे बता रही थी अपनी दादी जी के बारे में कि मैं जब घर जाती हूँ तो दादी जी के पास ही सोती हूँ।
0: हाँ, ये तो है।
1: और उनकी वो चुलबुली सी बातें, वो बड़ी खूबसूरत सी
0: आपने बारे में बताया। मैं बताती हूँ, वहाँ पर ना जीरो नेटवर्क होता है।
1: हाँ,
0: फोन से दूर।
1: हाँ,
0: और उनकी जर्नी, उनकी कहानियाँ सुनना कि हमारे जमाने में ऐसे होता था,
1: और हमें और इंटरेस्ट आता है। हाँ, कि और बताओ ना दादी जी।
0: हाँ,
1: है ना?
0: हम पूछते रहते हैं, मतलब हम भी ना मतलब दिलचस्पी हो जाती है कि हाँ। भाई इस चीज के बारे में जानना है, क्योंकि जो वो चीज

0: हमने नहीं देखी है,
1: नहीं देखी है
0: तो हम उस चीज को बारीकी से सुनना पसंद करते हैं।
1: हाँ, हमें अनुभव मिलता है उन चीजों का कि अच्छा पहले ऐसे भी हुआ करता था। और पहले की लाइफ बहुत सिंपल सिटी थी पहले
0: हाँ,
1: की लाइफ।
0: अरे अब पता है क्या है यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोन।
1: फोन भी है रीना, और आजकल के टाइम में ना लोग दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं।
0: ये बिल्कुल सही कहा
1: है ना,
0: तुमने।
1: तो इस चीज में ना इंसान की जो रियल खुशी है ना वो भी गायब हो जाती है।
0: और जो इंसान परेशान रहते हैं ना, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग के साथ बैठ के उनसे बात करिए। जब आप उनसे बात करेंगे ना, बात कहाँ से निकलती निकलती भैया कहाँ पहुंच जाएगी पटरी, ना आपको भी नहीं पता चलेगा
1: और टेंशन
0: और
1: भी दूर हो जाएगी।
0: बिल्कुल माइंड ऐसा होता है यार रिलैक्स, मतलब एक अलग ही सुकून की अनुभूति होती है।
1: हाँ।
0: ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स कर रहा हूँ। तो आप में से बहुत से ऐसे होंगे कि परेशान भी रहते हैं, डिप्रेस भी रहते हैं, तो ये वाला जो पैतरा है बड़े बुजुर्गों के पास बैठने का, वो जरूर अपनाइए।
1: कभी उनकी
0: आप
1: गोद
0: फिर
1: में,
0: देखिएगा, आपको आप खुद अनुभव करिएगा
1: हाँ,
0: कि मुझे कैसा फील हो रहा है।
1: और कभी उनकी गोद में सर रख कर देखना, जब वो प्यार से आपके बालों को सहलाएंगे, है ना, आपके सर दबाएंगे, तो आपको इतना अच्छा फील होगा ना, आपको किसी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
0: हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने।
1: हाँ
0: और देखिए बरसात के मौसम में ना, हमें साफ सफाई का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ हम अपने घरों में गमले भी बहुत रखते
1: हाँ पेड़
0: हैं, है
1: पौधे
0: ना,
1: लगाते
0: तो
1: हैं।
0: उनकी इस बरसात के मौसम में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। आपके घर में आप कूलर यूज करते हैं तो उसका पानी
1: चेंज
0: कोशिश
1: करते
0: करें
1: ना,
0: कि डेली चेंज करें। और बरसात के मौसम में मुझे नहीं लगता कि पानी पर एसी चलाना जरूरी है,
1: जब
0: बिना पानी के
1: मौसम
0: भी आप चला सकते हैं।
1: चला सकते हैं। एग्जैक्टली राइट। और हाँ रीना, ऐसा भी होता है ना कि मैंने बहुत सारे, मतलब ऐसा काफी जगह देखा है कि टेरेस पे छत पर ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम यूज नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन चीजों में क्या होता है ना, पुराना जो कबाड़ होता है उसमें पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, मच्छर
0: मच्छर
1: पनप
0: पनप जाए।
1: जाते हैं।
0: और इस मौसम में ना डेंगू मलेरिया हैजा वॉमिटिंग का जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मच्छरों से बचकर रहिए, क्योंकि मच्छरों की जो बारात है ना वो बरसात आते ही शुरू हो जाती है। तो इसमें भैया जितना हो सके आप बच के रहेंगे उतने आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बारिश के साथ साथ एक और मेहमान घर में आने की कोशिश करता है, जैसा कि मैंने बताई दी आपको मच्छर, और इससे दोस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो आपके पास आते हैं बिनर बिनर करके कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बहुत प्यारा दोस्त हूँ, अगर तुम्हारी मतलब अगर तुम नहीं उठ पाते हो जल्दी तो मैं हूं ना उठाने के लिए तुम्हें, ये ऐसा वाला दोस्त होता है, लेकिन ये अस्पताल पहुंचा देता है।
1: बाकी दोस्तों होटल लेकर जाते हैं, रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं, पर ये मच्छर है जो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं।
0: हाँ, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। घर के आसपास पानी जमा ना होने दे, कूलर गमले बाल्टी छत और ऐसी जगहों को चेक करते रहे जहाँ बारिश का पानी जमा हो सकता है। अगर घर के किसी कोने में पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटाइए, खिड़की दरवाजे पर जाली का इस्तेमाल करें और सुरक्षित और बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से बचा कर रखें। याद रखिए मच्छरों से बचाव सिर्फ घर के अंदर नहीं बल्कि घर के आसपास की साफ सफाई भी जरूरी होता है, इससे आप सुरक्षित रह पाएंगे। अदरवाइज तो भैया आपको पता है ये ऐसा इंजेक्शन लगाकर जाते हैं ना जिसका असर 15 दिन तक रहता है बॉडी के
1: 15 दिन
0: अंदर,
1: तक रहता है। और मैं कहना चाहती हूँ,
0: धीरे धीरे होता है इसका असर।
1: हाँ मैं कहना चाहती हूँ जी, जब रात को सोते हैं तो उस समय ना फुल स्लीव के कपड़े
0: हाँ,
1: पहने,
0: बाहर निकले मतलब शाम होते फुल स्लीव का कपड़े पहन लीजिए आप।
1: और सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करें, एंड
0: घर के
1: बाकी तो
0: बाहर कूड़ा ना इकट्ठा होने दे, क्योंकि भैया आज के टाइम में ना बहुत होता है कि मैं इसके घर के तरफ सफाई नहीं करूंगी, बस इधर उधर झाड़ू लगाया वो उसके कोने में ऐसे
1: कोने में।
0: इकट्ठा कर देते हैं।
1: हाँ, घर की
0: तो देखिए
1: सफाई।
0: आप तो झाड़ू लगा के इधर उधर कर देते हैं, लेकिन बीमारियां भी तो आप सभी के पास आती है ना, तो इसीलिए ऐसा ना करे कि ये पड़ोसन है वही साफ करेगी, ये पड़ोसन है वही साफ करेगी। अरे 2 मिनट लगता है, आप ही हटा दीजिए इस कूड़े को।
1: हाँ, अब आपने घर की साफ सफाई की बात छेड़ी है तो मैं बता ही देती हूँ कि घर में मानसून में घर की साफ सफाई का तरीका भी थोड़ा बदल जाता है। नमी ज्यादा होने के कारण कपड़े देर से सूखते हैं, और कई जगह डीपनेस हो सकती है, इसीलिए घर को जितना संभव हो वेंटिलेशन रखें। गीले कपड़ों को लंबे समय तक कमरे में ना टांगे, कचरा समय पर बाहर करें, और किचन में पानी जमा ना रहने दें। खाना बनाने की जगह साफ सफाई रखें, और खाने की चीजों को हमेशा ढककर रखें। अगर कहीं सीलन या फंगस दिखाई दे तो उसकी
0: इनफेक्ट फ्रिज में भी जब खाना रखते हैं ना उसको भी ढक कर रखना चाहिए।
1: ओके, फ्रिज में ऐसे ही खाना रख देते हैं ना?
0: बहुत रख देते हैं ना यार, यहाँ कौन मच्छर क्या जाएगा, धूल क्या ही जाएगा, ऐसे ही रख देते हैं। तो फ्रिज में कभी भी ऐसे
1: खुली
0: खाना नहीं रखना,
1: चीजें ना रखें।
0: मतलब जो भी आप जिस कटोरी में आप सब्जी रखते हैं, चावल रखते हैं, उसके ऊपर प्लेटें मतलब ढक कर रखें।
1: ओके, कहने का यही है कि कुल मिलाकर उसको खुला ना छोड़ें, ढककर रखें, और खाना बनाने की जगह साफ सफाई रखें और खाने की चीजों को ढककर रखें। जैसे रीना जी ने भी कहा ही है दोस्तों, चाहे फ्रिज हो या किचन हो, अगर कहीं सीलन या फंगस दिखाई दें तो उसकी सफाई पर विशेष ध्यान दें। घर साफ रहेगा तो वातावरण भी बेहतर रहेगा और बारिश का मौसम ज्यादा आराम से एंजॉय किया जा सकेगा। तो चलो दोस्तों, अभी हमने बहुत सारी बातें की हैं, अब एक छोटा सा एड ब्रेक भी लेते हैं क्योंकि म्यूजिकल ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। तभी लाइफ हो या फिर शो हो, इंटरेस्ट तभी आता है जब एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।
0: और गाना मैं ऐसे सुनाने वाली हूँ आपको ना, मतलब बरसात के मौसम में आपने ये वाला गाना नहीं सुना तो मतलब कुछ भी नहीं सुना आपने।
1: मतलब बारिश अधूरी है कहीं ना कहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मौसम का मजा नहीं ले पाएंगे। सही बात है।
1: चलो ठीक है, हम भी सुनते हैं। कौन सा गाना आज रीना जी सुनाने वाली है?
0: बिल्कुल, लेकिन सुनाने से पहले देखिए मौसम, मतलब मुझे लगता है कि इस टाइम बारिश इतनी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो खेतों में फसलें हैं, धान है, उसपे जो दाने हैं ना वो आने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब धान आना स्टार्ट हो गया।
1: अच्छा।
0: खेतों में हाँ। तो इस टाइम जैसे बारिश होगी तो वो फसल खराब हो जाएगा, क्योंकि हम तो घर में बैठे बैठे के सोच रहे हैं कि भैया मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा वेदर है, लेकिन उस किसान की मेहनत को भी सोचिए जो इतनी मेहनत में भी अपने खेतों में जाता है, फसल उगाता है, और मौसम बारिश भी ऐसे टाइम पर होती है ना जो फसलों को खराब कर देती है।
1: और इन्हें ऐसा भी होता है कि जहाँ बारिश की नीड नहीं होती ना वहाँ बारिश होती है, और जहाँ बारिश की नीड होती है वहाँ बारिश आती ही नहीं
0: आती है, क्योंकि इस टाइम फसलें भी उगने शुरू हो गए हैं, धान उगना शुरू हो गया है, और जब बारिश ज्यादा रहेगी तो जो फसल है वो एकदम अजीब तरीके से हो जाते हैं, जिनसे उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी हम इस गाने के बाद मिलते हैं आप सभी को।

0: श्रोताओं, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है और फिर से मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। देखिए, मॉनसून में सुकून भी जरूरी है। बारिश का मौसम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन को भी प्रभावित करता है। कभी लगातार बारिश के कारण घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, रूटीन बदल जाता है। ऐसे में अपने दिन में छोटी छोटी खुशियां शामिल करें, पसंदीदा संगीत सुनिए, किताबें पढ़िए, परिवार के साथ बैठिए या बालकनी में बारिश का आनंद लीजिए। महिलाओं के लिए ये खास तौर पर जरूरी है कि वे सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि मेंटल वेल बिगनिंग का भी ध्यान रखें। हर दिन कुछ समय ऐसा जरूर रखें जिसमें आपको किसी काम की जल्दबाजी ना हो, बस आप हो और आपकी पसंद की कोई छोटी सी एक्टिविटी, ताकि देखिए आप कभी मन खुश होना चाहिए, क्योंकि बरसात में हर किसी का ध्यान रखते हैं। ऊपर से आप सभी की जो काम है वो दुगना बढ़ जाता है। अभी झाड़ू लगा के निकले थे, अभी पोछा लगाया था, बारिश आ गई तो फिर वाइपर लेके भाग लेते हैं।
1: यार,
0: अभी
1: ये तो सही कह रही हो।
0: जट से उन्हें कपड़े धो के छत पर सुखा के फिर भाग के
1: जाओ, फिर लेकर उतार के लेकर आओ।
0: तो बारिश जितना हमें सुकून देता है उतना काम बढ़ा भी देता है, क्योंकि जो काम हम कर हटते हैं वो दोबारा कहते हैं भाई करो इस काम को तुम। और इस टाइम में ना कपड़े सुखाने की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है बरसात के मौसम में। और साथ ही साथ जो अनाज धोकर खाते हैं, गेहूं धोकर खाते हैं, जिनके घर में अनाज खत्म हो गया उनका क्या हाल होता है?
1: वो एडवांस में रहते हैं, एडवांस चलते हैं रीना, वॉश करके पहले सुखा के रख लेते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत जरूरी है, बारिश के मौसम में अगर किसी को लगातार तेज बुखार, उल्टी, दस्त, बहुत कमजोरी या कोई गंभीर परेशानी महसूस हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। हर बीमारी का इलाज घरेलू नुस्खों से करना सही नहीं होता। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें और खुद से दवाई लेने से बचें। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोगों के मामले में विशेष सावधानी रखें। सबसे जरूरी बात, लक्षण ज्यादा हों या हालात बिगड़ने लगें तो मेडिकल हेल्प लेने में जरा भी देरी ना करें। ठीक है श्रोताओं, तो इन्हीं बातों के साथ अब हम चलते हैं, आपसे जाने की अनुमति लेते हैं। आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है? शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: घर का मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी।
1: अरे तो छोटू, ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
2: कौन है ये?
1: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 3 से 5 मंडे टू सैटरडे करती है आपसे दिल की बात।
3: अभी बजा आएगा ना भिड़ो।
1: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों आज का दिन ना थोड़ा और सुरमय है, थोड़ा और म्यूजिकल है, क्योंकि आज इंटरनेशनल म्यूजिक डे है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी लेकर हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो हेलो फरमाइश। जहाँ सिर्फ गाने नहीं बजते हैं एवरीवन, यहाँ पर होती है दिल से दिल की बातें और कुछ ऐसी फरमाइशें जो हमारे दिल के कोने में कहीं ना कहीं

0: होती हैं, लेकिन हम उनको जब रेडियो पर सुनते हैं, कभी अचानक से हमारे बिना बताए भी हमारी फरमाइश का गाना प्ले हो जाता है ना, तो दिल झूमने लगता है। और अभी बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। और आज की धूप इतनी कड़क है ना, बस पूछिए मत, बाहर जाते हैं जाने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लाइक हमारे मुरादाबाद का अभी करंटली जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस है, 32 डिग्री। और बात करते हैं अपने कॉलर से। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
1: रात सुबह का इंतजार नहीं करती, रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती, जो भी फूल मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है मोहतरमा, बहुत खूबसूरत आपने लाइनें बोली हैं और ये रियल भी हैं। एंड अपना नाम तो बताइएगा। जी बताइए नेहा जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। आज तो आप बहुत ही खुश नजर आ रही हैं, क्या बात है?
1: जी हम खुश है, कॉल लग गई तो हो जाता खुशी हो रही है।
0: ओके, और बताइए नेहा जी, परिवार में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: सब बढ़िया मैम जी, आपके स्टूडियो में और आपके घर परिवार में सभी लोग कैसे?
0: हाँ जी, ऑल गुड, सब बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा नेहा जी, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम सॉन्ग सुनना है, मासूम चेहरा निगाहें फरेरी।
0: ओहो हो, किन के लिए सुनना चाहते हैं गाना आप?
1: मैम सभी सुनने वाले हैं, और हमारे घर में सिस्टर है हमारी इल्मा और
0: सुबह। वो आपसे बड़ी है छोटी है?
1: एक छोटी है, दो बड़ी है।
0: अच्छा ओके,
1: हाँ।
0: तो आप घर में हेल्प करते हो कामों में या नहीं? बड़ी बहन सोचते हैं आपकी बड़ी बहन है, चलो मैं नहीं करती हूँ आज।
1: मैम बड़ी बहन भी करती है, हम भी करते हैं, सब मिलकर करते हैं।
0: अरे वाह, हाँ फिर तो ठीक है, सब मिलकर करते हैं तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है।
1: जी मैम,
0: चलिए
1: कुछ लाइन है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल इरशाद।
1: खामोश चेहरों पर हजारों पहरे होते हैं, खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते हैं।
0: ओहो क्या बात है जी, आप तो छा गए हो। हाँ
1: जी मैम,
0: थैंक यू। चलिए सुनवाते हैं आपको ये प्यारा से गाना
1: जी। बाय
0: बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक और हम लौट कर आते हैं, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837898968।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हेलो फरमाइश शो में। और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक। फ्रॉम द मूवी तलाश से गाना आपने एंजॉय किया। और इस खूबसूरत गीत को लिखा था समीर जी ने एंड म्यूजिक डायरेक्टर थे संजीव दर्शन जी। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार। अपना नाम बताइएगा आप।
1: मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मैं गुना जिले के मध्य प्रदेश से निवेदन कर रहा हूँ।
0: अच्छा, मध्य प्रदेश से आप हमारे साथ जुड़े हैं, बताइएगा सर कैसे हैं आप।
1: मैं एक गाना सुनना चाहता था। मैं
0: बिल्कुल, गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन बताइएगा आप कैसे हैं सर और क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा।
1: जी मैम, बढ़िया हूँ, मैं अच्छा हूँ। हमारे जो है कुछ इष्ट मित्र बैठे हुए थे, आपके जो है पुराने श्रोता है सुनील साहू।
0: हाँ जी,
1: इनके द्वारा जो है हमको जो है बताया गया, तो हम आपसे जुड़े मैम।
0: ओके,
1: और गाने की फरमाइश के लिए एक हमारे जो पत्रकार हैं भूपेंद्र सिंह सिसोदिया जी, एक भगवत सिंह लोधी जी।
0: जी बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं।
1: गाना है मोहब्बत बड़े काम की चीज है।
0: अच्छा, तो ये गाना आप अपने साथियों के साथ सुनना चाहते हैं ना, राइट हियर।
1: जी जी जी,
0: ठीक है, सुनवाते हैं आपको ये गाना। आपने हमें कॉल किया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं लता मंगेशकर जी और साथ में किशोर कुमार जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा ट्रैक। लौट कर मैं आती हूँ वापस, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: कोई मिल गया,
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। वक्त हुआ है 3:28, और कहते हैं ना दोस्तों, शब्द जहां खत्म हो जाते हैं ना, वहां से संगीत शुरू होता है। कई बार हम किसी को आई मिस यू नहीं कह पाते हैं, बस एक गाना सेंड कर देते हैं। किसी से नाराज हैं फिर भी उसकी पसंद का गाना सुन लेते हैं, और कभी कभी कोई पुराना गाना बज जाता है ना, और हम अचानक कई साल पीछे पहुंच जाते हैं। यही है म्यूज़िक की खूबसूरती, और ये सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस होता है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का, या फिर किसी स्पेशल पर्सन को डेडिकेट करना चाहते हैं कोई भी ट्रैक जो आपको बहुत पसंद है या फिर उनको पसंद है, तो आप मुझे कॉल लगा सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम मोहम्मद जुनैद कुरैशी है मैम।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप सर?
1: जी मैम, मैं गाँव कुटा खेड़ा कातला जिला सहारनपुर से बात कर रहा हूँ मैम।
0: डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइएगा कैसे हैं आप सर?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, आप लोग सुनाइए।
0: हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आज आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया है या पहले भी कर चुके हैं आप?
1: जी मैम, मैं प्रयास तो काफी टाइम से करता हूँ कॉल लगाने का, पर आज मेरा फर्स्ट टाइम कॉल लगा है प्रोग्राम में।
0: ओके, तो कैसे लग रहा है आपको? आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया है एंड कॉल रिसीव हुआ है आपका।
1: जी जी मैम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल रिसीव किया, और आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए बनाते हो, पेश करते हो मैम, बहुत मेहनत करते हो आप लोग हमारे लिए, और आप लोगों को बहुत बहुत इस चीज की मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप लोग हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम बनाकर संवार कर पेश करते हैं मैम।
0: थैंक यू सो

0: मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी अच्छा लगता है जब हमें प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं और हमारा भी काम करने का उत्साह और ज्यादा हो जाता है।
1: बिल्कुल मैम, और मैं
0: जी
1: कहना चाहूंगा मैम कि तो रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की, तो रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं खुद को गिरवी रख दूंगा तो कीमत बता मुस्कुराने की।
0: अरे वाह क्या बात है, बड़ी खूबसूरत शायरी है ये। तो आपने किन के लिए बोली है जरा बताओ।
1: जी मेरे दोस्त है जम्मू कश्मीर से मोहम्मद नईम मलिक, उन्हीं के लिए है मैम।
0: ओके, तो कुछ रूठे रूठे से हैं आपसे।
1: जी मैम वो कुछ खफा है, आजकल बात नहीं कर रहे मुझसे, बस उन्हीं के लिए 4 लाइनें मैंने बोली है।
0: अरे वाह,
1: और ये और वो मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम सुन रहे होंगे, तो प्लीज मुझे कॉल करें मैम।
0: कॉल भी करेंगे वो और मान भी जाएंगे। अब आप निश्चिंत हो जाइए,
1: जी मैम,
0: बताएगा क्या फरमाइश है आज आपकी सर।
1: जी मैम राजा मूवी से गीत रहेगा, उदित नारायण जी की आवाज में है कि फूल मांगू ना बाहर मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू।
0: जी सुनवाते हैं ये खूबसूरत से गाना आपको।
1: जी मैम, और 2 लाइनें हैं, ज्यादा ज्यादा ये बोलना चाहूंगा कि हर तमन्ना पूरी नहीं होती और हर सपना साकार नहीं होता, किस्मत सबकी अपनी होती है, कोई किसी का गुनाहगार नहीं होता।
0: बहुत खूबसूरत लाइनें हैं आपकी सर, हमें भी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया। और सुनवाते हैं प्यारा सा गीत, आप एंजॉय कीजिएगा। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक उदित नारायण जी और साथ में अलका याग्निक जी की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना।

0: दोस्तों, ये अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी राजा। और इस ब्यूटीफुल ट्रैक में ये गाना पिक्चराइजेशन था संजय कपूर साथ में माधुरी दीक्षित जी पर। और इस खूबसूरत गीत को लिखा था समीर जी ने एंड नदीम शरवण जी का म्यूजिक था। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से बिना किसी देरी के। हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: जी, गजराज ज्योति बात कर रहा हूँ, रेल राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: जी, काफी दिनों के बाद हमने फोन लगाया और बढ़िया है। इस वक्त सोयाबीन की कटाई हो रही है खेतों में है।
0: अच्छा, सोयाबीन की कटाई चल रही है
1: जी।
0: ओके, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी कैसा मौसम है एमपी का?
1: एमपी में अभी जबरदस्त धूप है।
0: ओके,
1: हाँ तो बढ़िया है। हम ये चाहते हैं कि बारिश ना हो और हम किसान लोग सब फ्री हो जाएं काम से।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। तो आपके यहाँ पर और किस चीज की खेती होती है? जैसे अभी आपने कहा कि सोयाबीन की कटाई हो रही है, उसके अलावा और क्या क्या मतलब अपने खेत में उगाया जाता है?
1: अभी कुछ क्षेत्र में मतलब हमारे यहाँ पे वो मक्का लगाई जाती है और सोयाबीन, ये दोनों चीजों की होती है यहाँ पे खेती अभी।
0: अच्छा, मक्का और सोयाबीन की ज्यादा वहाँ पर खेती होती है
1: जी। फिर उसके बाद में हम लोग गेहूं और चने और धनिया लगाएंगे।
0: अरे वाह, क्या बात है। अभी विंटर्स आ रहे हैं तो चने का भी मतलब सीजन होता है ना?
1: जी
0: जी, तो बताइएगा आप आज हमारे साथ जुड़े हैं सर, क्या फरमाइश है आपकी?
1: वीरता मूवी का सुनना है, बधाई हो बधाई। और ये गाना हमारे वो सुनील सेन जी है।
0: हाँ जी,
1: सुनील साहू जी।
0: हाँ, सुनील साहू जी राइट, वो कॉल भी करते हैं।
1: जी जी जी,
0: मकसूदनगढ़
1: से। तो उनको सुनवाना चाहते हैं और अमर सिंह जी के लिए।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं आपके दोस्तों के साथ ये खूबसूरत गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। मैं वापस आती हूँ, तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा, आपका कॉल भी डेफिनेटली लगेगा। एवरीवन, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार माय ब्यूटीफुल लिसनर, वेलकम है आप कैफे मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और अभी आपने एंजॉय किया ये अमेजिंग ट्रैक। और हमारे साथ ना एक और बड़ी प्यारी सी लिसनर जुड़ी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हाय दी, तुम केम छो?
0: मजा मां, तुम केम छो?
1: मजा मां।
0: अरे वाह, ये कुछ गुजराती स्टाइल में हम लोग हालचाल पूछते हैं ना, अच्छा लगता है ना?
1: बहुत अच्छा लगता है दी।
0: जी अपना नाम बताइएगा आप।
1: दीदी मैं आपका बिकनपुर जिला मुरादाबाद से आपकी पुरानी लिस्टनर और पुरानी दोस्त अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: जी अफरोज बताइएगा, कैसे हैं आप और परिवार में सब ठीक है?
1: हाँ दी मैं भी ठीक हूँ और मेरी फैमिली में सब ठीक है। आप बताओ आपकी फैमिली में सब कैसे है और स्टूडियो में कैसे है?
0: हाँ फैमिली में भी ऑल गुड, सब लोग बहुत अच्छे हैं और स्टूडियो में भी सभी प्रेजेंटर्स बहुत अच्छे हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। हम आपसे बातचीत कर रहे हैं।
1: दीदी बहुत अच्छा लग रहा है, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और काम चुप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप काम के साथ साथ रेडियो सुनते रहते हैं, काम भी हो जाता है और एंटरटेनमेंट भी हो जाता है ना? जब काम करने में और ज्यादा मन लगता है ना, जब प्यारे प्यारे गाने हम अपने पसंद के सुनते हैं।
1: हाँ दी बहुत अच्छा लगता है और आपसे बात करना तो बहुत ही अच्छा लगता है दी। आप इतना अच्छे से बोलते हो और इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, इतनी अच्छी आवाज है आपकी और दिखने में भी बहुत क्यूट हो।
0: थैंक यू, बट आपसे ज्यादा नहीं है, आप तो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह।
1: दीदी लेकिन आपसे ज्यादा नहीं हूँ मैं।
0: अच्छा दोनों एक दूसरे की तारीफ ही कहते रहो, ठीक है? अच्छा
1: तारीफ भी ऐसे लोगों की नहीं होती ना, हर इंसान एक जैसा भी तो नहीं होता ना, जो तारीफ लायक होता है उनकी तारीफ ही होती है।
0: हाँ ये तो है डियर। और बताइएगा बाकी क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं थी, बस कार चोप कर रहे थे और मैं सोचा खुशी दी से बात कर लूं।
0: चलिए बहुत अच्छा किया आपने कॉल ट्राई किया और आपका कॉल लग भी गया है, तो बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी अफरोज?
1: दीदी आज मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ लेकिन कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ।
0: जी इरशाद।
1: दीदी मैं लौट कर आऊँ तो कहना तुझसे मोहब्बत करूँ तो कहना, मैं लौट कर आऊँ तो कहना तुझसे मोहब्बत करूँ तो कहना, बड़ी ही जिल्लत और बेकदरी नसीब हुई एक तेरी वजह से, बड़ी ही जिल्लत और बेकदरी नसीब हुई एक तेरी वजह से, मैं तुझे पहचान जाऊँ तो कहना, मैं तुझे पहचान जाऊँ तो कहना।
0: क्या बात है, बड़ी गहरी बातें थी इसके अंदर शायरी के। हाँ
1: दीदी हाँ, ये अगर इंसान समझे ना तो ये बहुत गहरी लाइन है दी।
0: वही तो हम कह रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइएगा अफरोज आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: दीदी आज मैं गुनगुनाकर सुनाना चाहती हूँ।
0: हाँ बिल्कुल सुनाइए। अरे नेकी और पूछ पूछ सुनाइए सुनाइए।
1: दीदी पथ तेरा हमें हर कदम चाहिए, जिंदगी में हमें

0: ओह नाइस यार, बहुत प्यारा आपने गुनगुनाया है।
1: उर्दी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत बहुत खुश हूँ सच बताऊँ तो।
0: नाइस टू मीट यू, मेरे को भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा रियर। और ये मुलाकात हम नहीं भूलने वाले हैं।
1: दीदी बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि दीदी मैंने सोचा नहीं था, मैं सोच रही थी कि लाइव आएगी तो मैं उनके साथ जाऊंगी, लेकिन इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा मैं खुद नहीं सोच पा रही। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई।
0: जब दिल से मोहब्बत होती है ना किसी से किसी को, तो ऊपर वाले ना मिलवा ही देते हैं, और आप हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं, तो देखिए आपकी मुलाकात भी हो गई हमसे।
1: हाँ दी, बहुत अच्छा लगा और स्टूडियो में आकर बहुत खुशी मिली मुझे।
0: शुक्रिया आपका बहुत बहुत, नेक्स्ट टाइम भी जरूर आइएगा पफरोज। एंड
1: अब सुन, के साथ ही आऊंगी।
0: हाँ हाँ डेफिनेटली आप आएगा, मोस्ट वेलकम है आपका। सुनिएगा ये प्यारे से गाना,
1: सुनाना चाहती हूँ
0: जी। जी जी सुनाइएगा।
1: आंसुओं की तलाश में यहाँ एहसास लिखा जाता है, आंसुओं की तलाश में यहाँ एहसास लिखा जाता है, यहाँ पानी को भी प्यास लिखा जाता है, और मेरे जज्बातों से वाकिफ है मेरी कलम, और मेरे जज्बातों से वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क लिखूं तो तेरा नाम लिखा जाता है, मैं इश्क लिखूं तो तेरा नाम लिखा जाता है।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: ये शायरी मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइबा के लिए थी।
0: बहुत ही खूबसूरत सी शायरी थी, और सुनवा दें गाना, आप एंजॉय कीजिएगा।
1: सिस्टर है?
0: हाँ बताइएगा।
1: जैसे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइबा,
0: यस,
1: मेरी सिस्टर नजमा दरक्षा,
0: ओके,
1: साबिया रुकैया, आसिया रामपुर से शबनम भी।
0: ठीक है, आपकी पूरी फैमिली फ्रेंड्स के साथ सुनवाते हैं गाना, एंजॉय कीजिएगा।
1: थैंक यू, बाय, अपना ख्याल रखना भी।
0: सेम टू यू, आप भी अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, और यूं ही मुस्कुराती रहिए, बाकी प्यारा से गाना एंजॉय करिएगा। मैं वापस आती हूँ एवरीवन।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
3: सारा काम मुझे करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी।
4: अरे तो छोटू, ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
5: कौन है ये?
4: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 3 से 5 मंडे टू सैटरडे करती है आपसे दिल की बात।
6: अभी बजाएगा ना भिड़ो।
4: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
7: बिल्कुल दोस्तों, आप कॉल तो लगाइए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके फोन कॉल का। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी खुशी, एंड वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 3:58, और आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना पायल देव और साथ में जुबिन नौटियाल जी की खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत गाना। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
8: नमस्ते।
7: आपको भी नमस्ते, अपना नाम बताइएगा सर।
8: जिला मुरादाबाद चौराहा गोविंदपुर प्रदेश से राजा हसन बोल रहा हूँ मैम।
7: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
8: हम ठीक है, आप कैसे खुशी मैम?
7: हाँ जी, हम तो खुश हो जाते हैं जब अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं से बातें कर लेते हैं।
8: जी बिल्कुल, हम भी बैठे रहते हैं आपसे बातें करने के लिए।
7: जी सर बताइएगा, आज क्या फरमाइश है आपकी?
8: गाने के बोल रहे हैं, काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में।
7: ओके, तो सुनवाते हैं प्यारा से गाना। हाँ जी बताइएगा। ठीक है सर, सुनवाते हैं खूबसूरत गीत। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक और आप भी मुझे कॉल कीजिएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896, 9838 96 98 378 96 896। अब तो इजीली आप कॉल लगा पाएंगे ना, मैंने नंबर भी स्लोली बताया है आपको। अभी गाना सुनिएगा, बस मैं आती हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: 76 पर खुशी है आपके साथ और वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 4:05। देखिए पता नहीं चल रहा है ना कैसे घंटे का सफर कंप्लीट हो गया है। और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गाना कुमार सानू जी की आवाज में फ्रॉम द मूवी मोहरा से। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई मैम? हेलो फरमाइश। जी वालेकुम सलाम।
1: मैं रामपुर से शबनम जी बात कर रही हूँ।
0: जी बताइएगा शबनम जी कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो? मुरादाबाद में सभी लोग
0: एफ एम मुरादाबाद में सभी प्रेजेंटर्स बहुत ही अच्छे हैं। शबनम जी आप बताइएगा आप कैसी हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं दीदी, आप बताइए। बस काम सब कर रहे थे, हमने सोचा कॉल लगाई जाए।
0: अरे वाह दीदी, क्या बात है। देखिए काम करते करते कॉल भी लगा लिया आपने, आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। हाँ
1: जी
0: जी, बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी मैम?
1: दीदी आज फिल्म का नाम है छुपा रुस्तम और गाने पे बोल है प्यार में दिल को सब देते हैं जान तुम्हें दे देंगे।
0: ओहो ये बात है
1: बिल्कुल दीदी
0: जी, तो ये गाना आप इनके साथ सुनना चाहती है शबनम जी, बताइएगा।
1: दीदी हमारे साथ में कुछ लोग हैं जैसे नेहा भी है, लायबा काजी है, अफरोज फातिमा भी है। और दीदी मैं ना ये कहना चाहूंगी, मुझे ना इनकी अफरोज आपी की और लायबा आपी की बातें मुझे बहुत प्यारी लगती है। इनसे बात तो नहीं हो पाती है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है इन दोनों लड़कियों की बातें।
0: अच्छा तो जब इन दोनों लड़कियों का कॉल आता है तो आप ध्यान से सुनती हैं? हाँ
1: ध्यान से सुनती हूँ मैं।
0: ओके चलिए बहुत अच्छी बात है मैम, ऐसे ही इंजॉय कीजिएगा और सुनिएगा ये खूबसूरत सा गीत। आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया।
1: ओके बाय
0: बाय। तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप ही कॉल लगाइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी छुपा रुस्तम। और आप सभी की फरमाइशें जब हम सुनते हैं ना तो अच्छा लगता है, एंड सबकी चॉइसें अलग होती हैं लेकिन बहुत प्यारी होती हैं, अच्छा लगता है हमें। तो दोस्तों आप भी मुझे कॉल लगाना चाहते हैं ना तो बेफिक्र होकर लगाइए, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और हमारी अगली कॉलर भी हमारे साथ जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: फरमाइश। हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू मैम।
1: थैंक यू सो मच।
0: मोस्ट वेलकम। बताइएगा कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी हूँ
0: और बहुत खुश हूँ, आज मेरा बर्थडे है।
1: हाँ। अब दिन जाने वाला है, बर्थडे निकलने वाला है।
0: या एक्चुअली मैम जो बर्थडे होते हैं ना तो अलग ही खुशी होती है।
1: और दिन भी एकदम निकल जाता है,
0: पता ही नहीं चलता। हाँ जी एग्जैक्टली। एंड रात को 12 बजे से नींदे उड़ जाती है क्योंकि सबके मसे जाने शुरू हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और बताइएगा परिवार में सब कैसे हैं आपके मैम?
1: सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है
0: जी। अपना नाम भी बता दीजिएगा आप, क्योंकि ऑडियंस हमारी सुन रही है।
1: मैं नेहा बात कर रही हूँ, सॉरी।
0: नेहा जी,
1: आपसे बात करते करते पता ही नहीं चलता है कि हम इतने फ्रेंडली हो गए कि अच्छा लगता है।
0: अच्छा नाम लगता है। भूल गए। हाँ वो होता है जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना तो एक्साइटमेंट में हो जाता है जी। बताइएगा नहीं मैम, आज हमारे साथ आप जुड़े हैं एंड आज आपका बर्थडे भी है तो कैसा दिन गुजर रहा है?
1: अच्छा गुजर रहा है। वैसे तो ज्यादा फैमिली मेंबर भी नहीं है मेरी फैमिली में, बस फिर भी अच्छा रहता है दिन।
0: ओके।
1: रोज भी ज्यादा काम नहीं रहता, सही रहता है।
0: और आपके बेटे भी हमें सुनते हैं एंड आप बताते हैं उनके बारे में, कभी ट्यूशन जाते हैं?
1: बहुत फैन है आपके।
0: अरे मैम थैंक यू सो मच।
1: मैम कब हमारा गाना चलाएंगी, कब हमारा मैसेज पढ़ेंगी, ये टेंशन रहती है। अब अम्मा हमारा गाना नहीं चलाया मैम ने, एक बार आपने हमारा गाना चलाया नहीं ना।
0: हाँ
1: तो वो थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं। मम्मा हमारा गाना नहीं चलाया। मैंने क्या, कोई बात नहीं बेटे, मैसेज तो पढ़िए ना, हमारा गाना नहीं चलाया कोई बात नहीं।
0: अच्छा ठीक है, हम उनका भी ध्यान रखेंगे। और इतने ध्यान से मतलब आप तो खुश होते ही है लेकिन आपके बच्चे भी खुश होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। आज बताएगा आप क्या सुनना चाहेंगी?
1: आज मैं मेरे भाई के लिए कोई सॉन्ग सुनूंगी।
0: या डेफिनेटली बताएगा।
1: मेरा भाई तू मेरी जान है वाला।
0: अच्छा ओके, क्या नाम है आपके ब्रदर का?
1: नदीम
0: जी के लिए सुनना चाहते हैं आप?
1: जी जी। रहता बहुत दूर है मेरा भाई, मैं का मेरा काशीपुर का है।
0: ओके
1: तो इसलिए मिस कर रही हूँ ना आज अपने फैमिली को।
0: हाँ क्योंकि भाई तो होते हैं जो सारी तैयारियाँ करते हैं बहन की बर्थडे पर, स्पेशल बनाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। सरप्राइज, कभी कभी तो सरप्राइज केक आता था कि हाँ आज केक लेकर आया हूँ, चल केक काटेंगे।
0: वो वाली फीलिंग्स, वो वाली खुशी ना अलग ही होती है मैम।
1: बिल्कुल अलग होती है।
0: या तो चलिए सुनवाते हैं ये ट्रैक आपको। थैंक यू सो मच आपने कॉल किया एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू मैम।
1: थैंक यू सो मच।
0: आप हमेशा खुश रहिए और ऐसे ही हमें भी कॉल करती रहिए, बाकी एंजॉय कीजिएगा लाइफ को।
1: आप भी हमेशा खुश रहिए।
0: थैंक यू मैम। तो चलिए नेहा जी की पसंद पर सुनते हैं एक अमेजिंग ट्रैक उनके ब्रदर के लिए। और एवरीवन आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। बिना किसी देरी के कॉल लगाइएगा आप मुझे, मैं इंतजार कर रही हूँ। और फिलहाल ये गाना सुनिएगा।

0: गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है आपका हेलो फरमाइश शो में। मैं खुशी आपके साथ है। और अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना सृष्टि की आवाज में, मेरा भाई तू मेरी जान है। और सच में भैया भाई जो होते हैं ना, वो बहुत प्यारे होते हैं। वो दिखाते हैं ऐसे कि हम बहुत स्ट्रांग हैं एंड मैं मतलब बोलना चाहती हूँ भाइयों के लिए कि वो नटखट भी होते हैं लेकिन बहुत प्यार भी करते हैं और बहन की सारी विश पूरी करते हैं। वो खुद चाहे कितने भी परेशान हो लेकिन वो बहन को कभी ऐसा फील नहीं होने देते हैं कि नहीं हम परेशान नहीं हैं, हमें टेंशन नहीं है। वो हमेशा मतलब बहनों के लिए ना अपने हर गम को भूल जाते हैं और उनकी खुशी में वो खुश हो जाते हैं। बहन किसी भी चीज़ के लिए अगर विश करती है तो वही चीज़ उनकी नज़रों के सामने आ जाती है। और बहन भाई का जो रिश्ता होता है ना, सबसे अनमोल होता है, सबसे खूबसूरत होता है। और इस रिश्ते में ना मैं भी बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे जो दो दो ब्रदर हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यार करते हैं एंड आई एम वेरी लकी गर्ल। चलो अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? हेलो फरमाइश, अपना नाम बताइएगा सर।
1: बढ़िया, आप कहते हैं?
0: मैं तो ठीक हूँ, अपना नाम बताइएगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं सबूर भाई, मंसूरी ग्राम चोरा, तहसील मिलक, जिला रामपुर, आखर वाली गली, मोहल्ला नंबर 2 से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप और क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश है बंटवारा फिल्म।
0: हाँ जी,
1: तो मेरा कौन लागे गाने के बाद?
0: अच्छा ठीक है सर, ये गाना हम आपको सुनवाते हैं।
1: और कुछ दोस्त हैं?
0: हाँ जी।
1: तो लैंप पे है?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, आप हमारे साथ लाइव बातचीत कर रहे हैं, आपको तमाम श्रोता इस समय सुन रहे हैं सर।
1: जी जी हाँ, तो कुछ दोस्त हैं?
0: हाँ जी बताइएगा।
1: तौफीक मंसूरी
0: जी,
1: हिरासत मंसूरी,
0: ओके,
1: मलिक मंसूरी, और सकाबत हुसैन मंसूरी।
0: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गाना, आप एंजॉय कीजिएगा। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, और आप भी सुनना चाहते हैं कोई ट्रैक तो हमें डेफिनेटली कॉल कीजिएगा। बाकी अगर आप मुझे ऑन द वे सफ़र में सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत फ्रॉम द मूवी बंटवारा, जो 1994 में आई थी। और इस खूबसूरत गीत को गाया था अनुराधा पौडवाल जी ने, साथ में अलका याग्निक जी और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में। म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और लिरिक्स थे हसन कमाल जी के। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। जय श्री राम। आपको भी सर, अपना नाम बताइएगा।
1: मैं दुर्गा सहनी बोल रहा था।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बस मैम बढ़िया हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं सर। बताइएगा, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं काफी समय की बात, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी मैम, हमें टाइम ना मिल पाता। आप तो फिलहाल घर में हैं, तो आई फोन लगाई तो आई लग गई।
0: जी बहुत अच्छी बात है।
1: फिलहाल में हम लगाते हैं तो लगी जाती है।
0: जी जी जी, हमारे पुराने लिसनर जो हैं आप, और आज आपने काफी समय की बात कॉल किया है, तो बताइएगा कौन सा गीत सुनना चाहते हैं सर?
1: जी वही गाना सुनना था हमें, जिस दिन तेरी मेरी बात ना होती दोस्ती के ऊपर।
0: अच्छा, मुस्कान फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जी मैम।
0: जी, और आपके दोस्तों का नाम बता दीजिएगा आप।
1: बबलू सैनी।
0: अच्छा, जो ओके, एक ही फ्रेंड है आपकी जो मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं, उनके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जी मैम।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं। आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। लौट कर मैं वापस आने वाली हूँ इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। आप भी कॉल लगाइएगा

0: बिल्कुल दोस्तों, देखिए दिल तो हमारा भी नहीं लगता है आपके बिना, तभी हम चले आते हैं एवरी मॉर्निंग एंड एवरी डे आपसे बातचीत करने के लिए। और आपका अपना फेवरेट शो लेकर मैं हाजिर हूँ, हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप मुझे कॉल लगाते हैं, अपना फेवरेट गाना सुनते हैं, अपने सफर को सुहाना बनाते हैं। और ये प्यारा सा गाना अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी मुस्कान से, उदित नारायण जी अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में खूबसूरत ट्रैक आपने सुना। बात कर लेते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्कार। मैं,
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, अपना नाम बताइएगा।
1: जी मैं तीरथ में बात कर रहा हूँ, गांव फरैदी, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सो?
1: मैम आप सुनवाइए, मुरादाबाद में सभी स्टाफ किस प्रकार
0: है? हाँ जी, सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं सर, आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: हरियाणी गाना सुनना है और हमारे घर वाले भी कुछ सुनेंगे।
0: हाँ जी, हाँ जी बताइएगा।
1: जैसे कि हमारे पापा चंद्रपाल सिंह, हमारी माता सरोज देवी,
0: हाँ जी,
1: हमारी राखी और हमारे दो बेटे हैं अनुज प्रशांत।
0: ठीक है, आपके पूरे परिवार के साथ सुनवा दें गाना, आप एंजॉय कीजिएगा सर।
1: जी कुछ कहना चाहेंगे मैम, इधर जो है रेडियो पर रेंज नहीं आ रही है।
0: ओके,
1: हाँ बहुत धीमा सुनाई दे रहा है।
0: ठीक है, ठीक है सर, हम प्रयास करते हैं कि आपको प्रॉपरली क्लियरली सुनाई दे। ठीक है
1: जी,
0: तो चलिए फिर सुनते हैं एक अमेजिंग ट्रैक, हरियाणवी गाना, और रिंकू पवार जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत ट्रैक मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, आप सब एंजॉय कीजिएगा और मैं वापस आती हूँ, तब तक आप भी कॉल लगाना, बिल्कुल भी मिस मत कर जाना।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण QBS रोबोट एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पाए बेहतर संतुलन, सटीक सर्जरी और प्राकृतिक मूवमेंट का अनुभव। 15 वर्षों का अनुभव वरिष्ठ ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा रोबोट से नी रिप्लेसमेंट की सुविधा। पहले 10 रजिस्ट्रेशन पर रोबोटिक चार्ज बिल्कुल फ्री। अब अपने घुटनों के इलाज को दे रोबोटिक।

0: गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत करती है आरजी खुशी एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शुभ नाम हेलो फरमाइश है और अभी आपने सुना हरियाणवी ट्रैक। रेडियो को पवार जी की आवाज में बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी सर, नमस्कार, अपना नाम बताइएगा।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार, अपना नाम बताइएगा सर।
1: मेरा नाम साहब शंकरलाल यादव है, मैं प्रकाश नगर चौराहे गली नंबर 2 से बोल रहा हूँ
0: जी। बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आपकी।
1: रब ने बना दी जोड़ी।
0: अच्छा, और ये खूबसूरत से गाना आप किन के लिए सुनना चाहते हैं?
1: ये साहब आपके पूरे परिवार के लिए सुनना चाहता हूँ और मेरे बच्चे हैं, बहुत याद करते हैं आपको
0: जी।
1: मैं नमन यादव है।
0: हाँ,
1: नमन यादव है, यादव है, विनायक यादव है और दक्ष यादव है।
0: अच्छा, ठीक है सर, आपके पूरे परिवार के साथ सुनवाते हैं आपको ही पसंद का एक खूबसूरत सा गीत। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका।
1: नहीं, आपका भी बहुत धन्यवाद था, बहुत दिनों बात हुई मेरी आपकी।
0: जी सर, काफी टाइम के बाद आपने बात की है हमसे, तो सुनिएगा ये प्यारे से गाना अपने परिवार के साथ। और दोस्तों सुनवाते हैं मोहम्मद रफी साहब जी साथ में आशा भोसले जी की आवाज में एक खूबसूरत सा गीत।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद, और देखिए खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं फरमाइशी का। ना फरमाइशों का यही फायदा है कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक सॉन्ग सुनने को मिलते हैं, तभी तो सफर का पता नहीं चलता है ना कैसे कंप्लीट हो जाते हैं। और अभी बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, सत श्री अकाल
1: जी।
0: हाँ जी, असी तो वधिया है जी, तुसी दसो की हाल चाल।
1: मैं भी वधिया जी।
0: नाम दसो की हैगा?
1: नाम मेरा ईशान जो सिंगर।
0: ईशान जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं फिलहाल इटली इटली तो बोल की था
0: ना। हाँ जी, इटली में आप अभी राइट नाउ हैं, तो बताइएगा वहाँ का मौसम कैसा है सर, और इटली का कुछ पॉपुलर आप मुझे बताइएगा।
1: मौसम बढ़िया, इधर बढ़िया मौसम।
0: ओके।
1: ठंड आ रही है, ठंड आ रही है।
0: हाँ जी, विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है।
1: और बढ़िया, बाकी इटली खाना पीना अच्छा, काफी पिज्जा बहुत फेमस है
0: ओके okay, जी तुसी खाने हो पिज्जा?
1: पिज्जा वगैरह खा ली था इधर कर लूं।
0: चलिए अच्छी बात है। और वहाँ का टाइमिंग क्या है, अभी क्या टाइम हो रहा है वहाँ पर?
1: टाइम अभी इधर टाइम मैम अभी 1:30 बज गए, 1:30 हो रहे हैं।
0: ओके, 1:30 हो रहे हैं। तो बताइएगा सर, आप इटली में रहकर एफएम मुरादाबाद सुनते हैं, कैसा लगता है आपको?
1: बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता है,
0: बढ़िया लगता है जी। थैंक यू, थैंक यू सो
1: जी।
0: मच। बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं ईशान जी?
1: आप लगा दीजिए, आप लेजेंड सिद्धू मूसेवाला का।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ट्रैक, आप एंजॉय कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच आपने कॉल किया।
1: जी जी जी
0: ओके जी, तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक एंड ईशान जी की फरमाइश पर। और मैं बस वापस आती हूँ इस अमेजिंग ट्रैक के उस पर। आप कहीं मचाइए, बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: आपने अभी ये सुना लेजेंड ट्रैक एंड सिद्धू मूसेवाले जी का, और अभी तो मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, लेकिन हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे मिलूंगी टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, केयरफुली ड्राइविंग कीजिए और प्यारी सी स्माइल रखिए। देखिए ऑफिस में माना कि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, लेकिन ऑफिस की टेंशन ना ऑफिस में ही छोड़ दीजिएगा। एंड अगर आप घर जा रहे हैं तो एकदम कूल माइंड के साथ घर जाइए, क्योंकि सब आपका इंतजार कर रहे हैं। और जब घर जाएं तो कुछ लेकर भी जाएं, ठीक है? अपना मुंह भी मीठा कीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स का भी मुंह मीठा कराइए। जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन होता है, कोई ओकेजन हो तभी हम कुछ लेकर जाएं। एंड हर एक डे स्पेशल होता है, और आज तो वैसे भी 1 अक्टूबर है एवरीवन, तो खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, है ना? 1 तारीख आते ही लगता है ना कि यार स्पेशली होता है, क्योंकि सैलरी जो आने वाली होती है। चलिए एंजॉय कीजिएगा अपने सफर को, एंड नेक्स्ट शो लेकर हाजिर होने वाली है रीना जी इवनिंग मस्ती, जहां पर होंगी ढेर सारी बातें इन्फॉर्मेशन, तो मुझे दीजिए जाने की अनुमति। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग।
1: रिया हासिल की है और कई नए आयाम जोड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होना चाहिए। नई दिल्ली में आज रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने रक्षा लेखा विभाग की कई सूचना प्रौद्योगिकी पहलों की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य रक्षा मंत्रालय के भीतर वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करना है। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तक कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का 5वां संस्करण इस शनिवार से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय बदलाव के दौर में लचीलापन रखा गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महामंथन में 180 से अधिक नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और वैश्विक विचारक एक मंच पर जुटेंगे। इनमें करीब 30 देशों के 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समारोह के पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उद्घाटन भाषण देंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी 1 दिन 1 घंटा 1 साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली के सफदरजंग मकबरे में आयोजित अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि स्वच्छता केवल 1 दिन का अभियान नहीं बल्कि प्रतिदिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
2: 2017 से पहले भी रेलवे स्टेशन देखते थे, आज बहुत से लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे घूमने जाते हैं। तो ये जो वातावरण चेंज हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, साफ सफाई की प्रति सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है भारत में, तो ये भारत के बच्चे ध्यान रखते हैं।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि जीएमसी बाल योगी संसदीय गरिमा, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रेरणादायक विरासत हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। श्री मांडविया ने देश भर के सभी शारीरिक शिक्षा पेशेवरों से इस पोर्टल पर पंजीकरण करने का आग्रह किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों के स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबेल ने रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। उधर स्क्वैश में भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने श्रीलंका को और हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण 22 रजत और 32 कांस्य सहित 64 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

ओ बिल्ली बिल्ली अख गोरी, ये बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है जी। आर्जुरीना के साथ आप कनेक्ट है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। शाम का वक्त है और आज पहली तारीख है और सच में बड़ा ही सुहाना मौसम है, यानी कि धूप के साथ साथ कड़ाके वाली गर्मी भी है ना। हाँ मुझे पता है गर्मी भी है बाहर, लेकिन सुबह और शाम का जो वेदर है एकदम चेंज हो जाता है। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे चाय की चुस्कियों के साथ, और आप ट्रैफिक में हैं तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हैं। शाम का शो ये धमाकेदार वाला शो, और आज की तारीख 1 अक्टूबर कहते हैं ना, यानी कि पहली तारीख हर किसी को इंतजार रहता है पहली तारीख का, क्योंकि अक्सर हम कुछ भी शुरुआत करते हैं पहली तारीख से ही करते हैं और पहली तारीख को ही हमारी सैलरी आ जाती है, और जिनके जिनके अभी सैलरी नहीं आई है वो 5 तारीख तक तो आ ही जाती है। तो आप जब सबसे पहले आपकी पहली सैलरी आती है तो आप उसका क्या करते हैं वो आपने हमें बताना है। नंबर है 9837896896 पर। फिलहाल हम आप सभी के साथ 2 घंटे रहेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें, आपने कहीं नहीं जाना है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है। ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे, क्योंकि दिल का टेलीफोन अब बोल चुका है भैया, इसलिए बोल रहे हैं हम दिल के साथ कनेक्ट हो जाए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:19 हो चुके हैं और आज की तारीख 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास डे मनाया जाता है। अगर आपने आज उनके साथ बैठकर कॉफी नहीं पी तो भैया आज आपकी शामत आने वाली है। सोच लीजिए मैं क्या कहने जा रही हूँ। फिलहाल हम बात करते हैं, शाम का समय है, सड़कों पर आवाजाही बढ़ने लगी है और ऐसे में ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। लेकिन नियम तोड़ने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट ना लगाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और लाल बत्ती पार करने वालों पर चालान किया जा रहा है।

क्या बात है जी, पति पत्नी और वो दो वाले से आपने मूवी से बहुत ही शानदार वाला गाना एंजॉय किया है, दिल वाले चोर। और अब हम बात करते हैं चाय की टपरी पर। अय हाय, यानी कि आज का डे सच बताऊं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज दो डे बहुत ही स्पेशल है जो इंसान के जिंदगी में ना, सच बताऊं कितना भी परेशान कितना भी टेंशन क्यों ना हो, जब ये दोनों साथ में होता है ना तो रिलैक्स फील करता है इंसान। इंसान थका हुआ हो तभी भी बस बोलता है कि एक कप मिल जाए और उसके साथ कुछ गुनगुनाते हुए और भी शानदार हो जाती है ये शाम। तो शाम का वक्त है, दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब अगर हाथ में गर्मा गर्म कॉफी और साथ में आपका कोई फेवरेट वाला, फेवरेट वाला समझ गए ना, पर्सन है, तो भाई शाम अपने आप स्पेशल हो जाती है। खास पसंदीदा इंसान है आपके साथ ना, तो सच बताऊँ ये शाम अपने आप बहुत ही सुहानी। अगर आपके साथ आपका पसंदीदा इंसान है और पसंद वाला गाना, फिर तो बात ही अलग हो जाती है। लेकिन अगर असली मज़ा तब आता है जब एक दूसरे कहे कि चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं और दूसरा बोले हाँ चलो बिल्कुल चलते हैं, और वहाँ जाकर कॉफ़ी पीते के लिए तो हम बैठ जाते हैं, आधा घंटा तो हमारा इसमें निकल जाता है। अच्छा पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट कौन करेगा, इस चक्कर में हमारा आधा घंटा निकल जाता है, बहस पूरी छिड़ जाती है। फिर उसके बाद थक हार के बोलते हैं चलो यार हम ही पेमेंट कर देंगे, चलो तुम ऑर्डर तो करो, पेमेंट हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा लड़ाई करने के बाद, क्योंकि आधा घंटा इसी कन्वर्सेशन में निकल जाता है, अच्छा क्या मंगाना है, इसका पेमेंट कौन करेगा, क्या आप भी ऐसा करते हैं, तो आप ऐसा करते हैं ना तो मैसेज करके हमें बताइए, नंबर है 9837896896। अक्सर दोस्तों के साथ जाते तो यही होता है, लेकिन जब पसंदीदा इंसान होना

तो फिर तो क्या भैया, कलेजा फेफड़ा गुर्दे हर चीज बेच देंगे, लेकिन कॉफी की क्या ही बात है, 2 कप एक्स्ट्रा पिला देंगे ये चीज हो जाती है। तो आज का डे हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि इंटरनेशनल म्यूजिक डे और साथ ही साथ कॉफी डे दोनों आज मनाया जाता है। तो अगर आप कॉफी पीने की प्लानिंग बना रहे हैं ना, तो मैं कहती हूँ जाइए, जरूर पी कर आइए, और 1 कप नहीं बल्कि 2-2 कप पीजिएगा कॉफी, और साथ में पसंद वाला गाना मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। लेकिन वो गाना पता है आपको कहाँ मिलेगा? हमारे रेडियो पर ही मिलेगा, इसीलिए रेडियो का वॉल्यूम है ना कम नहीं करना है, और रेडियो की सुई इधर उधर नहीं घुमाना है, बस चाय की कॉफी पे करनी है और रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाना है और मजा आने वाला है आपको। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं हम आप सभी के साथ और करेंगे ढेर सारी बात।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आज रीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूं तो 5:38 हो चुके हैं। और आज यानी कि देखिए 1 तारीख है, और 1 तारीख अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होता है, क्योंकि 1 तारीख के बाद जब सैलरी मिल जाती है ना, तो हम दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाते हैं, या फिर जो घर से बाहर रहते हैं वो अपना रूम रेंट देते हैं, बिजली का बिल, हर चीज़ का हिसाब किताब करते हैं, है ना। लेकिन हिसाब किताब से मुझे याद आया, जो कल का मैच हुआ था यानी कि ODI मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ, एकदम झकास वाला मैच था। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप चैलेंज लेकर उस काम को करते हो ना, तो आपका जो चैलेंज है, जो आपका फोकस है, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ही होता है, और उसमें आप सक्सेस भी होते हो। तो कल यानी कि भैया वेस्ट इंडीज़ ने 405 रन बनाए, और हमारी इंडिया ने भी इस मैच को धमाकेदार का टक्कर दिया था। यानी कि टीम इंडिया ने अपने 52 साल के वनडे इतिहास में पहली बार 400 रन ऊपर का टारगेट चैलेंज लिया। यानी कि 52 साल होने के बाद, वनडे मैच में 52 साल के बाद उन्होंने 400 रन बनाए, यानी कि 406 हमारी टीम इंडिया कल जीत गई। और इसका फाइनल मैच होने वाला है 3 अक्टूबर को, यानी कि परसों। तो फाइनल मैच, हाँ जी, मुझे पता है कि आप देखने के लिए बिल्कुल उतावले हो रहे हैं, लेकिन सब्र रखिए, कल का दिन और है, उसके बाद आप इंजॉय करिएगा। लेकिन आज मैंने आप सभी से यही पूछा है कि कभी आपने किसी को बोला है कि चलो 2 कप कॉफ़ी पी कर आते हैं। अच्छा, कॉफ़ी पीने से होता क्या है आप बताइए। आज मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आवाज़ में हमें रिकॉर्ड करके भेजिए, या फिर मैसेज करिए कि कॉफ़ी पीने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नहीं होता है, वो आप बताइए। फिर मज़ा आएगा ना, क्योंकि आपकी आवाज़ भी तो सब तक पहुँचनी चाहिए। हेलो रीना जी, इनका कहना है ये तो नॉर्मल बात है, ऐसा ही होता है जब हम चाय पीने जाते हैं या फिर हॉस्टल में, रेस्टोरेंट में कुछ भी खाने जाते हैं, तो यही बहस होती है कि भैया कौन पिलाएगा कॉफ़ी चाय, ये बताओ पहले, इसी में डिस्कस होती है। और इनका कहना है कि कॉफ़ी पी लीजिए, बताइए व्हाट्सएप पर ये कॉफ़ी की फ़ोटो भेजते हैं, बताइए कैसे मैं पी सकती हूँ, जो कि मुझे कॉफ़ी बेहद पसंद है। अच्छा, आपको कौन सी वाली कॉफ़ी पसंद है, मिल्क वाली या फिर ब्लैक वाली? आप चलिए और मत पूछिए, और क्वेश्चन छोड़िए, आपने इसी का जवाब देना है कि आपको ब्लैक कॉफ़ी पसंद है या मिल्क वाली कॉफ़ी पसंद है। जल्दी जल्दी मैसेज करके बताइए, नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है कि आपको मिल्क वाली कॉफ़ी पसंद है या फिर ब्लैक वाली कॉफ़ी पसंद है। सोच लीजिए और मैसेज भेज दीजिए, मैं क्या बात है जी। और चलिए एक और गाना सुनवाते हैं आप सभी को, और देखिए गाने कॉफ़ी पी और ये वाला गाना चल जाए तो और भी शाम बहुत ही सुहानी हो जाती है ना।
3: कनेक्शन तो एक हो जाए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: और आज देखिए एक तारीख है और बहुत से नियमों में चेंज आ गए हैं। तो बस देखिए, दिवाली का त्योहार भी बहुत ही नजदीक है और ये कहा जा रहा है दिवाली के मौके पर आप कौन से पटाखे हैं वो नहीं बजा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि मैंने आप सभी से आज यही पूछा है कि आपको ब्लैक कॉफी ज्यादा पसंद है या फिर मिल्क वाली कॉफी सबसे ज्यादा प्रेफर आप करते हैं, क्योंकि इसके बारे में बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिलहाल एक मैसेज की अगर मैं बात करूं तो गुड इवनिंग रीना जी। रीना जी, आपको, पूरी टीम को और सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं संगीत वो खूबसूरती जुबान है जो बिना कुछ कहे दिल की सारी बातें सुन लेता है, चाहे गम हो चाहे खुशी हो, हर चीज बयां कर देता है, एक अलग ही एहसास होता है। वैसे ही आपकी इवनिंग मस्ती शो है, आपकी प्यारी बातों और सवालों का खूबसूरत गाने के हमारी शाम अपने आप ही दुगनी बन जाती है और संगीत की मिठास आपकी जिंदगी में हमेशा बनी रहे, चेहरे की मुस्कान हमेशा खिलती रहे। क्या बात है जी, बहुत ही प्यारी आप लाइनें लिखते हैं, सच में बड़ा ही मजा आ जाता है। रीना जी, आपकी मुस्कान हमेशा यूं ही बनी रहे, आपकी आवाज जिंदगी में हर दिन खुशियों भरा हो। थैंक यू सो मच जी। वंस अगेन एक बार और कहना चाहते हैं कि सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रीना

आपने ब्लैक कॉफी के बारे में पूछा है तो कॉफी मेरी फेवरेट वाली है और मैं हर सुबह सबसे पहले ब्लैक कॉफी लेता हूँ, उसके बाद ही कुछ खाता पीता हूँ। ओके जी, वो भी बिना चीनी और दूध के। मुझे लगता है कि बिना चीनी वाली ब्लैक कॉफी वजन कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं, कर सकती नहीं ये करती है, सकती नहीं बोल सकते उसको क्योंकि करती है। और साथ ही साथ बहुत प्यारी आपने लाइन लिखी है, थकान सुस्ती और आलस दूर करने को एक तरोताजगा महसूस करा देते हैं। बिल्कुल जी, ये सही कहा कि कभी आपको एनर्जी आपकी लो फील होती है ना तो ब्लैक कॉफ़ी पीकर देखिएगा, एकदम एनर्जी आती है आपके अंदर। बहुत से कहते हैं ना कि नहीं यार हम कुछ और ही ले लेते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। कुछ और क्या होता है आज तक समझ नहीं आया भैया, लेकिन मैं कहती हूँ ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीजिए। आपके अंदर जो आलस है, पूरा दिन लग रहा है कि भाई लेजी लेजी फील हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, हाथों में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, तो एक कप ब्लैक कॉफ़ी, नो शुगर नो मिल्क, और देखिए फिर आपकी शुरुआत कितनी ताजगी भरी हो जाती है। और मुझे लगता है कि देखिए मीठी जो चीज़ें हैं, चीनी वगैरह जितना आप छोड़ेंगे उतना ही सही रहेगा, क्योंकि मीठी अगर आप कॉफ़ी पीते हैं या फिर चाय पीते हैं तो वो वज़न भी बढ़ाता है। तो इसीलिए बाकी जिनको ब्लैक कॉफ़ी और मिल्क कॉफ़ी पसंद है तो वेल डन, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी बेस्ट। हाँ, इनका पूछना है कि आपको ब्लैक कॉफ़ी पसंद है या फिर दूध वाली कॉफ़ी पसंद है। देखिए सर, मूड के ऊपर डिपेंड करता है, मेरा तो दोनों ही फेवरेट हैं मेरे तो, सच बताऊँ तो। लेकिन सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर मैं करती हूँ, उसके बाद तो मुझे मिल्क वाली भी कॉफ़ी मिल जाए तो चलता है, लेकिन कॉफ़ी होनी चाहिए। मिल्क हो या ब्लैक हो मैटर नहीं करता है, बस चीनी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। चलिए फिलहाल ये गाना इन्जॉय करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे 1 अक्टूबर और साथ ही साथ दिवाली के मौके पर बताया जा रहा है कि भैया अगर आपने बम फोड़े तो आपके ऊपर हो जाएगा भवाल, बौकाल मच जाएगा।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं, लेकिन फिलहाल आज 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर के बाद अगर आप सोच रहे कि फ्रिज एसी कूलर लेने की, तो अब आपको पड़ सकती है भारी, क्योंकि 8% की बढ़ोतरी कर दी गई है। और वहीं अगर सिलेंडर की बात करूँ तो 70 रुपये महंगा, यानी कि 70 रुपये फिर से बढ़ा दिया गया है। सोचिए, समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें इतनी महंगी क्यों होती है, और वो भी फेस्टिवल सीजन आते ही आते हर चीज़ महंगी हो जाती है। मुझे लगता है अमीर हो गरीब, हर किसी घर कढ़ाई चलनी चाहिए और हर घर के आगे पटाखे उड़ने चाहिए। पटाखे की बात आई तो पटाखे के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले म्यूजिकल ब्रेक, और म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से हम आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल क्योंकि देखिए दिवाली का फेस्टिवल है और अभी 1 महीना है, तो आराम से घर की सफाई भाई अच्छे से कर लीजिएगा। हाँ हाँ, जिनके घर में सफेदी होने हैं वो भी कर ही रहे हैं, तो करिए करिए भैया, अच्छे से करिए।
1: हमेशा बिजी क्यों?
0: ये हमारे साथ गुलाम जिलानी पासा से कनेक्ट हो गए हैं, कुंदर की पासा से। ओके जी, चलिए फिलहाल कुछ म्यूजिक का यानी कि न्यूज ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट होती हूँ और करेंगे ढेर सारी बातें।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
3: आवश्यक सूचना, 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
4: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
6: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
4: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
7: जी सर, ब्रोंज के साथ 64 मेडल्स भारत के हो चुके हैं, और इसी के साथ हमें घड़ी की सुइयां ज्यादा इजाजत नहीं दे रही है श्रोताओं, तो इसी के साथ प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे अमीषा पटेल और मुझे अनु गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
8: खेल खिलाड़ी खेलों का
9: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
10: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
9: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी 1 दिन 1 घंटा 1 साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 571 अंक कम होकर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 पर दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 32 कांस्य पदकों के साथ 65 पदक लेकर 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। और बात करूँ तो देखिए, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, 6:10 हो चुके हैं और आरजे रीना अब आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है कड़क अपडेट के साथ। और कड़क अपडेट क्या है जरा उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दिवाली के मौके पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि भैया पटाखे ना उड़ाए। मतलब पटाखों के बिना तो दिवाली हमारी अधूरी रह जाती है। लेकिन जहां तक आप रील्स देखते हो या फिर गलत न्यूज देख लेते हो, तो आपने इस चीज से डरना नहीं है, क्योंकि आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो। ठीक है जी, ये कहा जा रहा है कि दिवाली के मौके पर पटाखों के ऊपर प्रतिबंध, यानी कि पटाखे जलाने से मना नहीं किया जाएगा, आप पटाखे उड़ा सकते हो, लेकिन एक समय सीमा की तय, यानी कि समय रखा जाएगा कि इस टाइम तक आप पटाखे उड़ा सकते हो समय सीमा के अनुसार। अदरवाइज अगर समय सीमा का आपने उल्लंघन किया तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कौन मानता है भैया, दिवाली है और दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं, है ना, यही सोच रहोगे आप सब। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी रात ही पटाखे फोड़ेंगे आप, 12-1 बजे के बाद तो आराम से हर इंसान सो ही जाता है। तो पटाखों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बस समय के अनुसार बताया गया है कि आप समय के अनुसार ही पटाखे जला सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो भैया पटाखे हैं ना, एक बार उड़ने के बाद तो कान भी सनसनाहट हो जाती है, एक सेकंड के लिए तो कुछ सुनाई नहीं देता है कि क्या सुन पा रहे हैं हम या नहीं सुन पा रहे, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। तो उस तरीके के जो पटाखे हैं उसको आप भी ना उड़ाएं, आप भी उनसे बचें। और जो बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनका भी ध्यान रखिए, बच्चों का भी ध्यान रखिए। और खासकर बच्चों का इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि ये पटाखे कितने हार्म है कितने हार्म नहीं है। तो उनको हो सके तो फुलझड़ी वाली होती है ना, मैं तो अभी भी फुलझड़ी वाली उड़ाती हूँ यार, सच में मुझे बड़ी बहुत डर लगती है बड़े बड़े पटाखे जो होते हैं, मैं तो जाती भी नहीं हूँ वहाँ पे, दूर से ही देख लेती हूँ। मैं हमेशा फुलझड़ी वाली पटाखे उड़ाती हूँ। और पहले के टाइम में ना वो गोल से डिब्बी में पटाखे आते थे, जिसको हम हाथ से दीवार पे ऐसे खींचा और वो बम एकदम भटाक बोल देते थे। लेकिन अब तो जो गोल टाइप में आ गया है, जिसको हम धरती पर फेंकने के बाद वो आवाज आती है उसमें से। तो आपने वो गोल वाली डिब्बी वाली जो पटाखे हैं किसने किसने जलाए, जरा मैसेज करके बताइए। नंबर है 9837896896 पर, कि पहले के टाइम में गोल वाली डिब्बी में आती थी पटाखे, पूरी लंबी लाइन होती थी उसकी, उसको दीवार पर घसीटते वो भट भट भट भट आवाज आती रहती थी उसमें से। तो आपने बताया कि आपने वो वाली पटाखे क्या उड़ाए हैं, सच में बजाए हैं। और मेरे पास कुछ मैसेज हैं जिनका ये, हेलो जी, बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी कनेक्ट होती हैं, प्यारी वाली गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। चलिए वाली गाना सुनते हैं और उसके बाद
1: देख क्यों ही हवा क्यों।

0: होते तेरा परिवार शायद छट के चल गया। तो कुछ साल बाद मैं तेनू एक हाथ ले गया।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

चांदार वाला आप गाने एंजॉय कर रहे हैं आरजे रीना के साथ। देखिए शाम को ऐसे गाने सुनने को मिल जाए ना भैया, तो सच बताऊं शाम अपने आप ही सुहाना और मस्त हो। फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं मूवी, क्योंकि देखिए हमें मूवी का भी इंतजार होता है ना कि भैया कौन सी मूवी है जो कि बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, इसका हमें बहुत इंतजार रहता है। तो मैं आपको बताऊं यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म जो कि हॉरर कॉमेडी के साथ रिलीज होने वाली है, लेकिन अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है कि वो किस डेट को रिलीज होने वाली है। जैसे पता चलेगा मैं आपको कान में ना आराम से बता दूंगी, माइक यहीं से बताऊंगी, आप सबको पता चल जाएगा। फिल्म का नाम है नई नवेली, यानी कि नई नवेली दुल्हन का किरदार ये निभा रही है। और ये जो मूवी है ना, सच बताऊं अभी से जो इसका जो अभी पोस्टर रिलीज हुआ है जो कि बहुत ही शानदार, कुछ टाइम में इसका ट्रेलर भी रिलीज हो जाएगा। तो देखिए कोई भी मूवी देखने जाए मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि इसका ट्रेलर आप जरूर, आप ट्रेलर जरूर देखिए। पोस्टर के साथ साथ मजेदार इसका ट्रेलर रिलीज हो गया है नई नवेली दुल्हन का, तो आप इसका ट्रेलर देखें तभी मूवी देखने जाए। लेकिन जब भी आप मूवी देखने जाते हैं ना, तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ जाए किसी के साथ जाए, कि पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक कौन खिलाने वाला है। क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो हमारे बीच में तो ऐसा होता है, देखो यार हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न कौन खिलाने वाला है। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ था हमारे साथ, देखिए हम जब भी मूवी देखने जाते थे ना, तो कभी चेकिंग नहीं होती थी, हम दो बार गए चेकिंग नहीं होती थी। तो हमने सोचा यार जब चेकिंग होती नहीं है तो यहाँ इतने महंगे कोल्ड ड्रिंक लेने का क्या ही फायदा, जो कोल्ड ड्रिंक हमें बाहर 20 रुपए का मिल जा रहा है, तो छोटे वाली जो कोल्ड ड्रिंक है कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल है वो ले लेते हैं। तो हमने क्या करा कि हमने दो कोल्ड ड्रिंक ले ली और उसके बाद दो चिप्स ले लिए, थर्ड यानी कि पॉपकॉर्न की पैकेट ले ली, और पर्स में हम डालकर रैसे चल रहे हैं भैया, जैसे नवाबों के शहर में मूवी देखने जा रहे हो। और मूवी देखने गए तो उस दिन ऐसा, मतलब कहते हैं ना कि आपकी किस्मत, इंसान किस्मत से मजबूर हो जाता है यार, सच बताऊं तो। हम और दिन चेकिंग करने के लिए नहीं आए, लेकिन जिस दिन हम अपने बैग में पर्स में कोल्ड ड्रिंक चिप्स कुरकुरे लेकर गए, उस दिन चेकिंग वाली आगे खड़ी, कह रही आइए मैडम आइए, हम स्वागत करते हैं, वार्म स्वागत करते हैं आपका। और जैसे उन्होंने भैया मशीन हमारे पास लेकर रखी, टू टू टू टू टू की आवाज़ आने लगी, तो कह रही पर्स खोलिए। मैंने कहा इसमें कुछ नहीं है। उसने कहा प्यार से खोल दीजिए आप पर्स की चैन खोलिए, अदरवाइज हम आपको प्यार से मूवी देखने नहीं जाने देंगे। मैंने कहा यार पहली आधा घंटा लेट हो रहा है, ये लो तुम बैग लो, हमें मूवी देखने जाने दो, तुम्हें इंजॉय करो, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न खाओ। तो आपके दिमाग में आए ना कभी कि यार चेकिंग नहीं होती और वहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न लेकर ऐसे चले जाते, तो भूल है आपकी, सच बता रहे हैं चेकिंग होती है और आप लेके नहीं जा पाएंगे, वहीं से खरीदना पड़ेगा, चाहे आपको 200 का मिले 300 का मिले चाहे 1000 रुपये पेमेंट करना पड़े, वहीं से लो और तभी मूवी का आनंद लो। चलिए फिलहाल कुछ मैसेज है वो भी शामिल करते हैं। वाओ क्या नाइस गाना है। ओके हमारे साथ अगले मैसेज की बात करूं तो जय श्री राम रीना जी, क्या हाल चाल है आपके, बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से कनेक्ट होते हैं। दीपक जी का मैसेज आया कि हमें ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है रीना मैडम जी, क्योंकि जब भी एनर्जी लो होता है तो मैं ब्लैक कॉफी प्रेफर करता हूँ। पंकज जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनका भी कहना है कि मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं, यानी कि मिल्क वाला भी और ब्लैक वाला भी, लेकिन जो ब्लैक कॉफी होता है मैं उसको बिना शुगर का ही पीता हूँ, लेकिन जो मिल्क वाली कॉफी होती है उसमें मुझे चीनी चाहिए। ओके शुगर चाहिए आपको। चल फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ दीपिका जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि मुझे ऑल टाइम इज ब्लैक कॉफी, माय फेवरेट ब्लैक कॉफी, जिससे वेट कंट्रोल रहता है और पी के भी एनर्जी फील होता है। तो और साथ ही साथ उनसे यही कहना चाहूंगी कि लीवर में जिनको प्रॉब्लम है सुबह सुबह आप ब्लैक टी पीजिए, देखिए आपको अलग ही रिजल्ट मिलेगा। अच्छा जी चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए श्रोता एक और म्यूजिकल ब्रेक और फिर हम आप सभी के लिए कड़क सवाल भी लेकर आने वाले हैं, बस बने रहिए पार्ट रीना के साथ FM मुरादाबाद 89.9। गाना सुनते बिन बुलाए बाराती।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: नूरे मुजस्सिम
4: हौस उड़ा देता है। बिल्कुल जी, हौस ही उड़ाने वाली अपडेट मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, फिलहाल इस गाने को एंजॉय करिए।

0: मैं ये टेबल क्लॉथ खींचूंगा और एक भी बर्तन हिलेगा भी नहीं, ओके? अब्राकडाब्रा, गिली गिली, चू!
1: लास्ट टाइम तो वर्क किया था।

आप सभी के साथ कड़क क्वेश्चन के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। बस आपने थोड़ा सा सोचना है और आपको आंसर यूं ही चुटकियों के अंदर मिल जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग पर आपको जोर डालना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। यानी कि समय की बात करूँ तो 6:41 हो चुके हैं। श्रोताओं अपार जोड़ियों के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और आज का कड़क सवाल ये है कि भारत में ऐसा कौन सा शहर है जिसे गुलाबी शहर कहा जाता है। सोचिए और मैसेज करिए, नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है कि भारत में ऐसा कौन सा शहर है जिसे गुलाबी शहर कहा जाता है। बस उस सिटी का आपने नाम बताना है। सोचिए और मैसेज करिए, नंबर है 9837896896 कि गुलाबी शहर भारत में किस शहर को कहा जाता है। चलिए आप सोचते रहिए, फिलहाल एक गाना हम आपको सुनवाते हैं, धाकड़ वाला।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: हेलो जी, गज वाली इवनिंग है, अर्जुरीना के साथ आप कनेक्ट है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट है और समय

0: मैया को एक उंगली टच नहीं किया, उसको हम हर साल जलाते हैं। और जो इस दुनिया में अभी हर जगह आप देखेंगे बलात्कार, कभी ये हो रहा है लड़कियों के साथ, कभी वो हो रहा है, कभी ये हो रहा है, उस रावण को कोई नहीं जलाता है, लेकिन उस रावण को हर कोई खुशी खुशी जलाता है, उसका पुतला बनाता है कि भैया ये प्रथा जो हमने चला दी है ना कि भाई रावण को जलाना ही जलाना है, असली रावण को जलाओ, उस रावण को मत जलाओ जिसने स्त्री को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन उसको ही जलाते हैं। जलाना है तो अपने अंदर के रावण को जलाओ, कि जो आपका मन है वो नियंत्रण नहीं है, उसको आप जलाइए। कि किसी को गलत निगाहों से देखना, किसी लड़के को गलत निगाहों से देखना, वो गलत चीज़ है। तो अपने अंदर की रावण को जलाइए, उस रावण को मत जलाइए, उस पर इतना मेहनत मत करिए कि इतने बड़े पुतले बनाएंगे और फिर उसको इंजॉय करेंगे हम जलाएंगे। फिलहाल अपने अंदर की और जो दुनिया में इतने रावण घूम रहे हैं ना, उनको जलाइए, तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। और लड़कियों को थोड़ी सी फ्रीडम कि हमें उनके ये कभी ये सोचकर नहीं निकलेंगी कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि केसेस देखा जाए तो कम नहीं हो रहे, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और आज का मैंने आप सभी से कड़क सवाल भी बहुत ही शानदार वाला पूछा है, जो कि हर किसी को पता है भैया, अगर नहीं पता है तो फिर तो गलत बात है, जरा सर गलत बात है, सच बता रही हूँ मैं। आज का कड़क सवाल मैंने आपसे पूछा है, भारत में ऐसा कौन सा शहर है जिसे गुलाबी शहर कहा जाता है? गुलाबी शरारा, जल्दी जल्दी सोचिए। और नंबर है हमारा 9837896896 पर आपने मैसेज करना है कि किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। बस लौट कर आते हैं इस गाने के बाद, उसके बाद आप सभी के मैसेज आ गए हैं प्यारे प्यारे।
1: भैया भंगड़ा पाउन तैयार हो जाओ।

हाय हाय, गुड वाली इवनिंग एनजी आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है। और समय की बात करूं इवनिंग मस्ती शो में तो 6:53 हो चुके हैं और कल दृश्यम मूवी रिलीज होने वाली है। सिनेमा घरों में दृश्यम 3 मूवी रिलीज होने वाली है और कुछ कुछ थिएटर में जो कि चुनिंदा थिएटर है उसमें ये कहा जा रहा है कि दृश्यम मूवी का जो टिकट है अगर आप 4-5 लेते हैं, यानी कि 4 तो मैक्सिमम लेने ही लेने हैं, अगर आप 4 टिकट लेते हैं तो आपको फ्री में एंजॉय करने को मिलेगा पाव भाजी। लेकिन अपने मुरादाबाद वाले में ऐसा नहीं है, ये मैं सोचिएगा। और इसी के साथ आज आपसे मैंने पूछा है कि भैया कड़क सवाल, और कड़क सवाल हमारा ये है कि किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। देखिए क्या बात है, चेहरे पर ब्लश जो आ रहे हैं आपके, अभी पता चल जाता है किसका आंसर हमारे पास राइट आया है।

सबसे पहले अगर मैं मेसर्स की बात करूं तो ये हमारे पास राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती हैं। इनका नाम है रानी नांगल से रिहाना जी। गुड इवनिंग पहुंचाती है। कैसी हैं मैम? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं। और इन्होंने कहा है कि जयपुर को कहते हैं गुलाबी शहर। अगले मैसेज की बात करूं तो बबलू सैनी जी भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट हो गए हैं। और जयपुर आसिफ जी भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं। हाय मैम, कैसी हो आप? माय नेम इज संजीव कुमार गौतम और आपके सवाल का राइट आंसर होता है जयपुर। लक्ष्मी कश्यप जी, गीता कश्यप जी, संतोष कश्यप जी भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती है जयपुर। अगले मैसेज की बात करूं तो मुरादाबाद मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, शैयर शारिक अली जी, मेराज अंसारी। गुड इवनिंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे प्ले करती हैं आप। साथ ही साथ राइट आंसर आता है इनका जयपुर। अंसार हुसैन जी दौलत बाग से कनेक्ट होते हैं राइट आंसर के साथ जयपुर राजस्थान। कोमल जी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती है जयपुर। और अगले अगर मैसेज की बात करूं तो ये कविता जी कनेक्ट होती है राइट आंसर के साथ जयपुर। चलिए जी, से जयपुर के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह, करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए शाइनिंग ऑफ, बाय। अपना ध्यान रखिए और यूं ही मस्त रहिए और अपनी लाइफ में खुशियाँ लाते रहिए, क्योंकि गम का तो भैया कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज के टाइम में हर इंसान के चेहरे पर एक मुस्कान लाना बड़ी मुश्किल बात है। तो फिलहाल जितने भी दुख दर्द है उसको साइड में करिए, क्योंकि दुख दर्द तो आते ही रहेंगे। फिलहाल आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय, चाचा चेखिया। और

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस क्यू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को है, कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी में समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
5: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
4: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 571 अंक लुढ़ककर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविय ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स डिपॉजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ स्पर्धा में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। उधर स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण 23 रजत और 32 कांस्य सहित कुल 65 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायकों, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी, और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहड़ा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गण बानी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जौन हमारी जनता आवतिया वह लोगन के बहुत जौन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।

0: है। पर्यटन मेलों, खाद्य उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही, बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुंचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है, तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों, अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है, वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी, तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंगलता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंगलता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है, ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंगलता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए, तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू, वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं, गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाईयों काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती हैं। देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात, गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा।
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं, बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा, तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा, बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
6: पतली पतली

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को दिखाई हरी झंडी, कहा सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने लखनऊ में सहप्रभारियों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, आगामी चुनाव को लेकर परखी तैयारियां। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश व्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ, कहा रोगों की रोकथाम के लिए सामूहिक भागीदारी आवश्यक। और कल से 8 अक्टूबर तक प्रदेश में मनाया जाएगा वन्य जीव सप्ताह। वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना बरेली में वॉकथॉन फॉर वाइल्ड लाइफ के साथ कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोकभवन सभागार में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई और पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की पुस्तक संघर्ष का विमोचन भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब 7 पुलिस कमिश्नरेट काम कर रहे हैं। आज यूपी पुलिस के सामने विचार, वीरता और तकनीक तीनों का समन्वय दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को उत्तर प्रदेश पुलिस प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है।
1: राज्य सरकार की जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, इस नीति को यूपी पुलिस पूरे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम करेगी। वर्षों से, दशकों से जो मांग हो रही थी कि यूपी पुलिस के भी कुछ कमिश्नरेट बनने चाहिए, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 7 पुलिस कमिश्नरेट हम यूपी के अंदर बना चुके हैं, और जो सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं आज देश को, प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उपलब्ध करवा रही है।
0: श्री योगी ने बताया कि कार्यक्रम में 16 पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को राष्ट्रपति के वीरता पुरस्कार तथा 10 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी वीर पुलिस कर्मियों को बधाई दी। भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने आज लखनऊ में सहप्रभारियों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्षों व प्रभारियों के साथ बैठक कर बूथों से लेकर विधानसभा क्षेत्रों तक की तैयारियां परखी। इससे पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताया कि उनके दौरे के दौरान आगामी चुनाव की तैयारियों को संगठन मजबूती पर विचार विमर्श होगा।
2: तावड़े भी संगठन के प्रभारी हैं, तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में आना जाना उनका रहेगा ही, और चुनाव निकट है तो निश्चित तौर से हम लोग कार्यकर्ताओं का संगठन हमारा बूथ तक कैसे मजबूत हो उसकी चर्चा।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ सभी संबंधित विभागों और आमजन की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। स्वच्छता, जागरूकता और समय पर रोग की पहचान के माध्यम से संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। श्री पाठक लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।
3: इस अभियान के दौरान हम सभी घरों में दस्तक अभियान भी चलाएंगे। सबसे पहले जो गंदगी की सफाई करना है, फिर उसके उपरांत हमें मच्छर मारने की दवा की फॉगिंग करनी है, इसके अलावा लार्वा मारने के लिए भी हम दवाइयां डालेंगे।
0: उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर और दस्तक अभियान 12 से 31 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। इस अधिनियम का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकना और लोगों को समय पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। अधिनियम में प्रावधान है कि अगर किसी जन्म या मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को 1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से ही किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में वन विभाग 2 से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाएगा। पूरे सप्ताह भर पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीवों पर आधारित मास्क मेकिंग, छद्म आवरण अनुकरण पर चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, फैंसी ड्रेस, फेस पेंटिंग, रंगोली, मेहंदी जैसी प्रतियोगिताएं भी होंगी। इस दौरान प्रदेश के बच्चे वन्यजीव के संसार में अपने मनोभाव से रंग भरेंगे। इस अवधि में प्रतिभागी व 12 वर्ष तक के बच्चों का चिड़ियाघर में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। वन राज्य मंत्री डॉ अरुण कुमार सक्सेना बरेली में वॉकथॉन फॉर वाइल्ड लाइफ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और पशु कल्याण के प्रति जागरूक करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने किस तरह उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान की है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को PPP मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, यहाँ से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की कनेक्टिविटी को नई उड़ान मिलेगी।
5: नोएडा का एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला।
4: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि यह एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र की नई पहचान बनेगा।
6: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी।
4: यह हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विशाल दरदुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन लखनऊ के गांधी सभागार में आयोजित क्षमावाणी पर्व एवं त्यागी व्रति सम्मान मिच्छामी दुक्कड़म कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। इस अवसर पर राज्यपाल ने त्यागी व्रति जनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत एक जीवंत संस्कृति है और विविधताओं का उत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आज लखनऊ के गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में आयोजित समारोह में 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 3 वरिष्ठजनों को शतायु सम्मान और समाज में रचनात्मक योगदान दे रहे 4 वरिष्ठजनों को सीनियर अचीवर्स सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने लखनऊ में सहप्रभारियों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, आगामी चुनाव को लेकर परखी तैयारियां। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ, कहा रोगों की रोकथाम के लिए सामूहिक भागीदारी आवश्यक। और कल से 8 अक्टूबर तक प्रदेश में मनाया जाएगा वन्यजीव सप्ताह। वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना बरेली में वॉकथॉन फॉर वाइल्ड लाइफ के साथ कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
8: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
9: दिस साइड आरजे रीना FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और वेलकम बैक है श्रोताओं, और फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ गए एक नई जानकारी जो आप सभी तक ना कोशिश करते हैं यानी कि पहुंचती रहनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायपालिका का सम्मान और उनके आदरों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
10: देखिए मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोरा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
9: बिल्कुल बिल्कुल।
10: तो सबसे
9: सही।
10: बड़ी चीज है, ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
9: सही का
10: तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
9: बिल्कुल सर। तो अब तो हमारे श्रोता भी आपके बारे में रूबरू हो चुके हैं।
10: श्रोताओं से ही बात करना अच्छा लगता है मुझे, और मैं उन्हीं के लिए आता हूँ आपके।
9: बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और कोशिश करते हैं कि उनके तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे,
10: उनको अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों को जान पाए।
9: बिल्कुल सर। तो हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइए कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है।
10: देखिए आमतौर पे हम लोग बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट का आदेश जो है कंटम ऑफ कोर्ट कर दिया, लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कंटम ऑफ कोर्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज, देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है कंटम ऑफ कोर्ट, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल मतलब है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटम ऑफ कोर्ट होता है यानी अदालत की अवमानना करना। अब जब जो बात जो अदालत ने जो बात कह दी है, आप उस चीज को नहीं मान रहे, उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, अदालत का आप अपमान कर रहे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानते हैं। आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या अदालत के आदेश का आप पालन नहीं करते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और भारत में इससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसको नहीं मानते हो, तो आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, तो उसका जो है कोर्ट आपको पनिशमेंट भी देती है।
9: शो आगे बढ़ते हैं, यानी कि म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा सर, कंटम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप के होते हैं?
10: देखिए कंटम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक सिविल कोर्ट का कंटम्प्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का कंटम्प्ट होता है। तो अदालत की अवमानना, अगर सिविल कोर्ट सिविल कंटम्प्ट की हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अदालत के आदेश या फैसले का पालन नहीं करता है तो उसको जो है सिविल कंटेम्प्ट की श्रेणी में लाते हैं। उसमें सिविल में ये होता है कि अदालत उसको सिर्फ फाइन से ही छोड़ देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर कोई अदालत का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो कोर्ट को इतनी ज्यादा पावर भी होती है, हालांकि पावर सिविल में भी होती है, तो लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है तो कोर्ट उस पर फाइन और सजा भी उसको दे सकती है,
9: सुना सकती है। बिल्कुल।
10: हाँ। जेल भी भेज सकती है यहाँ तक।
9: ओह, अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है?
10: देखिए, अदालत की अवमानना करने पर जो दोषी होता है उसको अदालत के विवेक पे निर्भर करता है वैसे तो सजा, लेकिन वो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों सुना सकती है। रिट होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है या हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। एक प्रकार का रिट जो होती है एक प्रकार का विशेष आदेश होती है जो अदालत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने या किसी सरकारी संस्था को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी कर सकती है। भारत में रिट जारी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये विशेष तौर पर कई श्रेणी में मतलब आती है। अगर हम हाई कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं।
9: सो इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर?
10: विशेष तौर पे 5 तरीके की रिट्स होती है ये। भारत में कुल जो 5 तरीके की रिट्स हमारी बताई गई है, इसमें मुख्यतः जो 5 रिट्स है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें हैबियस कॉर्पस, नाम नोट करिए हैबियस कॉर्पस। विशेष तौर पे अगर आप बच्चे LLB के मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब पता ही होगा, तो उनको तो इस समय पढ़ाई में भी वो लोग ये पढ़ते होंगे तो उनको सब पता होगी, सारी अच्छी नॉलेज होगी उनकी। और सेकंड हमारी आते हैं मैंडेमस, और थर्ड होती है प्रोहिबिशन, और फोर्थ रेट है हमारी सर्चुरारी, और फिफ्थ रेट है क्यू वारंटो।
9: तो इनके सर अलग अलग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अलग अलग टर्म्स होते होंगे।
10: हाँ, अलग अलग, हर रेट का अपना अलग महत्व है, अलग अलग चीज के लिए अलग जो लीगल रिलीफ होता है उसके लिए यूज करी जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो रिट होती है, मैं पहले उसके बारे में अपने जो होता है उनको बताना चाहूंगा। विशेष तौर पे जो हैबियस कॉर्पस रिट होती है ये रिट तब जारी करी जाती है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रख लिया जाता है या उसका पता नहीं चल पाता है, तो अदालत आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए। क्योंकि हैबियस कॉर्पस जो रिट डाली जाती है वो पिटिशनर की तरफ से इसलिए डाली जाती है कि उसका कोई नोन है, रिलेटिव है, और उसको शक होता है कि उसको पुलिस ने गलत तरीके से कहीं छुपा के रखा हुआ है या उसको पनिश कर रहे हैं जो और कोर्ट के समक्ष नहीं ला रहे हैं। तो विशेष तौर पर हैबियस कॉर्पस रिट का मोस्टली ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है। सेकेंड जो रिट आती है हमारी मैंडमस रिट है, उसको हम उसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं कर रही होती पूरी। अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई अधिकारी है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है सही से, और उसकी जो है जो मैटर है उसको विलंबित कर रहा है या कोई और रीजन है, तो मैंडमस रिट उसी मैटर में डाली जाती है कि वो आदेश देता है, जो कोर्ट होती है वो मैंडमस रिट में आदेश देती है कि ये सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से वो रिलीफ के तौर पे उस रिट में वो हाईकोर्ट ऑर्डर करता है उसको।
9: ओके,
10: थर्ड जो रिट आती है उसकी हम बात करते हैं, उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन रिट किस लिए जारी कर दी जाती है मैं बताता हूँ आपको। प्रोहिबिशन रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, और उस अधिकार क्षेत्र में अगर उसका राइट ही नहीं है उस ट्रिब्यूनल का या कोर्ट का, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोहिबिशन रिट दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमें रिलीफ दे सकता है कि जो लोअर कोर्ट का आदेश है या ट्रिब्यूनल का आदेश है उसको वो रद्द भी कर सकता है या उस पर रोक भी लगा सकता है। तो बेसिकली ये है कि अगर कोई भी अदालत अपनी पावर से बाहर जाके, अपनी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई ऑर्डर सुनाता है, तो उसके अगेंस्ट में विशेष तौर पर इस रिट का प्रयोग होता है प्रोहिबिशन। अच्छा, इसके बाद हम सर्चुरारी रिट की बात करते हैं। जो सर्चुरारी रिट आती है ये उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत के गलत फैसले को, आदेश को रद्द करना करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे कोई लोअर कोर्ट ने कोई आदेश गलत दे दिया, कई बार होता है कि बुद्धि विवेक प्रत्येक इंसान का माइंड अलग होता है। ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां जजेस से भी हो जाती है। तो कुछ मैटर्स में हमने ऐसा भी देखा है कि निचली अदालत के गलत फैसले को या उसका फैसला गलत मानते हुए हाई कोर्ट में सर्चुरारी रिट अगर किसी ने फाइल करी है तो उसमें भी रिलीफ मिलते हुए हमने देखा है, और कोर्ट उस आदेश को रद्द भी कर सकती है। और सबसे लास्ट में जो रिट की हम बात करते हैं क्यू वारंटो, ये जो रिट होती है तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति के किसी सरकारी पद पर बैठने की वैधता पर सवाल उठता है। अगर कोई अधिकारी किसी सीट पर बैठा हुआ है और उसको डाउट होता है व्यक्ति को कि ये सीट पर किस अधिकार से बैठा है, तो क्यू वारंट 2 में रिट फाइल करके वो हाई कोर्ट में वो कोर्ट से रिलीफ ले सकता है कि उसमें बैठने अदालत उससे पूछ सकती है किस राइट से आप इस पद पे बैठे हुए हो, वो व्यक्ति उस सीट पे बैठने के लिए ऑथेंटिक है नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र है
11: या नहीं है।
10: हाँ। तो मुख्यतः ये 5 रिट होती है, तो इसके अंदर आप लोग रिलीफ मांग सकते।
11: अंत में सर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कानूनी अधिकारों के प्रति?
10: देखिए कानूनी अधिकार ये बहुत ही डीप जो चैप्टर है, हम भी डेली नए नए डिसीजंस, नए नए जजमेंट्स और डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की आती रहती हैं, लोअर कोर्ट से भी कई ऐसे जजमेंट्स आए कि वो बहुत ही हमें भी नए नए डायरेक्शंस हमें और जजमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये इतना डीप जो सब्जेक्ट है कि कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ
11: बिल्कुल।
10: तो इसमें आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना नए नए करंट अफेयर्स को आप डेली न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, हाई कोर्ट्स के और लोअर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स देखते भी रहते होंगे, आए दिन आते रहते हैं, तो आपको रोज पढ़ना है, रोज आपको नई नई चीजें सीखनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लीगल जानकारी भी होती है सबसे बड़ी चीज आपको, और आप अवेयर रहते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट सब हम सारे सिटीजन्स को होनी चाहिए कि लीगल राइट्स।
11: बिल्कुल सर। सर मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। मैंने वैसे आप पीएचडी के बारे में जानती हूँ कि आप पीएचडी होल्डर है, बट पीएचडी के बाद यानी कि एडवोकेट तक कैसे मतलब जर्नी रही आपकी?
10: मेरे को माना तो बाद ही एक यूनिवर्सिटी से मिली थी, और ये एक यूनिवर्सिटी फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी, तो मेरे वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए मेरे को ऑनरिस कॉज में माना तो बाद ही मिली हुई।
12: वैसे
10: बाई क्वालिफिकेशन मैंने एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है और एलएलबी मेरा है, और आई एम परसुइंग एलएलएम।
11: तो इसकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही?
10: देखिए बाकी सब तो ठीक है, मेरा वो बेसिक जो है मेरा खुद का ड्रीम था, मुझे एमकॉम करना है, उसके बाद मेरे को एमबीए करना है, लेकिन एलएलबी के पीछे का जो ट्रूथ है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा।
11: हाँ सर वही मैं भी जानना चाहती हूँ कि पीएचडी के बाद
10: बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसी टाइम पे मेरे अगेंस्ट में किसी ने मेरी फैमिली के अगेंस्ट में एक फेक कंप्लेंट करी थी।
11: ओके।
10: और वो फेक कंप्लेंट मुझे इतना हर्ट हुई कि मुझे लगा यार मैं तो बहुत ही अपने बिल्कुल एथिक्स पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे झूठे मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, और मैंने उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में खुद ही सारे फैक्ट्स जुटाए, खुद ही फाइट करा। फिर जब मेरे को मैंने लीगल नॉलेज को गेन किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने खुद ही उस कंप्लेंट को हैंडल किया, तो मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा इस लीगल जो मैटर्स हैं, मेरे को थोड़ा नॉलेज हुई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको एज ए प्रोफेशन बनाऊं। मैं इसको
11: बिल्कुल क्या
10: क्योंकि है? इतना अच्छा प्रोफेशन है और आप इतना चीजों को डीप में जानते हो, अपने लीगल आप राइट्स को जानते हो, तो बस मेरा मन करा कि नहीं मैं भी कुछ समाज के लिए करूं। आज को मेरे ऊपर अगर किसी ने एलिगेशन फेक लगाया है तो दूसरे समाज में बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कि लोगों को फेक एलिगेशन लोग लगा देते हैं और वो उससे बच नहीं पाते हैं क्योंकि उनको राइट्स नहीं पता होते अपने।
11: बिल्कुल।
10: तो उस राइट्स को क्यों ना मैं लोगों को पढ़ाऊं, लोगों को बताऊं आपके लीगल राइट्स क्या है, और मैंने खुद भी उसे अपनी लाइफ में लेके आया। तो ये इसके बाद ही मैंने सोचा कि नहीं मैं लोगों की समाज में सेवा करूंगा, मैं एज एन एडवोकेट भी अपने आप को सोसाइटी में।
11: क्या बात है, इन्होंने दूसरों से मदद लेने की बजाय इन्होंने कहा कि मैं खुद इस लायक बनूं कि अपना मतलब जो हमारी गलत इन्फॉर्मेशन जो भी लगाया गया है वो मैं खुद सॉर्ट आउट करूं।
10: बस एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ बदल देता है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो वही शुरुआत मैंने भी करी थी।
11: और कहते हैं ना सर एक अच्छी अचीवमेंट के साथ, एक अच्छे गोल के साथ आप किसी फील्ड में हो और आप काम कर रहे हो तो उसमें सक्सेस आपको मिली जाती है,
10: मिलती है। और आप अगर दूसरे की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपका खुद ही आपकी हेल्प करता है।
11: बिल्कुल बिल्कुल सर सही।
10: तो मैं अगर किसी का माध्यम बन रहा हूँ किसी की हेल्प करने के लिए, तो ये मेरे को ऊपर वाले ने जो है मेरे को एक जो अपॉर्चुनिटी दी है, तो उसको मुझे करना भी चाहिए।
11: बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर कि आपके बारे में, आपकी मतलब जो आपने बताया कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, आपके जर्नी के बारे में। तो बहुत से ऐसे सोच रहे होंगे, बहुत श्रोता होंगे जो कभी कभी ये होता है कि सर हम किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलती तो हम ना वहाँ हार मान लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनिरुद्ध सर से हमें मतलब एक फीड मिल गया है कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल
10: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। तो जो है आप अगर जिंदगी से हार के बैठ जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जिंदगी वो एक गाना ना, जीवन चलने का नाम चलते रहना है सुबह शाम।
11: बिल्कुल।
10: तो बस यही लाइफ है
11: सर। किताबें कितनी भी दगाबाज क्यों ना हो लेकिन कामयाब करके ही छोड़ती है।
10: बिल्कुल। किताबें ही आपकी।
11: बिल्कुल बिल्कुल सर, सच कहा आपने।
12: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
13: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मैं भी यमुना प्रहरी ऐप का शुभारंभ किया। नागरिकों से अधिक संख्या में यमुना प्रहरी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति और सीवर व्यवस्था मजबूत करने को 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राजधानी सहित देश भर में एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया और दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा, गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कल राजघाट और विजय घाट पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित

0: जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
0: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं भी यमुना प्रहरी ऐप का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से शुरू हुआ ये अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि यमुना के प्रति नागरिक जिम्मेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और लोगों से अधिक संख्या में यमुना प्रहरी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 अक्टूबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी एक साथ यमुना की स्वच्छता और संरक्षण का संकल्प लेकर इस जन अभियान का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी नाले का पानी बिना सफाई के यमुना नदी में नहीं गिरेगा।
2: सरकार अपना काम कर रही है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम है, नालों को टैप करने का काम है, नए सीवेज प्लांट खड़े करने का काम है, डिसिल्टिंग करने का काम है, सीवर लाइन जोड़ने का काम है, ताकि एक भी ड्रेन या एक भी नाला यमुना में बिना ट्रीट किए ना गिरे। ये सरकार का काम है और सरकार कर रही है। तो हम सब मिलकर के जब यमुना के प्रहरी बनेंगे तो निश्चित रूप में माँ यमुना साफ होना शुरू होगी।
1: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि नमामि गंगे जैसे अभियानों का उद्देश्य देश की नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद यमुना की स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए व्यापक कार्य योजना पर काम शुरू किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एक रिपोर्ट।
3: बोर्ड ने वन जोन वन ऑपरेटिव योजना के तहत 10 साल के लिए करीब 17,969 करोड़ रुपए की सीवर रखरखाव योजना को मंजूरी दी है। हर जोन में एक ऑपरेटर सीवर की देखरेख और सफाई करेगा। लोगों की शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। सीवर की जांच और सफाई के लिए मशीनों और रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। सीवर की निगरानी ऑनलाइन भी की जाएगी। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए परियोजना को भी मंजूरी दी है। ये परियोजना 247 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगी। इसमें स्मार्ट मीटर और पानी की निगरानी के लिए सेंसर लगाए जाएंगे। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इनकी कुल क्षमता 328 MGD होगी। इस परियोजना पर 7,373 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा वजीराबाद जल आपूर्ति परियोजना और 25 वाटर इमरजेंसी सेंटर के पुनर्निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। निर्धारित शर्तों के तहत अलग अलग पानी के कनेक्शन देने को भी मंजूरी दी गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: केंद्र ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में दीर्घकालिक योजना और बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से उसके प्रमुख विभागों के लिए 5 साल की पूंजीगत निवेश योजना प्रस्तुत करने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने हाल में दिल्ली सरकार के विभागों से 5 साल के लिए पूंजीगत व्यय और निवेश का ब्यौरा देने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शास्त्री पार्क स्थित दिल्ली मेट्रो रेल निगम के आईटी पार्क में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया। ये अत्याधुनिक केंद्र दिल्ली में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की रियल टाइम निगरानी, एआई आधारित विश्लेषण, शिकायतों और फील्ड निरीक्षण से जुड़ी जानकारी तथा संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय को मजबूत करेगा।
1: इस केंद्र का उद्देश्य केवल प्रदूषण संबंधी आंकड़े एकत्र करना नहीं बल्कि तकनीक से प्राप्त जानकारी को जल्द से जल्द परिणामों में बदलना है। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर से प्राप्त रियल टाइम जानकारी को फील्ड स्तर की कार्रवाई से सीधा जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तकनीक, डेटा और फील्ड प्रवर्तन को एक साथ जोड़कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस केंद्र के माध्यम से प्रदूषण हॉटस्पॉट, नियमों के उल्लंघन और प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की पहचान तेजी से की जा सकेगी और संबंधित विभागों तक इसकी जानकारी पहुंचाकर मौके पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
2: इस छोटे समय में इतना शानदार इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहां बना है। 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर वाली कंस्ट्रक्शन साइटों को भी यहां से मॉनिटर किया जाएगा, जो एआई ड्रिवन कैमरास के माध्यम से यहां देखी जा रही है। यहां हमारा मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए जो मशीनरी है उसको भी यहां से जीपीएस के माध्यम से मॉनिटर हो सकती है।
1: इस वर्ष सर्दियों के दौरान 78 सब डिवीजन स्तर की टीमें इस केंद्र के माध्यम से निगरानी करेंगी। इसके अलावा वायुदूत टीमों के माध्यम से प्रदूषण सरकारी गतिविधियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। इससे सफाई और प्रदूषण नियंत्रण कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई को और मजबूत किया जा सकेगा। विशु और निशा के साथ सौम्य शरण, प्रादेशिक समाचार, दिल्ली।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत आज देश भर में एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों में स्वच्छता और कचरा निपटान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी अभियान में भाग ले रहे हैं। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजधानी के सफदरजंग मकबरे में आयोजित अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि प्रतिदिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
3: 2017 से पहले भी रेलवे स्टेशन देखते थे, आज बहुत से लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे घूमने जाते हैं। तो ये तो वातावरण चेंज हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। साफ सफाई की प्रति सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है भारत में, तो ये भारत के बच्चे ध्यान रखते हैं।
0: इस अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कमला नेहरू रिज और दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और दिल्लीवासियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया तथा स्वच्छ तथा सुंदर दिल्ली के निर्माण में जनभागीदारी का संदेश दिया। वहीं दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने तुकमीरपुर स्थित पुष्पांजलि स्कूल में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। श्री मिश्रा ने कहा कि ऐसे प्रयास समाज में जिम्मेदारी और सेवा की भावना को मजबूत करते हैं।
4: आज पूरी दिल्ली में लगभग 300 जगह पर इस प्रकार का सफाई अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका नेतृत्व कर रही हैं। सभी मंत्रीगण, विधायकगण, निगम पार्षदगण अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। स्वच्छ दिल्ली का एक लक्ष्य है जिसके लिए काम किया जा रहा है।
0: दिल्ली के मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने आज रामलीला के आगामी आयोजनों की तैयारियों तथा व्यवस्थाओं पर दिल्ली सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक में आयोजन स्थलों, आवश्यक सुविधाओं और तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 2026 आज नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मनाया गया। इस अवसर पर नियमित, स्वैच्छिक और बिना किसी पारिश्रमिक के रक्तदान की संस्कृति को मजबूत करने पर बल दिया गया। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ एम श्रीनिवास ने आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर कल राजघाट और विजयघाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। ये व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान रिंग रोड पर राजघाट से सलीमगढ़ वाई प्वाइंट और कश्मीरी गेट बस अड्डे की ओर निषाद राजमार्ग, राजा राम कोहली मार्ग, BS-Z मार्ग पर ITO चौक से दिल्ली गेट, शांतिवन चौक से IP फ्लाईओवर, आसिफ अली रोड, गुरु नानक चौक से रणजीत सिंह फ्लाईओवर और राजघाट DTC डिपो से रिंग रोड बाईपास तक यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात यातायात कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। दिल्ली परिवहन निगम ने बताया है कि गांधी जयंती के अवसर पर कल राजधानी में पिंक सहेली स्मार्ट NCMC कार्ड वितरण केंद्र बंद रहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सिख समुदाय को गुरु अंगद देव के गुरु गद्दी दिवस पर शुभकामनाएं दी। श्रीमती गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुरु अंगद देव की शिक्षाएं सभी को विनम्रता, सद्भाव और निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में UPSC शताब्दी समारोह को संबोधित किया। कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मैं भी यमुना प्रहरी ऐप का शुभारंभ किया। नागरिकों से अधिक संख्या में यमुना प्रहरी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति और सीवर व्यवस्था मजबूत करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राजधानी सहित देश भर में एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: दादी कौन सा प्लांट है?
7: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
8: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
6: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
8: क्यों?
6: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
8: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
9: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
10: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज, और कर रहा हूं आपसे बात। तो दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आपको सतर्क कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे आपके मोबाइल फोन और UPI से जुड़ी सुरक्षा के बारे में, क्योंकि आज आपका मोबाइल सिर्फ फोन नहीं बल्कि आपका बैंक है। तो दोस्तों, आखिर मोबाइल और UPI सुविधा भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम मोबाइल से पैसे भेजते हैं, बिल जमा करते हैं, खरीदारी करते हैं और साथ में बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही आपका पूरा बैंक बैलेंस लीक कर सकती है। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं साइबर ठग। तो चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बात समझाता हूँ। रमेश, हेलो, उधर से आवाज आती है। मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपके बैंक अकाउंट में संदिग्ध निशन हुई है। क्या मेरा पैसा सुरक्षित है ना? हाँ सर, बस सुरक्षा के लिए आपके फोन पर जो OTP आएगा वह बता दीजिएगा। OTP आया है, मैं बता देता हूँ। अरे, मेरा अकाउंट तो खाली हो गया और पैसे कट गए हैं। और इस तरह रमेश UPI फ्रॉड का शिकार हो जाता है। आखिर UPI और मोबाइल फ्रॉड कैसे होता है? दोस्तों, मोबाइल और UPI फ्रॉड आम तौर पर इन तरीकों से होता है। बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है, OTP या UPI पिन मांगा जाता है, फर्जी ऐप इंस्टॉल करवाए जाते हैं, स्क्रीन शेयर करवाई जाती है, रिफंड या इनाम का लालच दिया जाता है। याद रखिए, OTP और UPI पिन सिर्फ आपके लिए ही है। खतरे के संकेत, अगर कभी ये बातें हो तो समझ जाइए खतरा है। कोई OTP या आपका पिन पूछे, जल्दी करने का दबाव डाले, कहे अकाउंट बंद हो जाएगा, अनजान ऐप डाउनलोड करवाए, तो असली बैंक कभी ऐसा नहीं करता है। मोबाइल और UPI को सुरक्षित कैसे रखें? दोस्तों, इन आसान नियमों को अपनाइए। OTP, UPI पिन किसी को ना बताएं। मोबाइल में लॉक और बायोमेट्रिक रखें। केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। फोन और एप्स को अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। खासकर मैं सलाह देना चाहूंगा बुजुर्गों और बच्चों को। श्रोताओं, UPI और मोबाइल फ्रॉड के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे, नए स्मार्टफोन यूजर, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए कोई भी कॉल आए तो पहले परिवार से पूछें, OTP को चाबी समझें, किसी को बिल्कुल ना दें, शक हो तो कॉल तुरंत काट दें। अगर गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो, पैसे कट गए हो, OTP शेयर हो गया हो, गलत ऐप इंस्टॉल हो गया हो, तो देर ना करें, कॉल करें 1930। हाँ जी, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मोबाइल और UPI सुरक्षा के लिए 5 सुनहरे नियम। OTP और पिन कभी साझा न करें। बैंक बनकर आने वाली कॉल पर भरोसा न करें। अनजान ऐप और लिंक से बचें। मोबाइल को हमेशा लॉक रखें। डर नहीं, समझदारी से काम लें। श्रोताओं, डिजिटल भुगतान आसान है लेकिन सावधानी के बिना खतरनाक। मोबाइल आपका साथी है, उसे सुरक्षित रखिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको कर रहा है सतर्क फ्रॉड से, ताकि आप बच सके। तो दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम में बात हुई कि आपका UPI, हां जी, उसकी वजह से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपका ये जो स्मार्टफोन है सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, ये आपका बैंक है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं तो सावधान होकर करें, क्योंकि कभी कभी गलत QR कोड से भी आपका नुकसान हो सकता है और शायद आपका पैसा जा सकता है। हम सभी को पता है पैसा कमाने में जितनी मुश्किलें आती हैं ना, तो अगर वो गलती से कोई आपसे ले ले बिना आपकी परमिशन से, तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को होता है। तो सतर्क रहें, सेफ रहें। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी FM मुरादाबाद 89.6 MHz के माध्यम से। मैं हूँ आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। अभी के लिए लेता हूँ यहाँ से अलविदा, तो स्टे सेफ।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: हेलो हेलो मुरादाबाद, क्या हाल चाल है साहब। आप सभी लोगों का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और मैं यही पूछूंगा कि मेरे रोडीज क्या कर रहे हैं इस समय। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि जो कार चला रहा है ना इस समय वो रोड पर है और वो मेरा रोडीज ही है। सही काम है ना खुशी।
1: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड अखिल सर, आप जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही होता है। और आज का शो उन लोगों के नाम है जिनके लिए कार सिर्फ कार नहीं, उनका घर होता है।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भाई जब ट्रेवल कर रहे होते हैं और आप ऑफिस से घर जा रहे हैं या घर से ऑफिस जा रहे हैं, तो एक यही तो सफर है जब स्टीयरिंग घुमा रहे हैं और कुछ पल जो है ना आप गुनगुना रहे हैं, तो वो सब कुछ कहाँ होता है, वो कार में ही तो होता है ना। तो जब कार आपका एक तरीके से सेकंड होम ही कहलाता
1: है। और आपने मुझे बताया भी था कि खुशी, जब हम ऑफिस से घर की तरफ निकलते हैं ना, तो बहुत सारे थॉट होते हैं जो हमें कार में ही आते हैं। एंड जब रेडियो पर हम प्यारे प्यारे गाने सुनते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं ना, तो ऐसा फील होता है कि हाँ कोई तो अपना है। फिर हम मोबाइल को बिल्कुल नहीं चलाते हैं, साइड में रख देते हैं और मंद मंद चेहरे पर मुस्कुराहट ऑटोमेटिकली आ जाती है। और हम दो खुराफाती आरजे आ चुके हैं यहाँ पर, आरजे अखिल एंड आरजे खुशी। करेंगे ढेर सारी बातें, आपकी शाम को बनाएंगे मस्ताना ये शाम।
0: अच्छा जी, इतना अच्छा गाती हो तुम।
1: नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं अच्छा नहीं गाती। चलो एवरीवन, अभी अपने शो की शुरुआत करते हैं और एक अमेजिंग ट्रैक आपको सुनवाते हैं। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और
0: मुस्कुराते भी रहिए,
1: केयरफुली ड्राइविंग भी करते रहिए।
0: बिल्कुल सही।
2: तुम मजाक कर रही हो या लाइन मार रही हो?
3: लाइन मार रही हो।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां खूब सारी बातें हो रही है। हाँ जी, अरे जो आप हॉर्न बजा रहे हो ना, उसी की बातें हो रही है। हाँ, क्योंकि जो गाड़ी होती है ना, वो हमेशा स्पेशल होती है आपके लिए भी, और जो गाड़ी में आपके साथ बगल में बैठा होता है उसके लिए भी। सही कह रहा हूँ ना खुशी?
1: हाँ बिल्कुल, स्पेशल तो होते ही है।
0: क्या कभी कुछ कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जब आपने कभी पहली कार ली हो, या आपने देखा हो कि भाई मेरे पड़ोसी के पहली बार जब उसके यहाँ नई गाड़ी आई थी तो क्या रिएक्शन थे उसके?
1: अरे पूछिए मत, ऐसा लग रहा था कि हवा में उड़ रहे हैं वो।
0: अच्छा जी।
1: हाँ जी, जब फर्स्ट कार ली तो पता है आपको, इतने रिलेटिव के उनकी कॉल आ रहे हैं और पड़ोसियों को उन्होंने मतलब पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन दी दी है।
0: तो तुम्हारे पास कोई कौन सी मिठाई खाने को मिली उस बार?
1: मेरे को तो गुलाब जामुन खाने को मिले, क्योंकि हमारे शहर की गुलाब जामुन बहुत फेमस है।
0: तो ये तो होता है यार, जब भी ना कोई नई गाड़ी लेके आता है, अगर आपके अड़ोस में या पड़ोस में हो, या आपका कोई रिलेटिव ही हो, कोई खास क्यों ना हो, तो जब वो आता है ना, अरे चल भाई आजा आजा, टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं, चल के बैठते हैं, तो वो एक फीलिंग ना, वो एक हैप्पीनेस जो है, वो उसके साथ साथ अपने पास और अच्छी लगती है कि यार चलो बहुत बढ़िया है कि बंदा कार लेके आया, उसने मिठाई भी लेके आया। तो मैं तो भाई जब भी आता तो मैं तो अपनी पसंद की मिठाई मांग लेता हूँ कि भाई अगर तूने कार अपने पसंद की ली तो मिठाई तो तू मेरी पसंद की खिला।
1: अरे वाह, ये तो गुड आइडिया है।
0: अच्छा एक बात बताओ मेरे को खुशी, कि सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन होता है जो गाड़ी में बैठा हुआ होता है?
1: ड्राइवर होता है।
0: ड्राइवर होता है?
1: हाँ।
0: नहीं भाई, वो होता है जो ये कह रहा होता है बाबा ड्राइवर से, अरे लेफ्ट में ले लो, आगे से राइट में ले लो, सेकंड कट ले लेना या थर्ड कट ले लेना, तो वो होता है असली बंदा, इम्पोर्टेंट बनता गाड़ी में।
1: अच्छा अखिल सर, ये काम तो मैं भी करती हूँ, कहीं आप मेरी बात तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं भी आपके साथ कई बारी जब आप कार ड्राइव करते हैं और मैं आपको गाइड करती हूँ।
0: हाँ तो मैंने कहा ना, तो तुम हो ना इम्पोर्टेंट पर्सन, तुम मतलब तुम इम्पोर्टेंट पर्सन हो।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो होता है यार, वो जो बगल वाला बंदा बैठा होता है ना आगे वाली फ्रंट सीट में, वो यही कह रहा होता है।
1: और जो हमें इस समय सुन रही है ना मैम, मोहतरमा जो पास में बैठी हैं, वो भी मुस्कुरा रही है और अपने आप को बहुत स्पेशल फील कर रही है।
0: अरे तो क्या पता कोई मोहतरमा की जगह मोहतरमा भी हो सकता है।
1: सर भी हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो यार इसका तो मजा ही कुछ और होता है। चलिए खूब सारी बातें करेंगे यार ऐसे ही अपने लिसनर्स के साथ, नई कार या कहते हैं ना कार के ऊपर खूब सारी डिस्कशन होंगे, उससे पहले एक बढ़िया सा गाना जो आप गाड़ी में बैठ के सुन सकते।
1: ऐसा गाना सुनने वाले हैं जो आपका सफर बनाएगा और भी ज्यादा अमेजिंग। तो आप बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 के साथ।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां बातें हो रही हैं आज आपकी और आपकी गाड़ी की। एक बार बताओ खुशी, कि रोड ट्रिप में सबसे ज्यादा मजा किस चीज का रहता है तुम्हें? या तो ट्रेवलिंग का, या फिर जो डेस्टिनेशन हम पहुंचने वाले हैं या जहां के लिए हम निकले हैं वहां पे पहुंचने का?
1: मुझे ना दोनों का आनंद लेना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हमारा सफर खूबसूरत होता है ना, हमारी डेस्टिनेशन भी खूबसूरत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो जो बीच में ढाबे आते हैं या चाय की कोई छपरी सी आती है, वहां अगर साइड में रोक के और जो वहां का कहते हैं ना फ्लेवर और जो टेक्सचर है उसका आनंद लेने का, उसका यहाँ मजा ही कुछ और होता है।
1: वो ना सफर को दुगना आनंदित कर देती है, एंड बहुत हैप्पी फील होता है जब हम कहीं रुकते हैं कार ड्राइव करते वक्त, हमें कहीं प्यारी सी शॉप दिखाई देती है। और आप तो टी लवर है ही, नो डाउट, तो आप तो कार ड्राइव करते करते देख लेते हैं, ओ अरे खुशी चाय की शॉप नजर आ रही है, जरा यहाँ पर रुक जाएंगे,
0: ना खुशबू आ जाती है कभी कभी। आप जिस होता है ऐसा कि जब आप किसी ऐसे रास्ते से गुजर रहे होते हैं और आपको पता है कि यार इस रास्ते पे ना इस चीज की शॉप है, तो अगर उस पे वहां कुछ बन भी नहीं रहा होगा ना, तो भी आपको ना ऑटोमेटिकली उसकी महक या उसको एक एम्बियंस जो है ना, वो आपको एकदम लगता है कि यार बस खुशबू आ गई है, मुझे जाके रोकनी है वहां गाड़ी।
1: हाँ ये तो है सर। एक्चुअली क्या होता है ना अखिल जी, जिस चीज को हम सोचते हैं ना, तो वो चीज हम फील भी करने लगते हैं।
0: बिल्कुल सही।
1: और वो कहते हैं ना आकर्षण, तो वही आकर्षण है आपका चाय के प्रति, तो चाय आपको अपनी तरफ खींच ही लेती है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
1: और तो इस बात पर क्यों ना चाय हो जाए। अब आपने चाय की याद दिलाई है, तो चाय पीने का मेरा भी मन हो रहा है।
0: मगर आज सच में मेरी तो बहुत सारी ज्यादा चाय हो गई, मगर तुम कहती हो ना तो हम जरूर एक चाय टी ब्रेक लेते हैं। और अपने लिसनर से भी कहते हैं कि भैया चला रहे हो तो हम एक टी ब्रेक में आते हैं, और आप भी अगर कहीं रास्ते में आपको कहीं चाय की टपली या कोई चाय का कोई ढाबा मिल रहा है आपको, तो आप जरूर रुकें और एक चाय जरूर पी लें साहब, थक गए होंगे आप भी इस जाम में गाड़ी चलाते चलाते।
1: तो चलिएगा चाय की चुस्कियों के साथ आनंद लेते हैं इस ब्यूटीफुल ट्रैक का, लौट कर आते हैं, आप कहीं मत यूं ही मुस्कुराइए।

0: फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। हम खूब सारी बातें कर रहे हैं आज आपसे और आपकी गाड़ी से जुड़ी हुई।
1: पहले तो मुझे ये बताइए, चाय पीकर आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए, पर इतनी लो कैसे हो गई है?
0: हाँ? चाय में ना मीठा ज्यादा था, मतलब मीठी चाय पिला दी तुमने बहुत।
1: अब मुझे थोड़ी ना मालूम था कि आपको कम शुगर वाली टी पसंद है।
0: कम शुगर वाले आजकल तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मीठा कम कर दूं, मगर क्या होता है ना, जब तक मैं एक सिप लेने के बाद फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, हो जाता है कभी कभी कि अब क्या कहना या क्या टोकना।
1: ओहो, बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मीठा खाते ही नहीं है। पता है आपको एवरीवन, मैंने कल काजू कतली लेकर मैं कल स्टूडियो आई थी, इन जनाब ने ना मेरी काजू कतली 5 उठाकर खा ली जो कि मैं अपने लिए लेकर आई थी, और कहते हैं कि मुझे मीठे का शौक नहीं है।
0: होता है वो जब खाने के बाद ये बात रियलाइज होती है कि यार मीठा नहीं खाना था।
1: वेरी इंटेलिजेंट,
0: क्या करें, कंट्रोल नहीं होता। देखो अभी हमारे पास एक बढ़िया सा मैसेज आया है, हमारे अशोक जी कहते हैं रामपुर से कि अखिल सर और खुशी मैम आपकी बातें बहुत अच्छी आ रही हैं, और गाड़ियों के ऊपर आप जो बातें कर रहे हैं ना उससे मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगा। अशोक जी देखिए, हम तो जब बातें कर रहे हैं तो हम चाहते यही हैं कि कोई जब बैठ के अपनी गाड़ी में मस्ती से जा रहा है अपनी जगह पे तो वो कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा शेयर करे, तो क्यों नहीं आप ही की बात सुन लेते। अशोक जी आगे लिखते हैं कि अखिल जी, मैंने जब अपनी कार ली थी सेंट्रो, उस समय मेरे पास पार्टी देने का बजट कम था, और मगर दोस्तों को पार्टी देनी थी इसलिए मैं उन्हें स्पेशली ड्राइव करके मुरादाबाद लेके आया, और यहाँ पर सुगंध जीएमडी रोड पे मैंने उन्हें सबको पार्टी दी और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। क्या बात है अशोक जी, बिल्कुल सही, मतलब आपकी ये जो है ना बात बिल्कुल जेन्युइन है, और आप स्पेशली ड्राइव करके आए अपने दोस्तों को लेके बजट कम होने के बावजूद, तो ये एक अलग ही आपने अपना अनुभव बताया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खुशी क्या कहा है इन्होंने?
1: अच्छा अखिल सर, अभी अशोक जी की बात की एंड उन्होंने न्यू कार खरीदी है, अपने फ्रेंड्स को पार्टी दी जबकि बजट इतना नहीं था, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने अपनी कार खरीदी और दोस्तों ने आपसे पार्टी ली, तो आपने उनको पार्टी दी या नहीं, बताइएगा।
0: मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो मैं सच में कहूं, क्योंकि मैंने पापा ने उस समय कार ली थी, हम तो अभी नए नए उस समय ग्रेजुएशन में थे, तो हमने तो अभी अपने उससे कार नहीं ली, मगर पापा ने जब कार ली हमारे घर में, जब पहली बार कार आई
1: जी,
0: तो मेरा बहुत मन था कि मैं शोरूम से ना चला के मैं लेके आऊंगा। मैंने उसके लिए यहाँ पे मतलब उस समय गुप्ता ड्राइविंग स्कूल हुआ करता था, तो उस समय मैंने ड्राइविंग भी सीखी थी।
1: क्या बात,
0: बहुत ही मतलब ऐसा होता ना, बिल्कुल एकदम जोश आक्रोश था कि बस आज शोरूम से मैं निकालूंगा, मगर हमारे बड़े भैया थे साथ में जो पहले से ड्राइविंग का, जिन्हें बहुत अच्छा अनुभव था
1: जी,
0: तो कहते हैं ना अंदर से कटाक्ष भी, हल्का सा अंदर से वो भी रहता है कि यार नई गाड़ी है कहीं कहीं इधर उधर लगना
1: था,
0: तो भैया को ही लेके पहुंचने दो। जब मैं घर के पास पहुंच जाएगी ना, जब वहां पे सड़कें थोड़ी सी खाली होंगी, मगर ये बात मैं मतलब जब भी कोई कहता था अच्छा गाड़ी तुम ही निकाल के लाए शोरूम से, तो ना मैं हाँ करता था ना मैं ना करता था, तो वो समझ जाता था भाई या तो यही निकाल के लाया या कोई और निकाल के आया।
1: ये तो सही था, यहाँ पर आप साइलेंट हो गए,
0: तो जिससे कि सामने वाले को लगे, अगर उसने समझ लिया कि हाँ भाई ये निकाल के आया तो भी अच्छा, और ये नहीं निकाल के आया तो भी अच्छा।
1: बिल्कुल कार तो आई है। अच्छा जो ये आपने कहा कि आपके फादर साहब ने जो फर्स्ट टाइम कार खरीदी, तो वो एक्सपीरियंस आपका एक्साइटमेंट अभी भी वो ही लग रहा है, झलक रहा है आपके चेहरे पर, तो आपके फ्रेंड्स ने बोला आपको कि मुझे भी पार्टी चाहिए अखिल आपने कार खरीदी है,
0: हम लोग
1: आपने उनको पार्टी में क्या मतलब स्पेशल उनको खिलाया?
0: मैं सच को उस समय स्पेशल नहीं था क्योंकि सब अलग अलग जगह कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, मगर जब हम लोग छुट्टियों में मिले सब, तो हम सब लोग रामनगर के ट्रिप में गए, क्योंकि तब तक मुझे भी थोड़े से लॉन्ग ड्राइव करने का शौक था कि भैया थोड़ी लंबी तो चलाऊं अपनी गाड़ी, ड्राइविंग आती थी, तो उसके सब जब साथ मिला तो हम लोग पहले रामनगर गए, पहली ट्रिप हम लोग रामनगर की रही, और उसके बाद थोड़े ही मतलब 2-3 महीने बाद हमने एक और ट्रिप नैनीताल की प्लान करी।
1: वाओ अमेजिंग, तालियां जोरदार अखिल सर के लिए।
0: वो होता है भाई, जब गाड़ी का जो नया नया प्यार रहता है ना,
1: तभी तो मैंने बोला पहला नशा,
0: ये तो तुमने बिल्कुल,
1: पहला खुमार अलग ही होता है यार।
0: बात करते करते सच में पता ही नहीं चल रहा है कि ये टाइम भी कैसे निकल गया,
1: और हमारे दोस्त भी जो सुन रहे हैं इस समय कार में हमें ऑन द वे, वो भी कह रहे हैं कि हम भी अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन सफर का पता ही नहीं चला क्योंकि हम दोनों की बातें जो इतनी क्यूट सी हैं।
0: बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने भी एक जगह सुना है और कहूंगा कि कार जो है ना सिर्फ 4 पहियों की मशीन नहीं है, ये आपकी स्टोरीज हैं जो उसकी विटनेस होती, मतलब कहते हैं ना आपकी स्टोरीज की विटनेस होती है ये सब, पहली ड्राइव, पहला रोड ट्रिप और साथ में दोस्तों की हंसी
1: सफर को और ज्यादा खूबसूरत बना दी है।
0: मुझे पता है तुम अभी चाय पी के आई हो ना, तो तुमने ये जरूर सोचोगे कि हाईवे की चाय तो मेंशन नहीं कर रहे हो आप।
1: और दोस्तों, अगर हमने कार न्यू खरीदी हो और हम हाईवे की तरफ जा रहे हो और वहाँ रुक कर अगर चाय ना पिए तो लगता है कि बहुत सारी चीजें हम मिस कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी एवरीवन, अगर आप भी अभी न्यू कार खरीदी है, आपने 1 मंथ हुआ है, तो कोई बात नहीं है, आप भी अगर हाईवे की साइड जा रहे हैं और आपको लगता है कि उधर कहीं चाय के आसपास स्टॉल है, शॉप है, तो आप भी रुककर चाय का आनंद लीजिएगा।
0: हाँ, हाँ, कोई ना कोई तो ढाबा मिल ही जाएगा।
1: अखिल जी को सब पता है क्योंकि ऑलरेडी ये ड्राइव करते रहते हैं। एंड जैसे मैंने आपसे कहा कि टी लवर है, वैसे आज कॉफी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, आपको पता है ना?
0: क्या बात है, तो कोई बात नहीं, अब टी पी है, अभी थोड़ी देर बाद कॉफी भी पी लेंगे।
1: ये मतलब पीछे नहीं रहने वाले, खाने पीने के मामले में एक्सपर्ट है भैया।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो। तो चलो, अब हम लोग इतने टाइम से
1: गपशप कर रहे हैं, अब हम आपसे अनुमति लेते हैं, मिलेंगे आपको एक नए शो में नई बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए
0: और गुनगुनाते रहिए,
1: और अखिल जी के साथ मुस्कुराते रहिए। अभी मुलाकात भी तो करनी है 9 से 10, दिल से दिल तक।
0: दिल तक।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: छोड़ो
1: देखा दिल न तोड़ो
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मिलोगे समझे
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: दिस साइड आर्जरीन एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और मेरे साथ है एडवोकेट डॉक्टर अनुरुद्ध सर है। तो सर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे रेडियो में।
1: रीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: सर ये बताइए आप मतलब मोस्टली मेरे साथ तो ये तीसरा सेशन होगा
1: जी,
0: तो आपको हमारे रेडियो आगे पहले कैसा लगता है?
1: नहीं मुझे तो लगता है कि मैं अगर शायद यहाँ पे नहीं आऊँ आपके इनवाइट पे तो मैं मिस करूंगा कुछ।
0: अरे अरे क्या बात है।
1: तो ये तो एक मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके माध्यम से समाज में कुछ अच्छा कुछ मैसेज दे पा रहा हूँ, उनके लीगल राइट्स को बता पा रहा हूँ। और ये आपका प्रोग्राम सबसे बड़ी चीज है, आपने जो सोसाइटी का मुद्दा उठाया आपने।
0: बिल्कुल खान जी, हाँ जी सर।
1: क्योंकि मैंने आज तक इतने प्रोग्राम्स और भी सुने, मैंने रेडियो पे भी सुने और न्यूज में भी, तो लीगल मैटर्स को लेके लोग ज्यादा कोई प्रोग्राम रखते नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मैं पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम लीगल टॉक्स जो आपने शो रखा है श्रोताओं के लिए। और निश्चित तौर पर आप लोग जो है इस शो के माध्यम से उनकी एक सेवा कर रहे हैं, एक अवेयरनेस उनके बीच में क्रिएट कर रहे हैं आप।
0: बिल्कुल सर। तो हम अपने सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि सबसे पहले बताइए कि स्टे ऑर्डर होता क्या है?
1: देखिए बहुत से लोग आपने देखा होगा बातचीत करते हुए कहते हैं कि भाई हमारा जो है एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके और कोर्ट से स्टे हो गया है या कोर्ट से स्टे कराना, तो ये स्टे क्या चीज होती है? स्टे ऑर्डर जो होता है वो अदालत कोर्ट के द्वारा दिया अस्थाई आदेश होता है जिसके माध्यम से आप किसी कार्य को निर्णय को कार्रवाई को कुछ समय के लिए आप लोग जो है उसको रोक सकती है। कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए तो कोर्ट स्टे ऑर्डर के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्ट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आपको इस डिस्प्यूटेड मैटर में कोई भी छुआछेड़ नहीं करनी है और ये यहाँ पे यथास्थिति बनाए रखनी है, तो उसको कोर्ट स्टे दे देती है, तो उसी को हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं।
0: बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अदालत किन परिस्थितियों में स्टे ऑर्डर जारी करता है?
1: देखिए जब एक पिटिशनर या प्लेंटिफ होता है जो कि कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन पिटिशन फाइल करता है, याचिका दायर करता है और अदालत को लगता है कि इस कार्रवाई से किसी पक्ष को गंभीर नुकसान हो सकता है या न्याय प्रभावित हो सकता है, तब अदालत उस कार्रवाई को अस्थाई रूप से रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है।
0: सो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, क्या कोई भी व्यक्ति अदालत से स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है?
1: हाँ, अगर उसका लीगल कोई जो राइट बनता है या उसका कोई डैमेज होता है तो कोई भी व्यक्ति किसी कानूनी विवाद में शामिल है, उसे लगता है कि अगर अधिकारों का नुकसान हो सकता है तो अदालत के समक्ष अपनी अपील एप्लीकेशन और पिटीशन दायर करके स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है।
0: स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है?
1: देखिए स्टे ऑर्डर किसी निर्णय या कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए दिया जाता है, जबकि इंजेक्शन एक आदेश होता है जिसमें अदालत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने के लिए निर्देश देती है।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब अदालत किसी मामले पर स्टे लगा देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
1: देखिए जब अदालत किसी चीज पे स्टे लगा देती है तो स्टे लगाने के उस मामले में जुड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से तुरंत रोक दी जाती है और तब तक आगे उस दिशा में कोई भी कार्रवाई जब तक अदालत नहीं कहती है या अदालत उस आदेश को अपने आगे नहीं बढ़ाती है उस पर कुछ नहीं कर सकते।
0: हाँ बिल्कुल सर, उस पर जब रोक लग चुकी है तो कुछ कर नहीं सकते,
1: तो कोर्ट का आदेश आपकी मानना आपको मानना भी है और बाध्यता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्डर मिले उसको हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए होता है?
1: नहीं देखिए इसमें स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये कोर्ट के जो है विवेक पे डिपेंड करता है। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि कोर्ट टेम्परेरी स्टे भी देती है और कुछ केसेस में वो परमानेंट स्टे भी देती है, लेकिन जब स्थितियां सामान्य हो जाती है, पक्षों में एक जजमेंट हो जाता है या जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उस स्टे को कोर्ट खुद ही

0: हटा भी देती है। तो स्टे ऑर्डर समानता स्थायी होता है, यहाँ तब तक लागू होता है जब तक अदालत मामले की अगली सुनवाई में कोई नया आदेश जारी नहीं करती।
1: क्या बात है। सो अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो क्या होता है?
0: देखिए, इससे पहले भी एक हमने अपना सीरीज थी पूरी एक हमारी लीगल टॉक्स की, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने पढ़ा था।
1: बिल्कुल
0: आपने पढ़ा होगा।
1: हाँ।
0: तो अगर कोर्ट ने स्टे दे दिया कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, इसको ऐसे ही रोके रखना है, इस पे कुछ नहीं करना है आप, और आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो एक तरीके से आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो कोर्ट के आदेश की जब अवहेलना हो गई तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गया।
1: बिल्कुल।
0: तो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने दिया, फिर आपने स्टे ऑर्डर को नहीं माना, आपने कंटेम्प्ट किया, तो आपने दोबारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है और स्टे ऑर्डर का उल्लंघन है, तो अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। इसमें संबंधित प्रावधान जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं, उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
1: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल लगा सकती है। अगर किसी पक्ष को लगता है कि निचली अदालत का फैसला गलत है या उससे नुकसान हो सकता है तो वो उच्च अदालत में अपील कर सकता है, और अपील करने पर फैसले पर अगर स्टे हाई कोर्ट दे देती है तो स्टे निचली अदालत के फैसले पे स्टे भी हो सकता है।
1: क्या बात है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर के बाद में हटाया भी जा सकता है?
0: जी हाँ बिल्कुल, हटाया जा सकता है। अगर अदालत को लगता है कि स्टे ऑर्डर की अब जरूरत नहीं है या परिस्थितियां बदल गई हैं, तो वह उसे हटाने या संशोधित करने का आदेश भी दे सकती है।
1: क्या बात है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या एक आदेश देना चाहेंगे?
0: बस यही आपको मैं बोलूंगा, सारे जितने भी आपके लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो के, कि आप अपनी लीगल राइट्स को जानें और छोटी छोटी बातों को जो आपके व्यवहार में डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं, हर कहीं ना कहीं हम लोग सड़क पे भी अगर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं बहुत से लोग अपने लीगल राइट्स को नहीं जानते हैं या राइट जो कानून तोड़ रहे होते हैं। तो आप अगर एक अच्छे समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने लीगल राइट्स को जानिए और समाज में किसी अन्याय को सहन मत करिए, और कोई किसी पे अन्याय करे तो उसकी हेल्प करिए, उसके खिलाफ बोलना सीखिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है सर कि अपने हक के लिए बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं बोलते तो फिर मतलब ये होता है कि कुछ भी हो लेकिन अपने हक के लिए तो हमें बोलना ही बोलना।
0: बिल्कुल, आपको बोलना चाहिए, आपको लीगल राइट्स पता होंगे तभी आप बोल पाएंगे, और छोटी छोटी बातों को आप समाज में जो हमारे हनन होता है उसको आप उसका विरोध करिए। अगर आपके लीगल राइट्स का कोई भी हनन करता है तो आपका अधिकार है कि आप जो है उसको कानून की नॉलेज दें और उसके खिलाफ एक्शन भी लें।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ बातें करके मुझे भी बहुत चीजों के बारे में पता चला है, जो कि इसके बारे में तो मुझे सच बताऊं तो पता नहीं था।
0: देखिए बहुत लीगल बहुत मैटर जो डीप में है लीगल, जो अगर हम लीगल टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम भी रोज नए नए टॉपिक्स आते हैं, उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये तो इतना ज्ञान का सागर है कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और वही बात है, जितने गागर को आप भरोगे उतना ही ज्ञान भरता है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: बहुत
2: ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए, और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते, भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
3: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
3: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। सो

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
1: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
2: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
3: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: नागर विमान मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
4: वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द ब्रेवरी एंड द करेज।
5: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और के परिवार के साथ खड़ा है।
4: वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर रियली रियली एक्सट्रीमली प्राउड।
0: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
6: अदम्य साहस और वीरता का

0: परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मित मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मित के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच कैप्टन स्मित मच्छर की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मित को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
3: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहां 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
4: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यहां उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
5: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
3: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर इंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबाऊ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमरीका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक DM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार दोस्तों, शाम हो चुकी है और वक्त है दिन भर की भाग दौड़ से थोड़ा सा पॉज करने का। हाँ साहब, थोड़ा सा आराम करने का, क्योंकि अब आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट अखिल। तो आज की शाम होगी थोड़ी सी रोमांटिक शायरी वाली, थोड़ी सी फनी वाली और थोड़ी सी मोटिवेशनल वाली भी। तो हमें करनी है खूब सारी मस्ती 9837896896 पर। जब भी निकलते हैं ना यार, जब गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और एकदम पहुंचने वाला होता है हमें घर पे, तो यही सोचते हैं कि यार क्या आज क्या घर पे क्या बना होगा, या अभी तक कोई सरप्राइज, या पहले ही फ़ोन करके बता देती है वाइफ कि भैया आज तो बन रही भिंडी की सब्ज़ी, तो थोड़ा जल्दी एक्सीलेटर पे चलाना अपनी गाड़ी और पहुंच जाना फास्ट फास्ट। तो एक शायरी आपके लिए भी, जो बहुत जल्दी से, कहते हैं ना ट्रैफिक में खड़े होने के बाद भी बस कैसे भी खुल जाए ट्रैफिक और मैं घर पहुंच जाऊं। शाम आई है कुछ यादें लेकर, कुछ हंसी और कुछ फरियादें लेकर। दिन कैसा भी रहा हो दोस्तों, रात बिताइए चेहरे पर मुस्कान लेकर। हाँ जी हाँ, तो इसी मुस्कान के साथ हम अपने पहले कॉलर से जुड़ते हैं और पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? अरे धैर्य, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। कहाँ पर हो आप इस समय?
1: अभी आज मैं दिल्ली से आ गया हूँ, मुरादाबाद।
0: दिल्ली से आ गए हो मुरादाबाद?
1: हाँ।
0: तो जब तुम दिल्ली से मुरादाबाद आए हो तो कितनी देर में आ गए?
1: सुबह निकले थे हम, आए 4:30 बजे।
0: क्या बात है, मतलब बीच में कुछ ज्यादा टाइम रुके हो, एक दो बार रुक गए होंगे इसका मतलब फिर तो। तो ज्यादा देर नहीं रुके जब पेट भरा हुआ था तो है? तो धैर्य ये बताओ, जैसे अभी आप दिल्ली से मुरादाबाद आ गए 3 घंटे में, ठीक है, तो कभी ऐसे पुरानी कोई बात याद है कि आप दिल्ली से मुरादाबाद चले थे, मुरादाबाद से दिल्ली के लिए चले थे और आपको लग गए थे कम से कम 5-6 घंटे या ज्यादा टाइम लग गया था, कभी हुआ आपके साथ ऐसा?
1: ये बारी हुआ था, मतलब अगस्त का महीना था, सावन में कावड़ चले थे, तो
0: हाँ, एक ही लाइन हो जाती है फिर तो, आपको एक ही लाइन में सारा ट्रैफिक चलता है आपका।
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: हम लोग 3 घंटे वहीं गुजरे, हम धर्म का वो नाम बोला।
0: तो आप जा रहे थे दिल्ली की तरफ?
1: हाँ, तो
0: हाँ हाँ टेम्पल कहाँ? गढ़ पे?
1: नहीं, दिल्ली तो पास नहीं है, जब हम दिल्ली में एंटर हो जाते हैं।
0: ओके ओके, अक्षरधाम।
1: अक्षरधाम मंदिर।
0: हाँ बिल्कुल सही, तो अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर में ही फंस गए आप?
1: वही तो हम फंसे हुए थे, फिर हमने ग्राउंड लिया, फिर हम अंदर आए।
0: तो एक बार तो है, जब एक बार फंस जाते हैं ना, जब आप ट्रैफिक में बैठे रहते हैं, गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, जाम में होते हैं, तो एक पल को तो मन ये करता है कि यार चलो गाड़ी घुमाओ वापस और पहुंच जाओ जहाँ से निकले थे, ऐसा भी एकदम थॉट आ जाता है माइंड में। चलो कोई बात नहीं, तो मगर अब ऐसा नहीं है, अब आप आराम से फटाफट अगर दिल्ली जाना हो या दिल्ली से मुरादाबाद भी आना हो तो आपको इतना टाइम नहीं लगता, अनलेस कोई और कोई रीजन ना हो जाम का तो। चलो, तो आज अब तुम आ गए हो, अब कल है 2 अक्टूबर, कल तो तुम्हारी स्कूल की छुट्टी होगी और फिर बस अब एक सैटरडे को जाओगे, फिर एक दिन की छुट्टी हो जाएगी। सही है भैया, बहुत ही बढ़िया, खूब मजे करो। तो कौन सा गाना सुनना चाहोगे आप?
1: जो सबसे पहले जो गाना आया था ना,
0: कौन सा गाना?
1: अब मैंने बहुत टाइम पुरानी वो देखी है,
0: तो तो चलो मैं अपनी पसंद का गाना सुनाता हूँ, उसके बाद हम आपकी पसंद का भी गाना प्ले करेंगे, ठीक है? किसको डेडिकेट करना चाहोगे आप, अपने किसी फ्रेंड को या फिर अपने मम्मी पापा को?
1: हम अपने फ्रेंड से कहने जाते हैं इस बारे में, तो
0: ठीक है, चलिए आपकी फ्रेंड को हम डेडिकेट करते हैं, तो एन्जॉय करें, खूब मस्ती करें, ठीक है ना?
1: हाँ
0: बाय बाय, गुड नाइट।
1: गुड नाइट।
0: तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं धैर्य, जो इस समय दिल्ली से मुरादाबाद आए हैं। कह रहे हैं मैं बिल्कुल सही आ गया हूँ, मगर एक बार का किस्सा उन्होंने अपना दिल का जो शेयर किया कि भैया हम जा रहे थे और हमें इतना ट्रैफिक मिला, इतना ट्रैफिक मिला कि टोल के पास भी और उसके बाद दिल्ली में पहुँच के अक्षरधाम के पास भी। तो साहब अगर आप भी कहीं जाम में फंसे हैं ना, तो कोई बात नहीं, ये गाना एंजॉय करिए और फिर करते हैं आपसे भी दिल की बात। 9837896896 पे अब तो ये नंबर भी हो गया होगा यार, सिर्फ टाइप करना है अपने ब्लूटूथ वाले सामने वाले स्क्रीन पे, सिर्फ और सिर्फ दिल की बात होगी साहब। खूब बात।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां हो रही है आपकी दिल से दिल की बातें। हाँ जी साहब, चाहे आपका दिन खराब हो या बहुत ही बढ़िया हो, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो एंड ऑफ द डे ना आपको याद आने लगती है। हाँ, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाय हो, दोस्त हो, या फिर खाना हो, या फिर किसी खास इंसान का फ़ोन। तो आपका भी कुछ ना कुछ तो होगा जो चल रहा होगा, क्या पता चाय की चुस्की चल रही हो या किसी दोस्त से फ़ोन पे बात। तो ये मस्ती तो चलती रहेगी। हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे भी करते हैं बात। एक शायरी जो दिल से निकल रही है अभी आप लोगों के लिए, वो ये है, हर मुलाकात ज़रूरी नहीं कि प्यार हो, हर मुस्कान के पीछे कोई राज हो, कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे बात हो तो बस दिल खुश हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ हमसे मिलने वाले हैं, कुछ बात करने वाले हैं। तो चलिए पूछते हैं क्या करते हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: सर मेरा नाम सुजीत यादव है।
0: सुजीत यादव जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं इस समय?
1: सर मुरादाबाद प्रकाश नगर से।
0: मुरादाबाद प्रकाश नगर से बात कर रहे हैं आप?
1: जी सर।
0: तो वहाँ प्रकाश रहता है नहीं रहता है?
1: सर हमारे घर में तो बहुत प्रकाश
0: है। जो आपके घर में भी प्रकाश है?
1: बहुत प्रकाश है सर, भगवान के आशीर्वाद से।
0: नहीं, बहुत ही बढ़िया सुजीत जी। तो आप क्या काम क्या करते हैं?
1: सर मेरी टीएमयू में कैंटीन है।
0: क्या बात है। तो आप इसका मतलब रोज पढ़ने जाते हैं?
1: पढ़ने नहीं जाता हूँ सर, मेरी शॉप है।
0: हाँ हाँ सर, वो तो है, मगर जब कॉलेज की बात हो गई तो वहाँ सबसे पहले तो दिमाग में यही आएगा कि भाई साहब पढ़ाई करने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं।
1: जी सर, जी सर।
0: तो जितनी भी कैंटीन में कहानियां बन रही हैं उसमें कहीं ना कहीं सुजीत जी का भी हाथ है। और सुजीत जी, आप क्या कुछ सुनाना चाहेंगे दिल से, कोई ऐसी बात जो शायरी में या कुछ गाने में निकलना चाहिए?
1: सर पहले तो हमारी बेटी बेटियों की फरमाइश थी तो मैंने कॉल मिला थी, मैं बिल्कुल
0: बेटियों की फरमाइश के आगे तो सर कोई नहीं रुक सकता। अगर बेटी ने कह दिया ये होना है तो फिर पहले होना ही है वो।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल। मेरी बड़ी बेटी का नाम मेरी साक्षी यादव है, छोटी बेटी का नाम मेरी मानसी यादव है,
0: तो
1: वाइफ का नाम मीनाक्षी यादव है।
0: क्या बात है। तो कौन कौन सी यादव शैतान है?
1: सर सबसे छोटी शैतान है
0: मानसी। मानसी
1: जी सर।
0: सही है साहब, सही है। फिर तो आप जो है ना, आपने पूरी जो है उनकी ख्वाहिश आज कर दी है कॉल मिला के। आप कोई एक शायरी भी सुना दीजिए बढ़िया सी।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल। दरिया को और कोई बात है नहीं, कहता है चल की तरह ठिकाना तो है नहीं, अब कह दिया तो साथ निभाएंगे उम्र भर, हालांकि दोस्ती का जमाना है नहीं, चुप जाए इसको हमारे लिए शेर, अपना भी कोई खास निशाना तो है।
0: क्या बात है, क्या बात है साहब, आपने निशाना बिल्कुल सही लगाया है आज, एकदम सही जगह कॉल करके जो बात कही है बहुत ही मस्त और बहुत ही बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज, आपकी कौन सी फरमाइश है गुड़िया रानी की?
1: सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, क्या गुड़िया लाना पापा जल्दी आ जाना।
0: सही है सही है सही, बहुत ही बढ़िया गाना आपने चुना है लता मंगेशकर जी की आवाज में।
1: जी सर।
0: और तो इसका मतलब भाभी जी आपके लिए गाना गाती होंगी, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ऐसा गाया कभी नहीं?
1: अरे भाभी उन्हीं
0: ये जो समुंदर का चक्कर है ना साहब, बहुत खतरनाक है ये।
1: हाँ सर ये तो है सर।
0: चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा आपका हमारे साथ जुड़ने का आज, बहुत अच्छी बात करी आप। ओके सुजीत जी। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे सुजीत जी, जो अपनी बेटियों की फरमाइश के लिए कॉल करी, और एकदम कहते ना जैसे दिल की बात उन्होंने अपनी शेयर करी कि भैया मेरे साथ जो है मैं आया हूँ, मेरी गुड़िया रानी ने मुझसे कहा कि पापा मुझे अपनी पसंद का गाना सुनना, तो क्यों नहीं बिना देरी करे हम ये गाना करते हैं प्ले। और आपकी भी कोई ऐसी फरमाइश है तो ज़रूर 9837896896 पे साहब दिल खोल के करते हैं बात। साहब दिल को खोल लीजिए, वरना दिल खोलना पड़ जाता है, जो समझ गए वो बहुत ही ना। इसमें प्यारी सी स्माइल दे रहे होंगे इस समय गाड़ी में। तो चलिए करते हैं इस गाने को एंजॉय, और

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां बातें हो रही हैं आपकी दिल की और हमारे दिल तक। तो पूरे अपडेट तो चल ही रहे हैं, जहां जहां आप रास्ते में जा रहे हैं आपको पता तो चल ही रहा होगा कि क्या क्या आपके साथ हो रहा है। तो एक खबर जो देश विदेश में इस समय बहुत ही चर्चा में है वो ये है कि दुबई से तेल अवीव जा रही, जो इसराइल जा रही थी फ्लाइट, फ्लाइट दुबई फ्लाइट में एक कॉकपिट में जो एक बहुत ही एक दिलचस्प घटना घटी है, हमारे एक भारतीय पायलट ने बिल्कुल समझदारी और सूझबूझ का एक उदाहरण पेश करते हुए एक बहुत बड़ी घटना 9/11 जैसी घटना होने से बचाया है, और उसका जिक्र आज पूरे देश में है। मोदी जी ने खुद बहुत ही इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जो थी उन्होंने बताई कि भाई ऐसे ऐसे हमारे ही इंडियन पायलट ने किस तरीके से अपनी जान की परवाह ना करते हुए कैसे उस जो उनका को पायलट था जो उन पर हमला कर रहा था उसको जवाब देते हुए बचाया है और गेट खोला है, जिससे कि बाकी के जो बाहर पैसेंजर्स थे उसमें से वो हेल्प के लिए आगे आए और उस प्लेन को बहुत ही सुरक्षित समय पे लैंड करवाया है। तो मामले की जो है जांच चल रही है, और हम यही कहेंगे कि दुनिया में खबरें बहुत हैं लेकिन हर खबर को समझना भी उतना ही ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पे जो है ना सनसनी नहीं जानकारी लेके आते हैं। तो ये जानकारी अब आपको ही पता चली होगी, और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, धीरे चलना गलत नहीं है लेकिन चलते चलते रुक जाना बहुत गलत है। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि बाकी लोग हमसे आगे निकल गए, मगर नहीं, हम लोग भी चलते रहेंगे तो बिल्कुल ही एक अलग ही मंजिल पे, अपनी ही जो मंजिल हमने सोची है उस पे ज़रूर पहुंचेंगे। तो चलिए अपने नए कॉलर से बात करते हैं जो कहना चाहते हैं कुछ अपनी दिल की बात, पूछते हैं क्या नाम है उनका। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: प्रभात जली चराम मुरादाबाद।
0: क्या बात है प्रभात जी, और क्या करते हैं आप इस मुरादाबाद में?
1: मुरादाबाद में तो सबको याद करते हैं, और क्या करते हैं?
0: सबको याद करते हैं आप, तो आज कोई ऐसी शायरी याद कर रखी है जो आप अपने दिल की बात बोलना चाहें या कहना चाहें?
1: हमने कोई शायरी आज तक याद नहीं करी।
0: अरे ट्रेंडम बनाइए आप, तो इंस्टेंट शायरी बना देते हैं, है ना?
1: हाँ मैं बता रहा हूँ, आज तक कोई शायरी हमने याद नहीं करी, और उम्मीद किसी पे हमने कभी ना कुछ करी।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: आज तक हमने कोई
0: याद नहीं करी,
1: ना किसी से उम्मीद हमने कोई धरी, रखे रह जाते हैं आंखों के आंसू आंखों में, फिर भी मेरे दिल की धड़कन हर तरफ तुमको देखने लगी।
0: क्या बात है, क्या बात है प्रभा जी, आपने क्या बात कह दी आज। इसी पे कुछ याद आ रहा है, मंजिल मिले या ना मिले सफर जारी रखना, हार मिले,
1: मिले ना,
0: हाँ मंजिल मिले या ना मिले सफर जारी रखना, हार मिले तो भी अपना हुनर जारी रखना।
1: मेरे दोस्त,
0: लोग क्या कहते हैं कहने दो उन्हें, लोग क्या कहते हैं कहने दो उन्हें, तू अपने सपनों पर नजर जारी रखना।
1: अरे तुमने तो मेरे दिल को छीन लिया।
0: हमें कोई छीनना वीनना नहीं है, हमें तो दिल के साथ रहना है। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज आप?
1: एक शेर और हो जाए छोटा सा, गाना सुना देना।
0: तो सुनाइए सुनाइए, जरूर जरूर।
1: कहाँ खत्म करा आपने, उसके आगे के दो लफ्ज बोल दो मुझे आप।
0: जहाँ हमने खत्म किया उसके आगे के दो लफ्ज बोल दूँ?
1: हाँ।
0: हम चलिए लास्ट के बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं कहने दो उन्हें, तू अपने सपनों का सब नजर जारी रखना।
1: जारी है मेरे सपनों के ख्वाबों की रोशनी, जारी है मेरे सपनों की आंखों की रोशनी, मगर आंख बंद करके भी तेरा चेहरा मुझे आज नजर आता।
0: क्या बात है, क्या बात है साहब, बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं आंख बंद करके, आसपास कौन है?
1: कोई नहीं। आपको एक बात बताऊं भाई साहब?
0: हाँ जी प्रभात जी, बोलिए बोलिए।
1: आपका थोड़ा प्रोग्राम लंबा बढ़ा लो और हमारे रोज कॉल लगा लो।
0: भाई साहब
1: अपना प्रोग्राम लंबा बढ़ा लो और हमारी कॉल लगा लो, बयान कर देंगे अपने दर्द तुमको, ऐसी जगह हम अपने दिल में बना लो।
0: क्या बात कही, क्या बात कही, ये आपकी बात पे विचार किया जाएगा, मगर पता चला कि अगर अपना शो ज़्यादा बढ़ा लिया और आपकी कॉल ज़्यादा लगा ली तो दोनों को ही बुला लिया जाएगा, भाई साहब इधर आ जाओ, ये क्या चल रहा है चक्कर ये।
1: कोई बात नहीं।
0: चलिए, तो आपने गाने के बोल बताइए अब। आप तो आपकी एक छोटी वाली जो बाद वाली शायरी थी ना, बहुत मस्त हुई वो, उसके बाद अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप।
1: मैं सारी खुद कह के भूल जाता हूँ, याद मुझे रहता नहीं, अब कहाँ सो रहा हूँ कहाँ उठ रहा हूँ मुझे मुझे याद नहीं रहता नहीं।
0: ये हम याद दिला देंगे साहब, आपके मोबाइल में अलार्म लगा देंगे, आपको सब याद दिला देंगे, आप चिंता ना करें।
1: ठीक है, हमारे गाने के बोल बोल देना, चुन चुन करती आई चिड़िया, प्यार का दाना लाई चिड़िया।
0: बस बहुत ही बढ़िया गाना भी आपने ऐसे ही सुना है कि चिड़िया आई और चिड़िया जो है चुपके चली गई खेत सारा।
1: अरे हमारी लल्ली गरिया, प्यार का दाना ना, दाल का दाना मुझे याद ही नहीं रहता, कौन सा का दाना है।
0: चलिए चलिए, जो भी दाना है अब आप दोनों एंजॉय करिए, मोहम्मद रफी साहब की आवाज का है गाना।
1: ठीक है,
0: ओके सर। तो हमारे साथ प्रभात जी जुड़े थे, जिन्होंने खूब बढ़िया दिल के, मैं कहता ना रैंडम शायरी का इनके पास टैलेंट है, जैसे ही आप अपनी शायरी खत्म करेंगे साहब ये अपनी लेके चालू हो जाएंगे। तो चलिए, इनकी भी फरमाइश, इनकी भी दिल से जो आवाज़ निकली है, जो आज कहते हैं ना, मुझे लगता है आज कहीं डॉटर्स डे तो नहीं है, सब अपनी बेटियों की फरमाइश के गाने बता रहे हैं। तो ये गाना भी जल्दी से प्ले करते हैं, और आपकी भी कोई ऐसी फरमाइश है तो ज़रूर 9837896896 पर सिंपली कॉल करके या मैसेज करके बताएं, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे जो मैसेज हमारे लिसनर्स के आए हैं और करेंगे खूब सारी दिल की बातें।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां बातें हो रही हैं आपके दिल से हमारे दिल तक। हाँ जी हाँ, बहुत सारी बातें हुई हैं आज, तो खूब सारी शायरी हुई है। तो एक सवाल जो बहुत देर से चल रहा था दिमाग में, मैंने कहा क्यों नहीं आपसे ही पूछ लिया जाए। ये बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना साफ करो उतनी ही काली होती जाती है? हाँ हाँ, सोचिए सोचिए, जवाब थोड़ी देर में बताऊंगा। आपके पास अगर इसका जवाब है तो ज़रूर हमें व्हाट्सएप करें 9837896896। आजकल जो है ना, रिश्ते भी बिल्कुल वाईफाई जैसे हो गए। पासवर्ड पता हो तो कनेक्शन स्ट्रांग होता है, और पासवर्ड भूल जाओ तो कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। और कुछ लोग तो इतने पॉजिटिव होते हैं कि पार्टनर का लास्ट सीन भी रिसर्च पेपर की तरह पढ़ते हैं। भाई साहब ये क्या है? आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है ना, तो हमें ज़रूर मैसेज करके बताइएगा कि हाँ जी आपके साथ भी घटना घट चुकी है। तो चलिए बात करते हैं अपने नए लिसनर से, पूछते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे ऐसे घड़ी जो है ना 10 बजे के करीब पहुंच रही है ना, वैसे वैसे धड़कने हो रही हैं तेज, क्योंकि दिल की बातें करनी बहुत सारी। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? तीरथ सिंह जी, कैसा इस समय मौसम हो रहा है? कहाँ हैं आप, छत पर हैं या घर के आंगन में हैं?
1: इस समय बाहर आए हुए हैं घर से।
0: इस समय आप बाहर टहलने आए हुए हैं?
1: जी जी।
0: तो साहब जरा संभल के ठहरिए, अब जा मेरे ख्याल से आपकी तरफ उधर तेंदुओं का तो डर अब कम हो गया है।
1: इस समय तो कम है,
0: इस समय थोड़ा सा खौफ कम है। तो क्या करते हैं आप तीरथ सिंह जी?
1: खेती
0: किसानी का काम चल रहा है। कुछ कोई दिल की ऐसी कोई बात, जो कोई शायरी या कोई ऐसा कोई गाना जो आपके बहुत करीब हो, कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे?
1: हम तो पुराने गाने सुनना चाहेंगे।
0: पुराना ही गाना सुनना चाहेंगे आप? कोई शायरी करते हैं या नहीं करते हैं आप? कोई शेर व शायरी नहीं करते हैं? चलिए एक शेर हम आप ही के लिए पढ़ देते हैं। रिश्ते बड़े नहीं होते बातों से, रिश्ते बड़े होते हैं जज्बातों से। कभी वक्त मिले तो हाल पूछ लिया करो, क्योंकि अपने दूर नहीं होते फासलों से। तो आप बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे और किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप? गाने के बोल बताइए। जरूर जरूर जरूर, बदली से निकला है चांद, और बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये रात का समय है और रात का ही गाना है।

राखी नाम है, तो राखी जी के लिए गाना आप डेडिकेट कर रहे हैं, और ज़रूर इस गाने को कहते हैं ना बदली से निकला है चांद, तो गाना ही बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सुंदर तरीके से आप डेडिकेट कर रहे हैं। धन्यवाद तीरथ जी हमसे जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे तीरथ सिंह जी, जो कह रहे हैं कि मेरी पसंद का एक गाना सर प्ले कर दीजिए, मैं अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहता हूँ। जब वाइफ का नाम ले रहे थे तब आवाज़ दब गई थी, मगर बाद में जब उन्हें बोला अरे नहीं साहब मैं तो बढ़िया सा करके डेडिकेट करना चाह रहा हूँ, उनका नाम भी लेना चाह रहा हूँ, तो क्या बात है ना, एकदम दिल के जज्बात जो होते हैं ना वो संभाले नहीं संभलते भाई साहब, दिल से बात निकल ही आती है वो, चाहे कैसे भी निकल के आए। तो चलिए सुनते हैं इनका गाना, करते हैं एंजॉय। आपकी भी कोई बात है तो अभी है हमारे पास थोड़ा सा समय, जहाँ आपकी भी दिल की बात सुनी जाए। 9837896896 पर। और हाँ, जो मैंने सवाल पूछा था ना उसका भी जवाब आप मैसेज करें भाई साहब, मज़ा ही कुछ और रहेगा। अगर कहें तो एक बार फिर से याद दिला देता हूँ आपको, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना साफ़ करो उतनी ही काली होती जाती है, तो बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है। तब तक इस गाने का लेते हैं एंजॉय।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो साहब, घड़ी जो कह रही है कि शो का जो टाइम है वो पूरा होने वाला है, 9:58 हो गए। तो चलने से पहले हम लेंगे एक लास्ट कॉल, मगर पूरा पूरा कहते हैं ना, आप लोगों के साथ आज खूब दिल की बातें हुई हैं और दिल में साफ साफ झलका है कि कहीं तो प्यार है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो थोड़ी देर से निकल के आती हैं, मगर आती ज़रूर हैं। तो उन बातों को भी दिल से कहते ना, जब कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो दिल संभाल लेता है, उन्हीं को जज्बातों को हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो आज कई सारी ऐसी बातें हुई जो मुझे भी सोचने पे और आप सभी के साथ, मतलब आपको भी सुनने में उन्हें बहुत ही आनंद आया होगा। तो चलिए अपने लास्ट कॉलर से बात करते हैं, पूछते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका, कैसे हैं आप?
1: हाय सर।
0: हेलो,
1: कैसे हो?
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? अफरोज फातिमा जी, तो क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं सर, बस घर पे रहते हैं और घर का काम करते हैं, सिलाई पढ़ाई करते हैं।
0: तो जब भी आप घर पे काम करते हैं तो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं या बस ऐसी है, यार आज बहुत काम है और आज का जो काम है इतना सारा है कि बस मैं थक गई हूँ करते करते?
1: ऐसा तो सर होता है कि इतना सारा काम होता है घर का, थक ही जाते हैं, थकान हो ही जाती है। और मेरे घर पे तो बहुत सारा काम है तो मैं तो थक ही जाती हूँ, लेकिन हम काम के साथ साथ रेडियो सुनते रहते हैं, बस
0: और गुनगुनाते रहते होंगे, कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते होंगे कि हाँ भाई चलो रेडियो पे जो गाने बज रहे हैं उनके साथ, उनके सहारे आपको समय का पता ही नहीं चलता होगा।
1: हाँ, नहीं चलता, चलो रेडियो चलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कोई आपकी जैसे आवाज़ से पता चल रहा है कि आपको थोड़ा बहुत लगता है गाने या शायरी का कुछ तो शौक है, तो कुछ है ऐसा जो आप हमें सुनाना चाहेंगे?
1: हाँ सर, आप तो जानते हो शायरी करना तो मेरा शौक।
0: हाँ जी, हाँ जी, तो ज़रूर हम जानते तो हैं, मगर जितने भी श्रोता हैं ना वो अभी जानते नहीं हैं। कई ऐसे श्रोता हैं हमारे जो आपको पहली बार सुन रहे होंगे, तो कोई तो एक ऐसी शायरी सुनाइए बढ़िया सी।
1: लेकिन मैं तो शायरी करती रहती हूँ वैसे मुरादाबाद में।
0: हाँ तो अब आज एक बढ़िया सी शायरी कर दीजिए आप फातिमा जी।
1: बहुत ही अच्छी शायरी है मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए।
0: ज़रूर, इरशाद इरशाद।
1: जी सर। आंसू की तलाश में यहाँ एहसास है, आंसुओं की तलाश में यहाँ एहसास लिखा जाता है, यहाँ पानी को भी प्यास लिखा जाता है। और मेरे जज्बातों से वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से वाकिफ है मेरी कलम। मैं इश्क लिखूँ तो तेरा नाम लिखा जाता है, मैं इश्क लिखूँ तो तेरा नाम लिखा जाता है।
0: क्या बात है, बहुत खूब, मतलब आपने तो एकदम कहते हैं ना जज्बात एकदम इधर से उधर ही कर दिए, बिल्कुल पलट दिए, इतनी बढ़िया शायरी बोल दिया आपने।
1: जी सर, क्योंकि मुझे शायरी करना बहुत अच्छा लगता है और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रेडियो पे शायरी करूं, ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। 3 सालों से लगातार, मतलब जब भी मैं कॉल करती हूँ शायरी करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप इतनी अच्छी शायरी करती हूँ, मुझे तो लग रहा है कि अगले 3 सालों में किताब भी लिख देंगी शायरी में।
1: जी सर, लेकिन काम में बहुत बिजी रहती हूँ ना, मैं तो ये सब कर नहीं पाती, लेकिन इतना करती हूँ यही बहुत है मेरे लिए।
0: नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, आप थोड़ा सा भी समय निकाल के जब अपने, कोई कहते हैं ना, अपनी चॉइस का काम करते हैं, अपनी पसंदीदा काम करते हैं, तो उस काम का आनंद ही कुछ और होता है।
1: जी सर, और मैं आई थी स्टूडियो तो मैं सोच रही थी कि मैं लाइव जाऊँ, कुछ शायरियाँ करूँ, लेकिन टाइम बहुत कम था, मैं बहुत लेट हो गई थी तो इसलिए कर नहीं पाई।
0: कोई बात नहीं, अगली बार आप आइएगा, समय निकाल के आइएगा और समय के साथ आइएगा।
1: सर, क्योंकि पता है मैं बस से आई थी ना तो ट्रैफिक जाम बहुत था, तो इसलिए बहुत
0: ट्रैफिक जैम, तो जो ऐसा जैम है कि मतलब आप निकले नहीं और आपको पहले से अंदाजा होता है कि भैया मैं आज इस पीली कोटी के चौराहे पे या फव्वारे पे फंसने वाला हूँ।
1: जी सर, बहुत, मतलब बहुत भीड़ भाड़ चल रही है इस टाइम पे, तो मतलब बहुत लेट हो गई थी मैं।
0: तो कोई बात नहीं, आप तो बस के आगे आगे चलती, कहते हैं आज मैं ही रास्ता पार करवाती हूँ बस को।
1: नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
0: हाँ ऐसा हो नहीं सकता, ये तो हमें ही पता है, तो सिर्फ एक मजाक है, मगर कभी कभी करके देख लेना आप। तो चलिए गाना गाना आज हम अपनी पसंद का प्ले करते हैं आपके लिए। आप किसे डेडिकेट करना चाहेंगी गाना?
1: मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइबा के लिए सुनना चाहती हूँ सर।
0: लीबिया मतलब लाइबा जी के लिए आपका गाना है।
1: जी सर, अगली दफा आऊंगी तब अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही आऊंगी,
0: जरूर जरूर आइएगा और शायरी भी करिएगा।
1: क्योंकि सर मतलब मैंने सोचा नहीं था मैं इतनी जल्दी आ पाऊंगी, लेकिन देखो मैं खुशी दी से मिल के आई हूँ रीना दी से। जी
0: चलिए
1: सर,
0: चलिए, बहुत ही बढ़िया है। मतलब आपकी ही खुशी बता रही है चेहरे पे कि आपने खूब एंजॉय किया जब आप स्टूडियो आए।
1: बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा स्टूडियो।
0: चलिए चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी और आपने अपनी दिल से इतनी बढ़िया सी शायरी आज सभी को सुनाई। धन्यवाद, नमस्ते फातिमा जी, बाय बाय। तो हमारे साथ दोस्तों जुड़ी थी फातिमा जी, जो कह रही हैं कि अभी रिसेंटली उन्होंने स्टूडियो विज़िट करी और खूब सारी बातें करी आरजे खुशी और आरजे रीना के साथ। तो चलिए दोस्तों, जैसे जैसे समय करीब आ रहा है ना, ऐसे समय तो हो ही गया मगर हमें तो उसे और करीब लेके आना। तो चलने से पहले अपने लिसनर्स के जो हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आए उनसे बात करते हैं, सुनते हैं उनकी क्या बात है, उनकी दिल से निकली हुई है। सबसे पहला मैसेज हमारे पास आया, हम तो स्टडी ने लूटा है इश्क में कहाँ दम था, हमें तो स्टडी ने लूटा है इश्क में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ जाकर डूबी जहाँ सिलेबस ज़्यादा और टाइम कम था। तो ज़रूर ज़रूर हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ, तो ये आम बात है, वहीं उनकी कश्ती डूबती है जहाँ पे सिलेबस ज़्यादा होता है और टाइम कम होता है। बस ये देखते रहते हैं जल्दी जल्दी भरते हैं और शीट को कहते हैं ना आज जल्दी से दूसरी शीट के लिए पहले से एकदम हाथ ऊपर खड़ा कर देते हैं, जी मेरा तो होने वाला है फटाफट दूसरी शीट तैयार रखो। तो होता है होता है, और कहीं दूसरा कोने में एक बच्चा देख के कह रहा होता है यार ये तो शीट पे शीट भरा रहा है यहाँ और एक पेज नहीं हो रहा है पूरा। तो ये तो कहानी चलती है स्टूडेंट में। हमारा पूरा परिवार, हमारे पूरे परिवार की तरफ से अखिल सर जी को प्यार भरा नमस्कार जी। हमारी तरफ से भी आपको और आपके पूरे परिवार को प्यार भरा नमस्कार। यादव फैमिली लाइन पार प्रकाश नगर गली नंबर 2। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्ले जिसका था मुझे इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। तो हमने आपका इंतज़ार पहले ही ख़त्म कर दिया और आपका फेवरेट सॉन्ग हमने प्ले कर दिया है। तो सर प्लीज़ हमारा सॉन्ग आज प्ले कर दीजिएगा। और जो आपने पहली पूछी उसका करेक्ट आंसर है ब्लैक बोर्ड। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, करेक्ट आंसर है उसका कोयला। हाँ जी साहब, कोयले को जितना भी साफ करो ना हाथ आपके काले ही होते जाएंगे, गोरे नहीं होंगे। हमारे पास एक और मैसेज आए हैं हमारे लिसनर के, वो कहते हैं हाय सर जी, आई एम शानू खान फ्रॉम मुरादाबाद से। सर आपका आंसर होगा ब्लैक बोर्ड। बिल्कुल सही कहा आपने, ब्लैक बोर्ड भी है उसका आंसर और दूसरा है कोयला। जो मेन आंसर है वो है कोयला, जितना साफ करेंगे। अरे साफ करके देख ही लेना आपको पता चल जाएगा। और आपके क्या हाल चाल हैं सर? मेरे हाल चाल बहुत बढ़िया हैं और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपके भी हाल चाल बहुत ही मस्त होंगे। तो दोस्तों अब कहते हैं ना, अब वक्त आ गया है आज की इस खूबसूरत शाम को अलविदा कहने का। लेकिन जाने से पहले एक बात, अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर मत कीजिएगा। आपकी कहानी आपकी अपनी है, इसे हमेशा याद रखिएगा। अंतिम शायरी इस शो की आज आपके साथ, कुछ ख्वाब अधूरे हैं तो रहने दो, कुछ रास्ते मुश्किल हैं तो चलने दो, ज़िंदगी खूबसूरत है मेरे दोस्त, इसे थोड़ा हंसकर थोड़ा खुलकर जीने दो। हाँ जी, तो मैं हूँ आपका अखिल और आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लोगों से जुड़े रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आखिर में याद वही रहता है, कितना कमाया वो याद नहीं रहता, कितना जिया कितना दिलों को खुश किया ये हमेशा याद रहेगा। इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं अखिल लेता हूँ आपसे इजाज़त। आप सुन रहे थे दिल से दिल तक अखिल संग और कल फिर मिलेंगे इसी फ्रिक्वेंसी पे। हाँ जी साहब 89.6 पे मिलेंगे कल आपके साथ और करेंगे फिर से वही दिल की बातें। तो चलिए दिल से जुड़े रहिए और मुस्कुराते रहिए और हाँ गुनगुनाते रहिए, FM सुनते रहिए।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा।
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।